0: आचार्य 90 FM के ऑडियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। स्वाद का जायका इस शो पर मैं आरजे भारतीय सीमा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? ऑल गुड ना? भाई सब अच्छा होना ही चाहिए, क्योंकि हमारे स्वाद का जायका इस शो के माध्यम से हम हमारे प्यारे ऑडियंस की सेहत का ख्याल रखने की पूरी कोशिश करते हैं। अर्ज किया है, सावन की बारिश से बदल गया मौसम, मौसम का बदलाव लाया खुशियों वाला ब्लॉसम, खुशियों वाला ब्लॉसम कहे मुझसे आज का खाना होना चाहिए ऑसम। ऑसम खाना मतलब नहीं जंक फूड, जंक फूड मतलब बिग नो। खाना हो ऐसा जो बदल दे मूड, मूड को बदलने अपनाओ देसी खाना, और आचार्य 90 FM वाला कोई सुमधुर गाना। सुमधुर गाने की मनभावन ताल और आरजे भारतीय सीमा पूछ रही अपनों का हाल। स्वाद और सेहत वाला हमारा ये शो, खाना खाते समय रफ्तार को कीजिए स्लो। स्लो रफ्तार मतलब आराम से खाना। हमारी भारतीय संस्कृति को पूरी दुनिया ने है माना, दुनिया के मानने से हाय हुआ है जोश। सुनिए आचार्य 90 FM, मत बैठिए सिर्फ खामोश। खामोश बैठकर अगर हो गए हो बोर, तो बनाइए आज की रेसिपी और बोल में कीजिए पोर। ऑडियंस जी, हमारी आज की फर्स्ट रेसिपी का नाम है लाल चावल का सूप। भाई बारिश का मौसम और रिमझिम बरसता हुआ सावन, तब हर किसी का मन करता है कि कुछ गर्मा गर्म टेस्टी खाना खाया जाए। ऐसे में बाहर से कुछ ऑर्डर करने से अच्छा है कि हम अपने घर पर ही कुछ हेल्दी खाना बना ले, है कि नहीं? वैसे भी बाहर वाला खाना खाकर अपनी हेल्थ को नुकसान पहुंचाने से अच्छा है कि हम कुछ नया और सात्विक खाना अपने घर पर ही बना ले। हमारी आज की रेसिपी कुछ इसी टाइप की है। व्रीही इस संस्कृत नाम वाले लाल रंग के चावलों को इस्तेमाल करके हम बनाएंगे एक टेस्टी सूप। इसमें आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स है। इसे पटनी के नाम से भी जाना जाता है। इन लाल चावलों से रोटी, पायसम, इडली और तरह तरह की रेसिपीज को बनाया जाता है। ये अनपॉलिश्ड चावल होते हैं। लाल चावल का टेस्ट थोड़ा अखरोट जैसा होता है। इन लाल चावलों से बना सूप पीने से पेट भरने वाली फीलिंग आ जाती है, इसलिए सुबह के नाश्ते के समय इसका सूप आप जरूर पीजिए और दिन की शुरुआत एक हेल्दी स्टाइल से कीजिए। चलिए अब हम इसकी रेसिपी को सुनते हैं। लाल चावल मींस व्रीही का सूप बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स। लाल चावल लगभग एक मुट्ठी मींस अप्रोक्सीमेटली 4 चम्मच, प्याज एक मीडियम साइज अप्रोक्सीमेटली 50 ग्राम, गाजर एक छोटा सा ये भी 50 ग्राम, बीटरूट 50 ग्राम, पानी 4 बड़े कप, नमक स्वाद के अनुसार, यहाँ पर मैं लगभग एक चुटकी नमक ले रही हूँ, देसी घी 1 चम्मच, बारीक कटा हुआ हरा धनिया 1 चम्मच, और मेन इंग्रेडिएंट ढेर सारा प्यार, क्योंकि आपके मन की भावनाएं इस रेसिपी में उतरने वाली हैं। रेसिपी को शुरू करने से पहले हम थोड़ी तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले हम चावलों को धो लेंगे, फिर हम बीटरूट का छिलका हटाकर उसके टुकड़े करेंगे। इसी तरह से हमें प्याज को भी काटना है। उसके बाद हम गाजर को भी धोकर उसके टुकड़े कर लेंगे। लाल चावल का सूप बनाने की तैयारी तो हमने कर ली, लेकिन इतना काम करके मैं तो थक गई भाई साहब। आई नीड अ ब्रेक।
1: इज दैट क्लियर?

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। हमें लेना है मोटे बेस वाला एक बर्तन। उस बर्तन में हम डालेंगे गाजर, बीटरूट और प्याज। फिर हम उसमें डालेंगे लाल चावल और उसके साथ 4 बड़े कप भर के पानी। इन सारी चीजों को हमें अच्छे से पका लेना है। जब तक ये सारी चीजें उबलकर 1/4 ना बन जाए तब तक हम इसे उबालेंगे। हमें एक बड़ा कप भर जाए इतनी क्वांटिटी वाला इसका सूप बना लेना है। वैसे इसे लो फ्लेम पर पकाना ज्यादा अच्छा है, या फिर आप इसे सीधे प्रेशर कुकर में भी पका सकते हैं। लो फ्लेम पर पकाने से इसकी छींटे थोड़ी कम उड़ेंगी। इसे पकाते समय आप चाहे तो नमक ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज सूप को सर्व करते समय आप नमक डालिए। जब तक ये सूप पककर 1/4 ना बन जाए तब तक इसे पकने दीजिए। फिर आप गैस को बंद कीजिए। उसके बाद हमें इसे छानना है, मींस सॉलिड और लिक्विड पार्ट को सेपरेट करना है। उसके बाद हम लेंगे एक सुंदर सा सर्विंग बोल। उसमें बड़े प्यार से हम डालेंगे लाल चावल का सूप। जरा सुनिए तो, थोड़ा रुकिए तो, भाई इतनी भी क्या बेकरारी। इसका डेकोरेशन वाला पार्ट अभी बाकी है। अब इस सूप में हम डालेंगे घी और इसकी सुंदरता को निखारने के लिए हम उस पर डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। क्या बात, डार्क रेड कलर के सूप पर कोथमीर की हरियाली, आहा, जैसे उगते सूरज की लाली और साथ में प्रकृति की खुशहाली। यहाँ पर हम ले रहे हैं एक क्विक ब्रेक। ब्रेक के उस पार आपसे और बातें होंगी। स्टे ट्यून्ड।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 एफएम और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। हमारा लाल चावल का सूप अब हो गया है तैयार और इसे टेस्ट करने के लिए हमारे प्यारे ऑडियंस जी हो गए हैं कितने बेकरार। तो भाई देर किस बात की, झटपट लाल चावल का ये हेल्दी सूप बनाइए और अपनों के साथ मिल बांट कर इस टेस्टी सूप का लुत्फ बड़े मजे से उठाइए। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 एफएम और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। आप चाहे तो इस लाल चावल वाले सूप के साथ रोस्टेड पापड़ भी परोस सकते हैं। इस लाल चावल वाले सूप में मौजूद गाजर और बीटरूट से हमारी हीमोग्लोबिन की लेवल बढ़ती है और प्याज से हमें मिलता है फॉस्फोरस। है ना इंटरेस्टिंग जानकारी। इस लाल चावल की तारीफ में पेश है एक छोटी सी कविता। कविता का नाम है हेल्दी वाला सूप। बारिश के मौसम में खिल गई धूप, लाल चावल से बनाइए हेल्दी वाला सूप। हेल्दी वाला सूप पीकर खिल जाएगा रूप। आप बनाकर तो देखिए जनाब, सगळ्यांनाच आवडणार खूप। इन चावलों का रंग है लाल, इसे बनाकर सजाइए अपने भोजन का थाल। लाल चावल संग डाला बीटरूट, अच्छी सेहत बनाकर आप भी बनिए क्यूट। बीटरूट के साथ आ गया गाजर, हीमोग्लोबिन बढ़ाने वाला इस सूप में है सागर। इसे टेस्टी बनाने डाला है प्याज। अब बना ही दीजिए सूप, कल नहीं आज। गर्मा गर्म सूप में एक चम्मच घी, इसे पीते ही फ्रेशनेस ने दस्तक दी। चाहो तो डालो इसमें थोड़ा सॉल्ट, देसीपन अपनाना क्यों लगे फॉल्ट। व्रीही है इसका संस्कृत में नाम, सुनिए आचार्य 90 एफएम सुबह दोपहर और शाम। सूप का जायका बढ़ाने आप पापड़ को कीजिए रोस्ट, टेस्टी लगेगा खाना जब साथ होंगे हमारे दोस्त। ऑडियंस संग दोस्ती निभाने वाला वादा, आरजे भारतीय सीमा कभी ना छोड़ेगी आधा। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 एफएम और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। हमारी फर्स्ट रेसिपी तो बन गई, अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। भाई सूप के साथ अगर क्रिस्पी पकोड़ा भी हो तो और ज्यादा मजा आ जाएगा। ऐसा पकोड़ा जो डीप फ्राई किए बगैर बना हो। वैसे बारिश के मौसम में फिलहाल स्वीट कॉर्न्स तो आसानी से मिल ही जाते हैं। इन्हें भूनकर या बॉईल करके खाना कॉमन सी बात है, लेकिन आचार्य 90 एफएम के हमारे प्यारे ऑडियंस के लिए इन स्वीट कॉर्न से हम बनाएंगे क्रिस्पी कॉर्न पकोड़ा। और इसे डीप फ्राई करने के बदले हम अप्पम पात्र में पकाने वाले हैं। तो जनाब तैयार हो जाइए हमारी अगली रेसिपी के लिए, जिसे खाकर हम और हमारे अपने एकदम खुश होने वाले हैं। क्रिस्पी कॉर्न पकोड़ा बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स, बॉइल स्वीट कॉर्न के दाने दो कटोरी, आइदर येलो और व्हाइट, प्याज एक, बेसन आधा कटोरी, चावल का आटा दो बड़े चम्मच, हल्दी पाव चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च आधा चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट एक चम्मच, चाट मसाला पाव चम्मच, हींग एक चुटकी, कोतमीर चार पांच चम्मच, करी पत्ता पांच छह, नमक स्वाद के अनुसार।

0: राजश्री से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए।
1: 10, 9, 8, 7,

0: बरसों बाद मैं निकली हूँ। ऐसा लगता है कि वो किसी औषधि की बात थी।
1: शायद उन दिनों की बात होगी जब ये इमारत अभी उजड़ी नहीं थी।
0: हाँ, पिछले किसी जन्म की बात ही तो लगती है।
1: एक काम करें, जब तक तुम यहाँ हो रोज घर पे खाने के लिए तो आया ही करोगी, खाने के बाद घूमने निकल आया करेंगे। कम से कम ये इमारत कुछ दिनों के लिए तो बस जाएगी। तुम्हारी शॉल कहाँ है?
0: भूल गई। ना ना,
1: तुम नहीं बदलोगी।

0: सुनार जी, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे
1: कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा,
0: लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

0: लगता है कि वो किसी औषधि की बात थी।
1: शायद उन दिनों की बात होगी जब ये इमारत अभी उजड़ी नहीं थी।
0: हाँ, पिछले किसी जन्म की बात ही तो लगती है।
1: एक काम करें, जब तक तुम यहाँ हो रोज घर पे खाने के लिए तो आया ही करोगी, खाने के बाद घूमने निकल आया करेंगे। कम से कम ये इमारत कुछ दिनों के लिए तो बस जाएगी। तुम्हारे शॉल कहाँ?
0: भूल गई। ना ना,
1: तुम नहीं बदलोगी।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे
1: कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा,
0: लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार
1: 9 बरस लंबी थी ना।

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आज शब्बे स्वागत करता हूँ आपका कहानियों की गुल्लक में। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जो मोटिवेशन से भरपूर है, जो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे संघर्ष और संघर्ष के बाद मिली हुई जीत की कहानी, एक ऐसी जीत की कहानी जो आपके दिल में एक ऐसा सवाल छोड़ देगी, क्या हमें सच में कोशिश कितनी करनी चाहिए, ये वाला। क्योंकि हम अक्सर कोशिश नहीं करते और हमेशा ये कहते हैं यार कर लेता तो हो जाता, लेकिन काश हम चीजें करते तो रिजल्ट कुछ और होता। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी जिसका नाम है गोल्ड मेडल। सुबह के 4 बजे थे, पूरा शहर अब भी गहरी नींद में था। गलियों में सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी, लेकिन एक पतली सी गली के छोटे से घर का दरवाजा धीरे से खुला। 17 साल का अर्जुन अपने पुराने घिसे हुए रनिंग शूज पहनकर बाहर निकला। उसके शूज के सोल 2 जगह से फट चुके थे, लेस भी अलग अलग रंग की थी। उसकी माँ पीछे से बोली, बेटा रुक। अर्जुन मुड़कर देखता है, माँ एक स्टील के ग्लास में गरम गरम दूध लेकर खड़ी थी। बस इतना ही है, गर्म पी ले। अर्जुन मुस्कुरा दिया, माँ एक दिन ऐसा आएगा ना जब मैं तुझे दुनिया का सबसे महंगा दूध पिलाऊंगा। माँ हंस पड़ी, मुझे महंगा दूध नहीं चाहिए, बस तेरा नाम टीवी पर देख लूं इतना ही काफी है। ये लाइन अर्जुन के दिल में बस गई और वो दौड़ने लगा। हर सुबह 10 किलोमीटर, ना जिम, ना कोच, ना प्रोटीन, सिर्फ एक सपना, और उस सपने का नाम था गोल्ड मेडल। अर्जुन महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में रहता था। पापा एक ऑटो ड्राइवर थे, दिन भर मेहनत करते थे, कभी 500 रुपए तो कभी 300 रुपए कमाते थे, और कभी कभी पूरे दिन में 150 रुपए भी मिलते थे। घर में 3 लोग थे, पापा, माँ और अर्जुन। टीवी पुराना था, फ्रिज नहीं था और कूलर भी नहीं था, लेकिन घर की दीवारों पर एक फोटो जरूर लगी थी, मिल्खा सिंह की। हर रोज अर्जुन उस फोटो के सामने खड़ा होकर कहता, एक दिन मैं भी इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीतूंगा। पापा हमेशा हंसते, बेटा सपना देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन पेट भी भरना पड़ता है। अर्जुन सिर्फ इतना कहता अपने पापा से, पापा एक मौका दे दीजिए और फिर देखिए। स्कूल में स्पोर्ट्स डे था, 100 मीटर रेस का कॉम्पिटिशन भी था। सब स्टूडेंट्स नए नए शूज में आए थे, किसी ने नाइकी, किसी ने एडिडास, और अर्जुन अपने फटे पुराने हुए शूज में आया। सबने शूज को देखा और अर्जुन का मजाक बनाने लगे, सब उस पर हंस पड़े। अरे देख, गोल्ड मेडल विनर आ गया, कहीं रास्ते में शूज टूट गए तो ये तो फिनिश लाइन तक भी नहीं पहुंच पाएगा। अर्जुन चुप था, सब उसका मजाक उड़ा रहे थे। रेस शुरू हुई, ऑन योर मार्क सेट, और विसल बजी, सब की तीर की तरह भागने लगे। शुरू हुई 40 मीटर तक, सब तीर की तरह भागे। शुरू के 40 मीटर तक अर्जुन पीछे था, सब लोग हंस रहे थे, लेकिन आखिरी 50 मीटर में जैसे उसके पैरों में बिजली आ गई, एक एक करके सब पीछे छूट गए। और क्या, फर्स्ट पोजीशन अर्जुन, पूरा ग्राउंड तालियों से गूंज उठा। स्पोर्ट्स टीचर भी हैरान रह गए, ये लड़का कौन है। प्रिंसिपल ने मेडल पहनाया, लेकिन मेडल से ज्यादा अर्जुन को एक बात याद आ रही थी। स्पोर्ट्स टीचर ने उसे साइड में बुलाकर कहा, बेटा तेरे अंदर ना टैलेंट है, टैलेंट। पहली बार किसी को देख रहा हूं जो बिना ट्रेनिंग के इतना फास्ट भाग रहा है, कल से मेरे साथ प्रैक्टिस करेगा। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए, सर फीस कितनी देनी होगी। टीचर मुस्कुरा दिए, टैलेंट की कोई फीस नहीं होती बेटा, बस तू आ जाना। उस दिन से अर्जुन की असली जर्नी शुरू हुई। अगले ही सुबह 4 बजे वो प्रैक्टिस के लिए स्कूल पहुंच गया। शाम को पापा के साथ ऑटो साफ करना, रात को पढ़ाई करना, दिन के 18 घंटे मेहनत होती थी, और 1 साल बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल चैंपियनशिप, ये उसकी जिंदगी की पहली सबसे बड़ी रेस थी। पूरे डिस्ट्रिक्ट के बेस्ट रनर्स आए थे, सबके पास कोच थे, डाइट था, रनिंग किट थी, और अर्जुन सिर्फ एक ट्रैक सूट जो स्पोर्ट्स सर ने अपनी सैलरी से खरीदा था। रेस के पहले सर ने कांधे पर हाथ रखा अर्जुन के और कहा, याद रख
रेस पैर नहीं जीतते, रेस हौसला जीतता है। और क्या, जैसे ही विसल बजी रेस शुरू हुई, पूरे स्टेडियम में शोर मच गया। अर्जुन ने जबरदस्त स्टार्ट लिया, 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर सबसे आगे, लेकिन अचानक उसका पुराना शू फट गया, बैलेंस बिगड़ गया और वो गिर गया। पूरा स्टेडियम एक पल के लिए खामोश हो गया, बाकी रनर्स उसके आगे निकल गए। स्पोर्ट्स सर चीखे, अर्जुन उठ! उसके घुटने से खून निकल रहा था, दर्द बहुत था, लेकिन उसने माँ की बात याद रखी थी, मुझे बस तेरा नाम टीवी पर देखना है। अर्जुन धीरे से खड़ा हुआ और दोबारा भागना शुरू किया। अब रेस जितना मुश्किल था, लेकिन उसने गिव अप नहीं किया। फिनिश लाइन क्रॉस करते ही वो जमीन पर गिर गया। इस बार वो फर्स्ट नहीं आया, फोर्थ आया, मेडल भी नहीं मिला। रात को घर आकर वो पहली बार रोया, माँ शायद पापा सही कहते थे, ये सपना मेरे लिए नहीं है। माँ ने उसकी बात बड़ी शांति से सुनी और बाद में उसके पास बैठकर कहा, बेटा जो लोग पहली हार के बाद सपना छोड़ देते हैं उनके नाम को कोई याद नहीं रखता, लेकिन जो गिर कर खड़े हो जाए, भागे और अपने सपने को जीत ले, उनका नाम सारे लोग याद रखते हैं। उस रात अर्जुन ने आंसू पोंछे और एक कसम खाई, अब सिर्फ डिस्ट्रिक्ट नहीं, मैं इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीतूंगा। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले ही हफ्ते उसकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आने वाला है जो उसे ट्रैक से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देगा। तो दोस्तों, ये जो तूफान आने वाला है अर्जुन की जिंदगी में, ये कौन सा तूफान है? क्या ये अर्जुन को चैंपियन बनने से रोक देगा, या अर्जुन के पैर ही अर्जुन से छीन लेगा जिससे उसकी भागने की क्षमता ही खत्म हो जाए, भागने की शक्ति खत्म हो जाए, या फिर घर की कोई ऐसी मुसीबत आ जाएगी, या फिर घर पे कोई ऐसी मुसीबत आएगी जो अर्जुन के सपने को तार तार कर देगी? ये मैं भी नहीं जानता, ये आप भी नहीं जानते। ये जानने के लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा और मिलना पड़ेगा उस ब्रेक के बाद। तब तक के लिए आप सुनते रहिए आचार्य 90 FM, कहानियों की बोली।

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त। आज 26 सुना रहा था आपको गोल्ड मेडल की कहानी। अब गोल्ड मेडल में अर्जुन जो है एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कंपटीशन में हिस्सा लेता है और उसमें फोर्थ आता है, और वो मन ही मन सोचता है क्या उसके पिताजी सही कहते थे कि सपने देखना सही है लेकिन पेट भरना भी जरूरी है। लेकिन अर्जुन की माँ उसे हौसला देती है और कहती है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम अपनी जिद को पूरा करोगे और जीतोगे एक दिन। तो सुनते हैं कहानी का अगला हिस्सा। डिस्ट्रिक्ट रेस में हारने के बाद अर्जुन ने एक बात समझ ली थी, टैलेंट जरूरी है लेकिन टैलेंट से ज्यादा जरूरी है हिम्मत। अगले ही दिन वो सुबह 4 बजे फिर से ग्राउंड पहुंच गया। स्पोर्ट्स सर उसे देखकर मुस्कुरा दिए। मैं जानता था तू जरूर आएगा अर्जुन। अर्जुन ने सिर्फ इतना कहा, सर इस बार सिर्फ रेस नहीं जीतनी, जिंदगी जीतनी है। सर ने उसके कांधे पर हाथ रखा और कहा, तो फिर आज से ही असली ट्रेनिंग शुरू करते हैं। अब रूटीन और भी मुश्किल हो गया। सुबह 4 से 7 प्रैक्टिस होती, फिर स्कूल होता, शाम को पापा के साथ ऑटो चलाने में मदद होती और रात को पढ़ाई और फिर स्ट्रेचिंग, मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन। स्पोर्ट्स सर उसे हर दिन एक ही बात बोलते, बॉडी थकने से पहले दिमाग हार मानता है अर्जुन। और अर्जुन धीरे धीरे डिस्ट्रिक्ट का सबसे तेज रनर बनने लगा। उसने अपने सर की कही हुई सारी बातों को तवज्जो दी, उनको मानना शुरू किया और सर की बताई हुई ट्रेनिंग से ही वो सारी चीजें करने लगा। एक दिन स्पोर्ट फेडरेशन के सेलेक्टर्स डिस्ट्रिक्ट्स में आए थे, स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए ट्रायल्स होने वाले थे। ग्राउंड में 200 से ज्यादा एथलीट्स थे, सबके पास ब्रांडेड किट्स थी, न्यूट्रिशंस थे, प्रोफेशनल कोचेस थे। अर्जुन के पास सिर्फ एक पानी और माँ के हाथ के बने 2 पराठे। एक लड़के ने हंसकर कहा, भाई पिकनिक पे आया है क्या? दूसरा बोला, गोल्ड मेडल व्हाट्सएप पे मिलता है क्या?

अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ हेडफोन लगाए, आंखें बंद की और माँ की आवाज याद की। बस तेरा नाम टीवी पे देखना है, बस तेरा नाम टीवी पर देखना है। ट्रायल रेस शुरू हुई, विसल बजी, सब रॉकेट की तरह निकले। शुरू के 100 मीटर में अर्जुन तीसरे नंबर पे था, 150 मीटर 200 मीटर उसने स्पीड बढ़ाई, 250 मीटर अब वो दूसरे नंबर पर जा गया और आखिर के 100 मीटर में पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। कमेंटेटर जोर से चिल्लाए, लेन नंबर 4 अर्जुन अनबिलीवेबल कमबैक और फर्स्ट पोजीशन। पूरा ग्राउंड तालियों से गूंज उठा, स्पोर्ट सर की आंखों में आंसू आ गए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम स्टेट चैंपियनशिप के लिए सेलेक्ट हो गए। अर्जुन ने सबसे पहले माँ को फोन किया, माँ मेरा सिलेक्शन हो गया है। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक खामोशी रही, फिर माँ रो पड़ी, बेटा आज लग रहा है कि भगवान ने मेरी सुन ली। लेकिन खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। स्टेट चैंपियनशिप से सिर्फ 10 दिन पहले पापा का ऑटो एक ट्रक से टकरा गया, एक्सीडेंट हुआ, बहुत सीरियस एक्सीडेंट। पापा हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए थे, घर में एक भी रुपया नहीं था। माँ अपनी शादी के कंगन लेकर ज्वेलर के पास गई, ज्वेलर बोला बस इतने ही मिलेंगे। माँ चुपचाप मान गई, अर्जुन दूर से सब देखता रहा। एक दिल में तूफान चल रहा था, उसने सोचा मैं रेस छोड़ देता हूँ। स्पोर्ट्स सर को पता चला, वो सीधा हॉस्पिटल आए, पागल हो गया क्या तू, रेस छोड़ेगा? अर्जुन बोला सर घर ज्यादा जरूरी है। सर ने गुस्से में कहा घर के लिए ही तो भागना है, तू रेस नहीं भागेगा तो जिंदगी भर पछताएगा। पापा ने भी ऑक्सीजन मास्क के साथ धीरे से कहा बेटा मेरे लिए मत रुक, एक दिन जब लोग मुझे गोल्ड मेडल विनर का बाप बोलेंगे ना तो मुझे और प्राउड फील होगा, तब मेरी सारी तकलीफ खत्म हो जाएगी, तब मेरी सारी खुशी बस तुझ में नजर आएगी। अर्जुन टूट गया, उसने पापा का हाथ पकड़कर बोला आप देखना पापा मैं जीत कर ही आऊंगा। स्टेट चैंपियनशिप का दिन आ गया, हजारों लोग स्टेडियम में बैठे थे, टीवी कैमरास, मीडिया, नेशनल सिलेक्टर्स। अर्जुन पहली बार इतनी बड़ी रेस में हिस्सा ले रहा था, उसके पैर कांप रहे थे। सर ने उसे एक छोटा सा तिरंगा दिया और कहा इसे पॉकेट में रख, जब डर लगे याद रख तू अकेला नहीं भाग रहा, पूरा भारत देश तेरे साथ भाग रहा है। रेस शुरू हुई, सब एथलीट्स बहुत स्ट्रांग थे, 200 मीटर तक अर्जुन पीछे था। कमेंटेटर बोला लगता है प्रेशर में आ गया, लेकिन आखिरी बेंड पर उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, 1, 2, 3 रनर्स को पीछे छोड़ दिए। फर्स्ट लाइन में और फोटो फिनिश में पूरे स्टेडियम की नजर थी, सांसें रुक गई। रिजल्ट आया, विनर अर्जुन, स्टेट चैंपियन, नेशनल्स गेम के लिए सेलेक्ट। मीडिया उसके पास दौड़ पड़ी, अर्जुन आप अपनी जीत किसे डेडिकेट करना चाहोगे? अर्जुन ने कैमरा की तरफ देखा और कहा ये मेडल मेरी माँ के बचे हुए कंगन का नतीजा है, मेरे पापा का खून पसीने की कमाई है और मेरे स्पोर्ट्स सर के भरोसे का मेडल है। पूरा स्टेडियम खड़े होकर तालियां बजाने लगा। लेकिन नेशनल गेम से सिर्फ एक महीने पहले प्रैक्टिस के दौरान अर्जुन के पैर में चोट बुरी तरह लग गई। एक डॉक्टर ने सीधा कह दिया हो सकता है तुम दोबारा कभी रेस नहीं भाग पाओगे, और ये सुनते ही अर्जुन के पैर की जमीन खिसक गई। अब आगे क्या होगा, क्या अर्जुन दोबारा रेस भाग पाएगा या फिर अर्जुन को रेस छोड़नी पड़ेगी या फिर कोई और नया मोड़ आएगा कहानी में? मैं नहीं जानता, आप भी नहीं जानते, हम दोनों नहीं जानते कि आगे कहानी में क्या होगा, पर इतना जरूर जानता हूं कि जो हौसला रखते हैं, जिनके अंदर जिद होती है और जो
हर एक चीज को पूरा करने के लिए दिलो जान से मेहनत करते हैं। उनका सपना कभी खाली नहीं जाता, उनका परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो देखेंगे अर्जुन का परिश्रम इस छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए सुनते रहिए आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त, मिलता हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद।

0: चेहरा कुछ जाहिर कुछ नेहा।
1: आजादी ने मैं मेरा साथ दिया, अंतरों से घूम के जब मैं मुखड़े पे आऊं तो मेरे साथ गाइए।
2: पहले आपके नाम आपकी सेहत पर एक गम हो जाए।
1: जी मैं शराब नहीं छूता।
2: कौन काफिर छूने को कहता है, बगैर हाथ लगाए चढ़ा जाओ एक ही सांस में।
3: तो लाइए देव साहब, हम ही आपके होंठों पे लगाए देते हैं।
4: पी भी लीजिए देव साहब, बड़ी देर से छलक रहा है वरना दुख होगा इसे।
5: हाँ।

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे शब्बीर स्वागत करता हूँ आपका कहानियों की गुल्लक में। जैसे कि हम जान रहे हैं, अर्जुन एक रेस हारा, फिर उसने अपनी कोशिश जारी रखी, उसे सर मिले, सर के साथ उसने प्रैक्टिस की, फिर एक कंपटीशन गया, उस कंपटीशन को उसने जीता, लेकिन वो वहीं तक नहीं रुका, उसकी जिद काफी बड़ी थी। उसके माँ का जो सपना था उसे वो पूरा करना था, और अर्जुन उस सपने को पूरा करने के लिए हर एक वो काम कर रहा था जो उसे करना चाहिए था। अर्जुन कभी पीछे नहीं हटा, अर्जुन ने बस यही कोशिश की कि वो किस तरीके से अपने माँ के सपने को जिंदा रखे और अपने माँ के सपने को पूरा करे। तो चलिए देखते हैं अब कहानी का आखिरी हिस्सा। डॉक्टर्स की बात अभी भी अर्जुन के कानों में गूंज रही थी। लिगामेंट टियर हो चुका था। अगर जल्दी रेस भागे तो करियर हमेशा के लिए खत्म हो सकता था। एक पल के लिए सब कुछ खत्म सा लगने लगा था। नेशनल गेम्स सिर्फ एक महीने दूर थे। जिस सपने के लिए उसने सालों तक पसीना बहाया, वही सपना उसके हाथों से अब दूर जा रहा था, फिसल रहा था। उस रात अर्जुन ने पहली बार भगवान से शिकायत की, मैं ही क्यों, आखिर मेरी क्या ही गलती है, मैं तो सिर्फ अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना चाहता था, तो मेरे साथ ही ये क्यों। उसकी माँ चुपचाप उसके पास बैठी रही। कुछ देर बाद उसने सिर्फ एक बात कही, बेटा भगवान कभी किसी का सपना नहीं तोड़ते, वो सिर्फ देखते हैं सपना देखने वाला कितना मजबूत है, और अगर तुम मजबूत हो तो जरूर तुम ये अपनी परेशानी अपनी कठिनाई को पार कर जाओगे। और उसके बाद अगले एक महीने रेस से ज्यादा मुश्किल था। पेन, फिजियोथेरेपी, आइस पैक्स, एक्सरसाइज, हर दिन दर्द, कभी घुटना जवाब दे देता, कभी कॉन्फिडेंस, और क्या, सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो रहा था। लेकिन स्पोर्ट्स सर हर रोज बस उसे एक ही बात बोलते, गोल्ड मेडल ट्रैक पर नहीं जीता जाता, गोल्ड मेडल पहले दिमाग में जीता जाता है और उसके बाद गोल्ड मेडल मिल जाता है। अर्जुन मेडिटेशन करता, विजुअलाइजेशन करता, हर रात आंखें बंद करके फिनिश लाइन इमेजिन करता, और हर बार उसके सामने तिरंगा रह रहा था और खुद को देखता। अब धीरे धीरे एक महीना गुजर चुका था, नेशनल गेम्स अब आने ही वाले थे, और आखिरकार नेशनल गेम्स वाला दिन आ गया। देश के हर स्टेट के चैंपियंस एक ही स्टेडियम में खड़े थे। कमेंटेटर की आवाज पूरे स्टेडियम में गूंज रही थी, आज का 400 मीटर का फाइनल रेस, यहाँ से निकलेगा भारत का अगला चैंपियन। स्टैंड में हजारों लोग, टीवी कैमरास, मीडिया, और वीआईपी गैलरी में अर्जुन के पापा, जो एक्सीडेंट के बाद पहली बार व्हीलचेयर पर स्टेडियम आए थे। उनके पास माँ बैठी थी। माँ ने धीरे से कहा, देखो हमारा बेटा, देखो। पापा की आंखों में आंसू आ गए, और क्या, रेस शुरू हुई। ऑन योर मार्क्स सेट एंड विसल बजी। सब एथलीट्स बिजली की तरह निकल पड़े। 100 मीटर अर्जुन चौथे नंबर पर था। कमेंटेटर्स बोला, अर्जुन स्लो स्टार्ट ले रहा है। 200 मीटर अब तीसरे नंबर पर। स्पोर्ट्स सर चिल्लाए, पेशेंस, 300 मीटर अब तीसरे नंबर पर। लेकिन उसके इंजर्ड पैर में हल्का सा दर्द शुरू हुआ। एक सेकंड के लिए उसका बैलेंस ही हिल गया। उसके दिमाग में डॉक्टर की बात गूंज रही थी, करियर खत्म हो जाएगा। लेकिन उसी पल उसने वीआईपी गैलरी की तरफ देखी। पापा व्हीलचेयर पर खड़े होने की कोशिश कर रहे थे। माँ हाथ जोड़कर दुआ कर रही थी। स्पोर्ट्स सर दोनों हाथ हवा में उठाकर चिल्लाए, और इतने जोर से चिल्लाए, अर्जुन तिरंगे के लिए जीतना है। बस ये कुछ शब्द सुनते ही जैसे अर्जुन के अंदर एक रोशनी दौड़ पड़ी। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, एक रनर क्रॉस किया, फिर दूसरा। अब सिर्फ उसके आगे दो एथलीट बचे थे। आखिरी 50 मीटर
पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। कमेंटेटर चीख रहे थे, अनबिलीवेबल कमबैक, ऐसा फिनिश बहुत कम देखने को मिलता है, और आखिरी के 20 मीटर में तो पूछिए ही मत। दोनों रनर्स खड़े हो गए, कांधे से कांधा मिलाकर भाग रहे थे। 10 मीटर, 5 मीटर और क्या, फिनिश लाइन और फोटो फिनिश, और पूरा स्टेडियम खामोश। सबकी नजरें स्कोर बोर्ड पर थी। कुछ सेकंड जो अर्जुन को घंटों जैसे लग रहे थे, फिर स्क्रीन पर रिजल्ट फ्लैश हुआ। गोल्ड मेडलिस्ट अर्जुन। स्टेडियम तालियों से गूंज उठा, नेशनल एंथम बजना शुरू हुआ। अर्जुन पोडियम पर खड़ा था, उसके कंधों पर तिरंगा था, गोल्ड मेडल उसके गले में था। जैसे ही तिरंगा सबसे ऊपर गया, अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने मेडल को चूमा और धीरे से कहा, ये मेडल सिर्फ मेरा नहीं है, ये मेरी माँ का सेक्रीफाइस है, पापा की मेहनत है और स्पोर्ट्स सर के भरोसे का नतीजा है, और हर उस इंसान का है जैसे जिसे कभी लोगों ने कहा था तुमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन उसने वो कर दिखाया। अब एक अनोखा फैसला आने ही वाला था कि अर्जुन ने अवार्ड सेरेमनी के बाद मीडिया से पूछा अवार्ड सेरेमनी के बाद मीडिया ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन अब आपका अगला सपना क्या है? सबको लगा वो ओलंपिक्स बोलेगा, लेकिन अर्जुन मुस्कुराकर बोला, मैं ओलंपिक जरूर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपने गांव में एक फ्री स्पोर्ट्स एकेडमी बनाऊंगा, ताकि किसी और बच्चे को फटे हुए शूज की वजह से सपना ना छोड़ना पड़े। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। 5 साल बाद जहां कभी अर्जुन अकेला सुबह 4 बजे दौड़ता था, आज वहीं 300 से ज्यादा बच्चे हर सुबह 4:30 बजे दौड़ते हैं। गेट पर बड़ा सा बोर्ड लगा था और उस पर लिखा था अर्जुन गोल्ड मेडल स्पोर्ट्स एकेडमी, और उसके नीचे एक लाइन लिखी थी, जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मान लेने वालों की कभी जीत नहीं होती। एक छोटा सा लड़का अर्जुन, जिसके पास सिर्फ एक सपना था, लेकिन उसके पास वो मेहनत, वो जिद, वो लगन थी, और उसी जीत के चलते, उसी मेहनत के चलते उसने अपना वो सपना पूरा किया। उसने वो गोल्ड मेडल जीता, उसने अपना हौसला बुलंद किया, और उसके गोल्ड मेडल जीतने के बाद उस पूरे शहर में, उस पूरे मोहल्ले में इतने स्टूडेंट्स अब रेस में और अलग अलग तरह के खेलों में हिस्सा लेने लगे, जिसकी शायद ही कभी किसी ने कल्पना की हो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए सुनते रहिए आचार्य 90 FM पर कहानियों की गुल्लक। मैं आपसे कहता हूँ टाटा, बाय बाय, टेक केयर।

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आज शब्बीर स्वागत करता हूँ आपका कहानियों की गुल्लक में। आज की स्टोरी काफी अलग है। वो कहते हैं ना, जिसको रखे सही है मार सके ना कोई, मतलब अगर जिसकी हेल्प करने पर ऊपर वाला खुद उतर आए तो क्या ही कहना। पर ऊपर वाला भी तब हेल्प करता है जब आप खुद अपने उस चीज के लिए कितनी मेहनत करते हो, कितने डेडिकेटेड रहते हो, या फिर कितनी अपनी जिद के प्रति या अपने ड्रीम के प्रति आपकी जिद होती है। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी जिसका नाम है माइक के उस पार। नदिया के उस पार तो आपने सुना होगा, लेकिन माइक के उस पार क्या होगा, सो लेट्स सी। अगर आपसे कोई पूछे कि एक आरजे बनने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, अच्छी आवाज, कॉन्फिडेंस या कम्युनिकेशन स्किल्स, शायद आप कहेंगे हाँ ये तीनों की जरूरत है। लेकिन आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसके पास ना कॉन्फिडेंस था, ना फ्लुएंट बोलने की आदत, और ना ही लोग उसकी आवाज सुनना पसंद करते थे। उसका नाम था आरव। मुंबई के एक छोटे से घर में रहता था। पापा ऑटो चलाते थे और माँ घरों में सिलाई का काम करती थी। पैसा कम था लेकिन सपने बहुत बड़े थे। आरव बचपन से ही रेडियो सुनने का शौकीन था। रात को पढ़ाई के बहाने वो छोटा सा ट्रांजिस्टर चला देता और आरजे की आवाज सुनकर खुद भी वैसे ही बोलने की प्रैक्टिस करता। उसके लिए रेडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, वो उसकी दुनिया थी। लेकिन स्कूल की दुनिया बिल्कुल अलग थी। आरव जब भी क्लास में आंसर देने के लिए खड़ा होता, उसकी जुबान अटक जाती। गुड मॉर्निंग मैम, और पूरी क्लास जोर जोर से हंसने लगती। क्या हुआ, रिकॉर्ड अटक गया, कोई रिस्टार्ट करो यार इसको। हर रोज नए नए जोक्स बनते। लंच ब्रेक में भी कोई उसके साथ नहीं बैठता। एक दिन एनुअल फंक्शन के ऑडिशंस चल रहे थे। टीचर ने पूछा, कौन एंकरिंग करेगा? आरव ने डरते डरते हाथ उठा दिया। और क्या, पूरा क्लासरूम एक साथ हंस पड़ा। मैम ये एंकरिंग करेगा।

इससे एक सेंटेंस तो पूरा बोला नहीं जाता। टीचर्स ने भी उसका नाम क्वाइटली लिस्ट से हटा दिया। उस दिन आरव घर आया तो सीधा अपने कमरे में चला गया। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा? उसने बस इतना कहा, कुछ नहीं माँ, बस थोड़ा थक गया हूं। लेकिन उस रात उसने पहली बार खुद से पूछा, क्या मैं सच में किसी काम का नहीं हूं? उसने रेडियो चालू किया, एक आरजे कह रहा था, दोस्तों दुनिया आपको तब तक जज करती रहेगी जब तक आप अपनी कहानी खुद नहीं लिखते। ये लाइंस सीधे आरव के दिल में लग गए। उसने उसी रात एक डायरी निकाली और एक पन्ने पर लिखा, एक दिन मेरी आवाज भी रेडियो पर गूंजेगी। अगले दिन उसने स्कूल के मजाक को अपनी ताकत बनाने का फैसला कर लिया। जब सब उसका मजाक उड़ाते वो घर आकर और ज्यादा प्रैक्टिस करता, मिरर के सामने खड़े होकर इमेजिनरी ऑडियंस से बात करता। लेकिन प्रॉब्लम वही थी, बोलते वक्त उसका कॉन्फिडेंस टूट जाता। एक दिन लाइब्रेरी में उसकी मुलाकात एक रिटायर्ड प्रोफेसर से हुई। प्रोफेसर ने उसकी डायरी देख ली, तुम आरजे बनना चाहते हो? प्रोफेसर ने पूछा। आरव ने हमें सर हिलाया। प्रोफेसर मुस्कुराए, बेटा तुम्हारी प्रॉब्लम आवाज नहीं, तुम्हारा दिमाग है। आरव हैरान हो गया। प्रोफेसर बोले, जब तुम बोलते हो ना, तुम्हारे दिमाग में पहले से ही लोगों की हंसी चल रही होती है, उस हंसी को बंद करना सीखो। उन्होंने आरव को एक सिंपल टेक्निक सिखाई और वो थी मेडिटेशन। अब क्या, आरव ने रिटायर्ड प्रोफेसर की बात को इतना सीरियसली ले लिया कि अब वो रोज सुबह 10 मिनट मेडिटेशन करने लगा। आंखें बंद कर सांसें अंदर, फिर होल्ड, फिर सांसें बाहर, फिर सांसें अंदर, फिर होल्ड, फिर सांसें बाहर, और सिर्फ एक सेंटेंस रिपीट करते रहा, मैं अपनी आवाज पर भरोसा करता हूं, मैं अपनी आवाज पर भरोसा करता हूं। शुरू के कुछ दिन आरव को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे मेडिटेशन 10 मिनट से 15 मिनट, 15 मिनट से 20 मिनट होने लगा, अब आरव का दिमाग धीरे धीरे धीरे धीरे करके शांत होने लगा था। स्कूल में लोग अब भी हंसते थे, लेकिन पहली बार उसका दिल नहीं टूट रहा था। उसने सीख लिया था, लोगों की आवाज से ज्यादा जरूरी है अपने अंदर की आवाज को सुनना। एक दिन प्रोफेसर ने आरव को फिर दूसरा चैलेंज दिया और वो चैलेंज था रीडिंग का, स्लो रीडिंग टेक्निक का। प्रोफेसर ने कहा, अब न्यूज़पेपर उठाओ, लेकिन इस बार फास्ट नहीं, हर लाइन को धीरे धीरे पढ़ना, हर कॉमा पर रुकना, हर फुल स्टॉप पर सांस लेना। ये थी स्लो रीडिंग टेक्निक। पहले दिन उसे एक पेज पढ़ने में 20 मिनट लग गया, दूसरे दिन वही सेम पेज पढ़ने में उसे 18 मिनट लग गए, तीसरे दिन 15 मिनट और चौथे दिन 10 मिनट। और धीरे धीरे उसकी जुबान की घबराहट कम होने लगी थी। अब वो सिर्फ वर्ड्स नहीं पढ़ रहा था, अब वो उन वर्ड्स को महसूस कर रहा था। एक शाम रेडियो सुनते वक्त आरजे ने लाइव कॉलर्स को चांस दिया। आरव ने पहली बार फोन मिलाया, कॉल कनेक्ट हुआ, लेकिन जैसे ही आरजे ने बोला, हेलो हू स्पीकिंग, डर के मारे आरव ने फोन काट दिया। उसने खुद से कहा, अभी नहीं, लेकिन एक दिन जरूर। उस रात डायरी के दूसरे पेज पर उसने लिखा, हर हार में अगली जीत की प्रैक्टिस है, और उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही सालों बाद जिस आवाज पर स्कूल हंसता था, उसी आवाज का इंतजार लाखों लोग
अब रेडियो पर करने वाले थे। आरव बचपन से ही हकलाता था, बचपन से ही बहुत सारे लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, बुलीज हुई स्कूल्स में, दोस्तों में। उसके इसी हकलाने की वजह से उसके कोई दोस्त भी नहीं थे, लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। उसने कभी पीछे नहीं हटना चाहा, उसने बस यही सोचा कि उसे आरजे बनना है और वो आरजे बनकर रहेगा। तो दोस्तों, आरव जो है अपने मकसद के लिए तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा है। तो दोस्तों, आरव जो है वो अपने मकसद के लिए बहुत ज्यादा जिद्दी है और वो अपने मकसद को पूरा कर लेगा। क्या आपके कुछ ऐसे मकसद है, क्या आपके कुछ ऐसे ड्रीम्स है जो आप पूरा करना चाहते हैं पर पूरे हो नहीं पा रहे? तो अगर ऐसे कुछ ड्रीम्स है तो उसके लिए एक सिंपल सी टेक्निक है, मेडिटेशन। मेडिटेशन करते रहिए, अपने दिमाग को साफ कीजिए, अपनी दूरदृष्टि को और ज्यादा केंद्रित कीजिए और अपने सपने की ओर आगे बढ़िए। क्योंकि मैं जानता हूं, जब चीजें क्लियर होती है तब कुछ भी चीज नामुमकिन नहीं होती है। तो आरव के साथ आगे क्या हुआ ये सुनेंगे हम एक ब्रेक के बाद। तब तक के लिए सुनते रहिए आचार्य 90 FM पर कहानियों के गुल्लक।

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे शब्बीर स्वागत करता हूँ आपका कहानियों की गुल्लक में। आरव को फोन आया और वहां से स्टेशन हेड ने कहा कि क्या आप ऑडिशन देना चाहेंगे। आरव का फोन हाथ से गिर गया, फिर आरव ने उसे झट से उठाया और कहा जी मैं देना चाहूंगा। कहते हैं सपने देखना आसान होता है लेकिन उन सपनों को रोज जीना बहुत मुश्किल। आरव के लिए आज वही दिन था। सुबह 6 बजे ही उसकी आंख खुल गई। आज रेडियो वेव FM का फाइनल ऑडिशन था। उसने रेडियो होकर स्टडी टेबल के पास रखी हुई डायरी उठाई। उस डायरी के पहले पेज पर वही लाइन लिखी थी, एक दिन मेरी आवाज रेडियो पर गूंजेगी। उसने उस लाइन को चूमा और धीरे से बोला, आज या तो सपना पूरा होगा या फिर मैं और मेहनत करूंगा। उसने बस 15 मिनट की मेडिटेशन किया आज, बस 15 मिनट। आंखें बंद की, सांस अंदर, होल्ड, सांस बाहर, सांस अंदर, होल्ड, सांस बाहर। हर सांस के साथ उसका डर कम होता गया। फिर उसने अपनी फेवरेट एक्सरसाइज की, स्लो रीडिंग टेक्निक। आज भी उसने न्यूज़पेपर की सिर्फ एक खबर पढ़ी लेकिन हर शब्द को महसूस करके, हर कॉमे पर रुककर, हर फुल स्टॉप पर मुस्कुराकर। उसने खुद से कहा, मैं किसी से कम्पीट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ कल वाले आरव से बेहतर बनने जा रहा हूँ। रेडियो स्टेशन के बाहर लगभग 200 कैंडिडेट्स खड़े थे। किसी की हेवी वॉइस थी, कोई मिमिक्री आर्टिस्ट था, कोई थिएटर एक्टर। आरव फिर भी एक पल के लिए सोचने लगा, मैं शायद यहाँ फिट नहीं हूँ। लेकिन इसी वक्त उसकी नजर रिसेप्शन के शीशे में अपने रिफ्लेक्शन पर पड़ी। उसने धीरे से मुस्कुराकर कहा, तू यहाँ डिजर्व करता है। उसका नाम अनाउंस हुआ, कैंडिडेट नंबर 47 आरव। स्टूडियो का दरवाजा खुला, अंदर एक प्रोफेशनल सेटअप था, एक बड़ा माइक्रोफोन, हेडफोन्स, ग्लास के उस पार प्रोग्रामिंग हेड और 2 सीनियर आरजे बैठे थे। प्रोग्रामिंग हेड ने कहा, आरव हम स्क्रिप्ट नहीं देंगे, हम बस इतना चाहते कि तुम दिल से बात करो। इमेजिन करो कि रात के 11 बजे है, कोई अकेला इंसान तुम्हारी आवाज सुन रहा है, तुम उससे क्या कहोगे? आरव ने हेडफोन्स पहने, माइक के पास आया, एक गहरी सांस ली और बोला, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरव। और अगर आज आपको लग रहा है कि दुनिया आपको समझ नहीं रही है तो यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। मैं भी कभी वही लड़का था जिसकी बात पूरी होने से पहले लोग हंस दिया करते थे, लेकिन मैंने एक बात सीखी, लोगों की आवाज से ज्यादा इम्पोर्टेंट है अपने दिल की आवाज। अगर आज आपका कोई मजाक उड़ा रहा है तो आप हो सकता है आने वाले कल में एक आरजे बन जाए, लोग आपकी तारीफ करें। इसीलिए कभी अपने सपनों से समझौता मत कीजिए, क्योंकि सपने उन्हीं के सच होते हैं जो रोज उनके लिए उठते हैं, जीते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं। स्टूडियो में पूरी खामोशी थी, किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला। ऑडिशन खत्म हुआ, प्रोग्रामिंग हेड से सिर्फ इतना कहा, थैंक यू। आरव बाहर आ गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये अच्छा हुआ या बुरा। 2 दिन तक कोई फोन नहीं आया। तीसरे दिन सुबह 10 बजे मोबाइल बजा, हेलो कॉन्ग्रेचुलेशन आरव, यू आर सिलेक्टेड। उसके हाथ कांपने लगे, आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर्फ एक बात बोली, सच। दूसरी तरफ से जवाब आया, वेलकम टू रेडियो वेव FM। उस दिन घर में पहली बार इतनी खुशी थी। पापा ने ऑटो जल्दी खड़ा कर दिया, माँ ने उसकी फेवरेट खीर बनाई, प्रोफेसर को फोन किया। प्रोफेसर सिर्फ इतना बोले, मैंने कहा था ना, प्रॉब्लम तुम्हारी आवाज नहीं थी, तुम्हारा डर था। एक हफ्ते बाद उसका पहला शो लाइव था, रेड लाइट जली, प्रोड्यूसर ने काउंटडाउन दिया, 5 4 3 2 1 ऑन एयर। आरव ने मुस्कुराकर कहा, गुड मॉर्निंग मुंबई, मैं हूं आरव और आज हर रात हम बात करेंगे उन सपनों की जो कभी हार नहीं मानते। उसी वक्त एक कॉल आया,
दूसरी तरफ एक छोटा स्कूल स्टूडेंट था। भैया सब लोग मेरी इंग्लिश का मजाक उड़ाते हैं। आरव कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसने अपना बचपन याद किया, फिर उसने प्यार से कहा, बेटा आज जो लोग हंस रहे हैं कल वही लोग तुम्हारी सक्सेस की स्टोरी सुनेंगे। बस एक प्रॉमिस करो, कभी रुकोगे नहीं, कभी झुकोगे नहीं, कभी ठहरोगे नहीं, बस अपने सपने को पूरा करने के लिए दौड़ोगे। उस बच्चे ने कहा प्रॉमिस, कॉल कट, और आरव की आंखों में आंसू आ गए। आज उसने सिर्फ आरजे की ड्यूटी नहीं निभाई बल्कि उसने उस बच्चे का हौसला बुलंद किया जो शायद अपने सपनों से हार कर पीछे जा रहा था। महीने बीत गए, उसका शो सुपर हिट हो गया, लाखों लिसनर्स, हजारों मैसेजेस, अवार्ड्स, इंटरव्यूज, लेकिन आरव कभी नहीं बदला। एक दिन उसके स्कूल से फोन आया, हम एनुअल डे पर आपको चीफ गेस्ट बनाना चाहते हैं। ये वही स्कूल था जहां कभी उसकी आवाज का मजाक उड़ाया जाता था। स्टेज पर खड़े होते ही उसकी नजर लास्ट बेंच पर गई। उसे अपना पुराना वर्जन दिखाई दिया। स्पीच शुरू हुई। मैं बदला लेने नहीं आया, मैं शुक्रिया कहने आया हूं। अगर उस वक्त आप लोग मुझे चैलेंज ना देते तो शायद मैं इतनी मेहनत कभी नहीं करता। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं, कभी किसी बच्चे का मजाक मत उड़ाइए। हो सकता है वो बच्चा कल दुनिया की आवाज बन जाए। पूरा ऑडिटोरियम खड़े होकर तालियां बजाने लगा। उस दिन आरव ने स्टेज से उतरने से पहले एक बार आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, थैंक यू। उसकी डायरी का पहला पेज आज हकीकत बन चुका था। एक दिन मेरी आवाज भी रेडियो पर गूंजेगी, और सच में अब उसकी आवाज सिर्फ रेडियो पर नहीं लाखों दिलों में गूंजती है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है दोस्तों, कभी भी लोगों की हंसी को अपनी पहचान मत बनने दीजिए। मेडिटेशन दिमाग को शांत करता है, स्लो रीडिंग टेक्निक बोलने का कॉन्फिडेंस बढ़ाती है, और सबसे बड़ी बात, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो हर दिन हर हार के बाद भी उसके लिए खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं आज शब्बीर मिलूंगा आपसे अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए आचार्य 90 FM पर कहानियों की गुल्लक।

प्रेम को अलग अलग रूप देती है, कहानियां जो दादियां सुनाती है, कहानियां जो जीने का मकसद बताती है, कहानियां जो एक शर्ट के बटन में छुपी होती है, कहानियां जो गुल्लक के सिक्के में छुपी होती है, कहानियां जो बालियों की खनक में छुपी होती है, कहानियां जो पायल में बसती है, कहानियां जो सितार में सुनाई देती है, कहानियां जो राग में सुनाई देती है, कहानियां जो नजारों में नजर आती है, कहानियां जो पंछियों के झुंड में नजर आती है, कहानियां कहानियां कहानियां। तो दोस्तों, कहानियां हर जगह, बस जरूरत है तो उन्हें सुनने की, उन्हें महसूस करने की। तो ऐसी एक कहानी लेके आया हूं मैं आज कहानियों के गुल्लक में, जिसका नाम है एक छोटी सी मदद। मुंबई की भीड़ भाड़ भरी लोकल ट्रेन सुबह के 8:45। सब लटकते हैं इस ट्रेन में, कभी जाके देख लो आप मुंबई में, अगर आप कभी लोकल से ट्रैवल करो तो आपको नजर आएगा कि सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे का जो टाइम होता है, इन 4 घंटों में अगर आप ट्रेन में चढ़ भी पाए तो ये आपके लिए किसी ड्रीम को अचीव करने से कम नहीं होगा। बहरहाल सुनते हैं कहानी। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर हर रोज की तरह लोग भाग रहे थे, किसी को ऑफिस पहुंचना था, किसी को कॉलेज और किसी को इंटरव्यू। इसी भीड़ में एक 24 साल का लड़का था, अमन, सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से आता था। पापा एक नॉर्मल मजदूर थे, माँ हाउसवाइफ थी। इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद भी पिछले 1 साल से जॉब नहीं मिली थी। आज उसका एक बहुत बड़ा इंटरव्यू था। उसके बैग में सिर्फ एक फाइल रखी थी और पॉकेट में बस 120 रुपए। ट्रेन आई और सब लोग धक्का मुक्की करते हुए चढ़ गए। अमन भी किसी तरह ट्रेन में अंदर घुस गया। ट्रेन कुर्ला स्टेशन के पास पहुंच ही रही थी कि उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। लगभग 70 साल के बुजुर्ग, हाथ कांप रहे थे, सांस तेज चल रही थी, लोग उन्हें इग्नोर कर रहे थे। एक आदमी बोला, अरे अंकल थोड़ा साइड हो जाओ ना। दूसरा बोला, रोज ड्रामा करते हैं लोग। लेकिन अमन को कुछ अलग लगा, वो तुरंत उनके पास गया। अंकल आप ठीक हो ना? बुजुर्ग आदमी ने धीरे से बोला, पापा पानी। अमन ने बिना सोचे अपनी बोतल निकाल दी। बोतल में आधा ही पानी बचा था। खुद इंटरव्यू के लिए जा रहा था अमन, फिर भी उसने पूरा पानी अंकल को पिला दिया। थोड़ी देर बाद अंकल नॉर्मल होने लगे। अमन ने पूछा, हॉस्पिटल चलना है क्या? अंकल मुस्कुरा दिए, नहीं बेटा, शुगर लो हो गई थी ना, तभी स्टेशन आ गया। अमन उतरने लगा। अंकल ने उसका हाथ पकड़ा, बेटा तुम्हारा नाम? अमन। फोन नंबर? अमन मुस्कुरा दिया, अंकल उसकी जरूरत नहीं है, और वो भीड़ में खो गया। कट टू इंटरव्यू हॉल। रिसेप्शनिस्ट बोली, सॉरी सर, इंटरव्यू ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, आप 12 मिनट लेट हो। अमन ने बहुत रिक्वेस्ट की लेकिन रिसेप्शनिस्ट ने एंट्री नहीं दी। वो बाहर बेंच पर बैठ गया, आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, काश मैं ट्रेन में नहीं रुकता। उसने घर फोन नहीं किया, सीधे मरीन ड्राइव चला गया, हताश मायूस होकर। समंदर के सामने बैठकर बस ये सोचता रहा, एक छोटी सी मदद और बदले में इंटरव्यू भी चला गया। उसे लगा, अच्छा इंसान बनना शायद प्रैक्टिकल दुनिया में लॉस की डील है। उस रात घर जाकर माँ ने पूछा, इंटरव्यू कैसा गया बेटा? अमन ने झूठ बोल दिया, अच्छा था माँ। पापा बोले, जॉब मिल गई। लेकिन अमन जानता था आज उसने एक मौका खो दिया है। 2 दिन बाद उसके फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। हेलो, क्या मैं अमन से बात कर रहा हूँ? जी, कल सुबह 11 बजे इस एड्रेस पर आ सकते हो? पर क्यों? सर ने बुलाया है। कौन सर? बस आ जाइए।

फोन कट। अमन को लगा कोई फ्रॉड होगा, लेकिन एड्रेस देखकर वो हैरान रह गया। मुंबई की एक बहुत बड़ी कंपनी का हेड ऑफिस। अगली सुबह वो वहां पहुंच गया। रिसेप्शनिस्ट उसका नाम सुनते ही बोली, सर आपका ही वेट कर रहे थे। अमन कंफ्यूज हो गया। कॉन्फ्रेंस रूम का डोर खुला और सामने वही ट्रेन वाले बुजुर्ग अंकल बैठे थे, लेकिन इस बार सूट पहने हुए, साथ में कंपनी के डायरेक्टर्स। अमन शॉक हो गया। अंकल आप? अंकल मुस्कुराए, बेटा मैं इस कंपनी का फाउंडर हूं। अमन की सांसें रुक गई। अंकल बोले, उस दिन ट्रेन में किसी को नहीं पता था मैं कौन हूं, सबने मुझे इग्नोर किया, सिर्फ तुम रुक गए। मैं तुम्हें रिवॉर्ड देने के लिए नहीं बुलाया हूं यहां पर, मैं देखना चाहता था क्या तुम वैसे ही इंसान हो जैसे उस दिन थे। और यहीं से अमन की जिंदगी पर एक नया मोड़ आया। वो नया मोड़ क्या है तो सुनते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले दोस्तों एक बात ये जरूर समझिए कि आपकी की हुई छोटे से भी मदद, यानी किसी को पानी पिलाना हो या किसी बच्चे को बिस्किट्स देना हो या किसी भूखे को एक वड़ा पाव खिलाना हो, कोई भी छोटी हेल्प कभी वेस्ट नहीं होती, कभी जाया नहीं जाती। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, जैसे कहते हैं ना कर्मा हर जगह होता है, तो आपके कर्म जितने अच्छे होंगे वो आपको आपकी जिंदगी में अच्छाई की ओर ही लेके जाएंगे। सो हमेशा याद रखिए, अगर आपसे आप छोटी सी भी हेल्प कर सकते हो किसी के लिए तो जरूर कीजिएगा। और हाँ, एक अच्छा काम आप और कर सकते हैं, इस ब्रेक पर सुनते रहिए गाने और ब्रेक के बाद फिर से आइए, क्योंकि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है वो बहुत मजेदार है। तो जाइएगा नहीं, सुनते रहिए आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त, मिलता हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाय।

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 एफएम। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे शब्बीर स्वागत करता हूँ आपका कहानियों के गुल्लक में। इतनी सारी कहानियां कहां कहां से खोजनी पड़ती है क्या बताओ, पर ठीक है। फिलहाल हम थे अमन की कहानी पर। अमन ने कैसे एक बुजुर्ग इंसान को ट्रेन से रुककर हेल्प की और बाद में उसका इंटरव्यू चला गया। वो बेचारा हताश होकर मरीन लाइन पे बैठा, फिर घर आया, घर पे झूठा जवाब दिया। हाँ, मैं क्यों रिकैप बता रहा हूँ, आप तो सुन चुके थे ना कहानी। तो चलिए सुनते हैं कहानी का अगला हिस्सा। कॉन्फ्रेंस रूम में पूरी खामोशी थी। अमन अब भी यकीन नहीं कर रहा था कि लोकल ट्रेन में जिस बुजुर्ग को उसने पानी पिलाया था वो मुंबई की एक बहुत बड़ी कंपनी के फाउंडर थे। उनका नाम था राजेंद्र मेहता। राजेंद्र जी मुस्कुराकर बोले, बेटा तुम्हें पता है उस दिन तुमने मेरी सिर्फ जान नहीं बचाई थी, तुमने मेरा इंसानियत पर भरोसा भी वापस लौटा दिया। अमन ने धीरे से कहा, सर मैं तो सिर्फ वही कर रहा था उस दिन जो हर इंसान को करना चाहिए था। राजेंद्र जी की आंखों में एक अलग सी चमक आ गई। बेटा बस उसी कार्य की वजह से, उसी मदद की वजह से आज आप यहां हमारे सामने बैठे हैं। इस बार इंटरव्यू में अमन से टेक्निकल क्वेश्चंस कम और जिंदगी के सवाल ज्यादा पूछे गए। एक सवाल पूछा गया उससे, कल अगर तुम्हारे पास सिर्फ 100 रुपए बचे हो और किसी भूखे बच्चे को खाना चाहिए

जो जिसको मदद की जरूरत हो उस इंसान को हमेशा वो मदद करता, वो उसकी एक अच्छी आदतों में से थी। अब अमन को जॉब मिल गई, अमन नौकरी करने लगा। एक दिन गुजरा, एक महीना गुजरा, दो महीना गुजरा, गुजरते गुजरते 6 महीने गुजर गए और एक नए सफर का अब हो गया आगाज। अमन कंपनी का सबसे मेहनती एम्प्लॉय बन चुका था, ऑफिस में सब उसकी रिस्पेक्ट करते थे। एक दिन राजेंद्र जी ने उसे अपने कैबिन में बुलाया। अमन मेरी एक विश है। जी सर, बोलिए ना। हर फ्राइडे हम लोग किसी न किसी की मदद करेंगे। अमन हैरान हुआ, सर कंपनी? राजेंद्र जी बोले, नहीं हम। उस फ्राइडे दोनों बिना किसी मीडिया, बिना किसी कैमरा के एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए, किसी पेशेंट की मेडिसिन भर दी, किसी बच्चे की स्कूल फीस भर दी, किसी बुजुर्ग के लिए हियरिंग मशीन खरीद ली, और हर बार एक ही शर्त होती, कभी किसी को मत बताना किसने मदद की। और यहां से शुरू हुआ एक ऐसा सिलसिला जिसकी शायद कभी राजेंद्र जी ने कल्पना भी नहीं की थी कि कभी जिंदगी में वो अपने एक नॉर्मल से एम्प्लॉय के साथ जाकर ऐसी मदद लोगों की करेंगे। एक दिन ऑफिस की पैंट्री में पियून रमेश उदास बैठा था। अमन ने पूछा, क्या हुआ? रमेश बोला, मेरी बेटी का कॉलेज एडमिशन है, फीस नहीं भर पा रहा। उस रात अमन ने अपनी सेविंग से उसकी आधी फीस भर दी। बाकी इम्प्लॉयज को पता चला, सबने मिलकर बाकी की अमाउंट अरेंज कर दी। किसी ने 500 रुपए दिए, किसी ने 1000 रुपए दिए, किसी ने बुक स्पॉन्सर्स कर दी। 2 दिन में पूरी फीस जमा हो गई। रमेश रो पड़ा। उसकी बेटी ने कॉलेज ज्वाइन कर लिया और उस दिन ऑफिस में एक नया इनिशिएटिव शुरू हुआ, लिटिल हेल्प क्लब। रूल सिर्फ एक था, हर एम्प्लॉय महीने का सिर्फ 100 रुपया कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। जो दे सकता है वो ज्यादा भी दे सकता है, कोई फोर्स नहीं है। पहले महीने सिर्फ 23 लोग जुड़े, लेकिन दूसरे महीने में 81 लोग जुड़ गए। एक साल के अंदर पूरी कंपनी जुड़ गई। उस फंड से 42 बच्चों की स्कूल की फीस भरी गई, 18 पेशेंट्स का ऑपरेशन हुआ, 70 सीनियर स्टूडेंट्स को राशन दिया गया, फ्लड अफेक्टेड फैमिलीज तक रिलीफ पहुंचाई गई, और सबसे खास बात, किसी भी न्यूज़पेपर में फोटो नहीं छिपी, किसी सोशल मीडिया में पोस्ट नाम नहीं डाला गया, सिर्फ लोगों की दुआएं मिली। और क्या, एक बार अमन ऑफिस से घर जा रहा था, सिग्नल पर एक छोटा सा लड़का पेन बेच रहा था, लोग उसे डांट रहे थे। अमन ने उससे पूछा, स्कूल जाते हो? लड़का बोला, पापा का एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद से मैंने स्कूल छोड़ दिया। अमन ने उस बच्चे से सारे पेन खरीद लिए, लेकिन पेन लेने के बाद वो बोला, कल से पेन नहीं बेचना, स्कूल जाना। उसने उस लड़के का एडमिशन एक एनजीओ के थ्रू करवा दिया। उसका नाम था इमरान। उस दिन अमन को नहीं पता था ये छोटी सी मदद आगे चलकर उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाली है। तो दोस्तों, अमन की जो आदत थी हर इंसान को मदद करने की, चाहे वो इंसान छोटा हो, बड़ा हो, किसी भी धर्म, किसी भी जाति का हो, उससे फर्क नहीं पड़ता था। उसके अंदर एक सबसे बड़ी चीज थी, वो थी इंसानियत, और वो उस इंसानियत को अपने अंदर जिंदा रखे हुए था। इसीलिए हर किसी व्यक्ति जिसे मदद की जरूरत होती थी तो अमन उसके लिए हमेशा खड़ा होता, चाहे वो जिस प्रकार उसे हेल्प कर पाए। जैसे पियून की बच्ची की आधी फीस भर दी, उसके पास शायद पूरे फीस भरने के पैसे ना हो, इसलिए उसने आधी फीस भरी, बच्चे के पूरे पेन खरीद लिए। वो हर तरह की मुमकिन कोशिश करता जिससे

वो भी परेशान है, जिसे भी हेल्प की जरूरत है उसे वो करे और इंसानियत का पैगाम और आगे पहुंचाए। तो आगे इमरान को मदद करने के बाद इमरान क्या स्कूल पढ़ पाएगा, क्या इमरान स्कूल जाएगा, या फिर इमरान फिर से उस सिग्नल पर आके पेन बेचेगा, क्या होगा कहानी में मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानता, पर इतना जरूर जानता हूं कि कहानी के खत्म होने होने तक आप इस कहानी से एक ऐसी सीख जरूर लेंगे जिससे आपकी जिंदगी में बदलाव जरूर आएगा। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए सुनते रहिए आचार्य 90 FM पर बहुत मजेदार गाने।

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त स्वागत करता हूं आपका आचार्य 90 FM पर। आप सुन रहे हैं कहानियों गुल्लक, कहानियों की गुल्लक आरजे शब्बीर के साथ। जैसे हम जान रहे हैं कि इमरान की मदद कर दी, पेन खरीद कर उसे एनजीओ के द्वारा एक एडमिशन करवा दिया उसका स्कूल में। इमरान स्कूल जाने लगा, धीरे धीरे ऑफिस का जो लिटिल हेल्प क्लब शुरू हुआ था वो भी अब और ज्यादा लोगों की मदद करने लगा। सारे काम अच्छे से हो रहे थे, दिन बदले, महीने बदले और पूरे 2 साल बीत गए। राजेंद्र जी रिटायरमेंट अनाउंस करते हैं, एनुअल फंक्शन में हजारों एम्प्लॉयज बैठे हैं, सब सोच रहे थे कि स्पीच बिजनेस के बारे में होगी। लेकिन राजेंद्र जी ने स्टेज पर आते ही एक बोतल पानी उठाई और बोले, मेरी कंपनी को आज जो असली लीडर मिला है उसने मुझे किसी बोर्ड रूम में इंप्रेस नहीं किया था, उसने मुझे मुंबई की लोकल ट्रेन में एक बोतल पानी देकर जीत लिया था। पूरा हॉल खामोश था, सबकी नजर अमन पर थी। उस दिन पहली बार कंपनी को पता चला कि एक छोटी सी मदद ने सिर्फ एक इंसान की जान नहीं बचाई थी, उसने पूरी कंपनी की कल्चर बदल दी थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि कुछ साल बाद वही छोटा लड़का इमरान फिर से अमन की जिंदगी में लौटने वाला था और इस बार मदद का असली मतलब दुनिया देखने वाली थी। 3 साल बीत चुके थे, अमन को अब कंपनी में सीनियर मैनेजर की पोस्ट मिल गई थी, सैलरी अच्छी थी, घर की फाइनेंशियल कंडीशन भी सुधर गई थी। पापा ने अब काम से रेजिग्नेशन दे दिया था, मां अब अपने जो शौकिया तौर पर गाने गाती थी वो पूरे करने में लगी थी। लेकिन चीज नहीं बदली, और वो एक चीज थी, हर फ्राइडे अमन किसी ना किसी की बिना नाम बताए मदद करता था। उसका मानना था मदद का असली मजा तो तब है जब सामने वाले को सिर्फ इंसानियत याद रहे, मदद करने वाले का नाम नहीं। एक शाम अमन ऑफिस से घर लौट रहा था, हाईवे पर उसने देखा कि एक बाइक और ट्रक की टक्कर हो गई है। डजंस लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बना रहे थे, कोई इंजर्ड आदमी के पास नहीं जा रहा था। अमन तुरंत अपनी कार रोककर भागा, उसने एम्बुलेंस को कॉल किया, अपनी शर्ट फाड़ कर ब्लीडिंग रोकने की कोशिश की और इंजर्ड को हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर्स ने तुरंत ऑपरेशन शुरू किया। डॉक्टर्स बाहर आ गए और बोले, अगर पेशेंट 10 मिनट और लेट आता तो बचना मुश्किल था। अमन चुपचाप वहां से निकल गया, उसने अपना नाम भी रजिस्टर में नहीं लिखवाया। कुछ महीने बाद कंपनी के एनुअल CSR इवेंट हुआ, चीफ गेस्ट का नाम अनाउंस हुआ, डॉक्टर इमरान शेख। अमन ने नाम सुना और हैरान रह गया। स्टेज पर एक कॉन्फिडेंट यंग लड़का आया, स्पीच शुरू हुई। आज जो मैं हूं उसका क्रेडिट मेरी मेहनत को कम और 2 अननोन हीरोज को ज्यादा जाता है। सब ध्यान से सुनने लगे। पहला हीरो, एक इंसान जिसने बचपन में मेरे सारे पेन खरीदने के बाद मुझे स्कूल वापस भेजा। अमन की आंखों में आंसू आ गए। डॉक्टर इमरान ने स्टेज से अमन की तरफ देखा और कहा, मुझे आज भी याद है उस भैया ने कहा था, जिंदगी पेन बेचने के लिए नहीं सपने लिखने के लिए होती है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। और दूसरा हीरो, डॉक्टर इमरान ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, दूसरा हीरो मुझे कुछ महीने पहले मिला था, या शायद मिला भी नहीं, सब कंफ्यूज हो गए। एक रोड एक्सीडेंट हुआ था, मैं ही वो पेशेंट था। हॉल में सन्नाटा छा गया। किसी अननोन इंसान ने मेरी जान बचाई, हॉस्पिटल पहुंचाया, नाम तक नहीं बताया। डॉक्टर ने कहा, आज भी मैं उस हीरो को ढूंढ रहा हूं। अमन चुप था। राजेंद्र मेहता जो ऑडियंस में बैठे थे सब समझ चुके थे। उन्होंने धीरे से अमन का हाथ पकड़कर कहा, बेटा कुछ मदद
अप्लॉज के लिए नहीं होती। अमन सिर्फ मुस्कुराया। फिर क्या, उसी शाम राजेंद्र जी ने एक अनाउंसमेंट की, आज से हम कंपनी के लिटिल हेल्प क्लब को एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट बना रहे हैं। नाम रखा गया लिटिल हेल्प फाउंडेशन। फाउंडेशन का मिशन बहुत सिंपल था, हर इंसान रोज सिर्फ एक छोटी मदद करे, ना करोड़ों का डोनेशन ना बड़े प्रॉमिसेस, सिर्फ एक छोटा सा काम, किसी को रोड क्रॉस करवाना, किसी स्टूडेंट्स की फीस भरना, किसी को ब्लड डोनेट करना, किसी को जॉब रेफर करना, किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी उदास इंसान की बात सुन लेना। धीरे धीरे करके 5 साल बीत गए, फाउंडेशन पूरे इंडिया के कई शहरों में काम करने लगी, हजारों वॉलंटियर्स जुड़ गए, लाखों लोगों तक मदद पहुंचने लगी। मीडिया ने राजेंद्र जी से पूछा, सर इतनी बड़ी मूवमेंट की शुरुआत कैसे हुई? राजेंद्र जी ने टेबल पर रखी एक पुरानी प्लास्टिक की पानी की बोतल उठाई और बोले, इस बोतल से। रिपोर्टर हैरान रह गए। राजेंद्र जी मुस्कुराकर बोले, एक दिन मुंबई की लोकल ट्रेन में एक लड़के ने अपना आधा पानी एक अनजान बुजुर्ग को दे दिया था। उस लड़के को नहीं पता था कि उसकी वजह से एक बोतल पानी आज हजारों लोगों की जिंदगी बदल देगा। आज कई साल बीत चुके हैं, अमन के बाल सफेद होने लगे हैं। एक दिन वो पार्क में बेंच पर बैठा था, तभी एक छोटी सी बच्ची दौड़ती आई, दादू आपकी स्टिक गिर गई। उसने स्टिक उठाकर अमन को दे दी। अमन ने मुस्कुराकर पूछा, थैंक यू बेटा, तुमने मदद क्यों की? बच्ची बोली, मम्मी कहती है छोटी सी मदद कभी छोटी नहीं होती, पता नहीं वो किसकी पूरी दुनिया बदल गई। अमन की आंखें भर आई, उसने आसमान की तरफ देखा, जैसे राजेंद्र जी बात फिर से सुन रहे हो। इंसान अपनी कमाई से अमीर नहीं बनता, अपनी मदद से बनता है। और उस पल अमन को समझ आया, एक बोतल पानी से शुरू हुआ सफर एक सोच बन चुका था, एक आदत, एक मूवमेंट, एक मिसाल बन चुका था। कभी भी किसी छोटी मदद को कम मत समझना। एक मुस्कान, एक ग्लास पानी, एक हौसला, एक रेफरल, एक सही वक्त पर दिया गया सहारा किसी की पूरी जिंदगी डायरेक्शन बदल देता है, क्योंकि अच्छाई कभी वेस्ट नहीं जाती, वो हमेशा किसी ना किसी रूप में लौट कर जरूर आती है। तो दोस्तों, जैसे कि एक आधी पानी की बोतल से शुरू हुआ सफर आज इतनी बड़ी मूवमेंट क्रिएट कर चुका था कि जिसकी कोई मतलब कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं, जो इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, चाहे जैसे भी हो, जितनी भी हो, लोगों की मदद करिए और सुनते रहिए आचार्य 90 FM। बहुत मजेदार गाने, बहुत मजेदार कहानियां, और मिलते हैं हम अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ। तब तक सुनते रहिए कहानियों के गुल्लक, सिर्फ आचार्य 90 FM।

0: नमस्ते दर्शकों, आज हम सेलिब्रिटी शो में हमने आमंत्रित किया है नीलम गोयल जी को। नीलम जी नमस्ते।
1: नमस्ते,
0: आपका स्टूडियो में भी स्वागत है और हमारे आचार्य 90 FM पे स्वागत है और सेलिब्रिटी शो में भी आपका स्वागत है। नीलम जी गोयल एक स्नातक, आगरा यूनिवर्सिटी की स्नातक रही है और कुकिंग क्लासेस, लिखना पढ़ना, समाज सेवा, सोशल वर्क, इन स्लम एरिया इनका कार्य रहा है। काउंसलिंग फॉर कैंसर पेशेंट्स, लोगों से मिलना और मुक्त छंद की कविताएं लिखती है, कृष्ण के भजन गाती है और आखर मुक्ता साहित्यिक पत्रिका में स्वरचित कविताओं का उनका गीत का छपना हुआ है। कहे अनकहे शब्दों का कैनवास इस कहानी संग्रह में स्वयं रचित कहानी मुट्ठी भर सपने का भी छपना हुआ है। साहित्यिक प्रतियोगिताओं में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित 21 सर्वश्रेष्ठ कहानियां पत्रिका को उन्होंने जीता है और पतंजलि योग पीठ से प्रमाणित योग शिक्षिका भी रह चुकी है। बहुत सारे ये सब आप वही पूछना चाहूंगी, इतना सारा आप व्यस्त रहती है, पूरा 24 घंटे भी आपको कम पढ़ते रहेंगे, तो ये सब आप मैनेज कैसे करती है वो शुरू में ही करना?
1: बस मेरे को ना कुछ है कि मुझे कुछ ना कुछ करते रहना है
0: जी।
1: और इन सब चीजों से मैं बचपन से थोड़ी प्रेरित रही हूँ, क्रिएटिव मैं शुरू से ही थी
0: जी।
1: और ये जो पढ़ने का शौक मुझे लगा वो मेरी मदर से लगा।
0: अच्छा।
1: क्योंकि वो उस समय भी ना ये कौन कौन सी पुस्तिकाएं होती थी, धर्मयोग,
0: हाँ।
1: और ये कादम्बिनी, इस तरह की मतलब हाई लेवल की बुक्स पढ़ती थी। वो 12th पास थी उस समय की,
0: हाँ।
1: लेकिन कोई जॉब नहीं किया था,
0: हाँ।
1: तो बस मुझे वो उनको पढ़ते देखती थी और धीरे धीरे धीरे धीरे मेरे को रीडिंग करने की जो मिल जाता था, धर्मयोग, कोई भी पत्रिका, अखबार, मतलब जो भी मिल गया, हाँ। वो मुझे उसको पढ़ना है।
0: वाह, वेरी नाइस। आपके साहित्य के बारे में हमें बहुत कुछ जानना है, लेकिन आप कविताएं जैसे हमारी पहली मुलाकात में आप मैं जान गई थी, आप बहुत कथा सुंदर से प्रस्तुत करते हैं, कविताएं भी लिखती हैं, तो जाहिर सी बात है अभी आपने माँ का जिक्र किया तो हमारी सबकी शुरुआत तो माँ से ही होती है, तो माँ के ऊपर आपने जो कविता लिखी है वो हमें सुनाइए प्लीज।
1: सबका धन्यवाद, नमस्ते। माँ केवल एक शब्द ही नहीं है, माँ बल्कि असीम शक्ति, ममता और आस्था का स्वरूप है। जब जीवन में अंधेरा छा जाता है तो माँ का नाम ही एक दीपक बनकर हमारे जीवन में उजाला करता है और रास्ता दिखाता है। आज उसी जगत जननी शक्ति स्वरूपा माँ के चरणों में, श्री चरणों में अपनी भावनाओं का ये छोटा सा भजन अर्पित करने जा रही हूँ, श्रद्धा भक्ति के साथ आप सब जुड़िए
0: जी।
1: पधारो माँ पूजा को,

0: सुंदर बनाया है क्या बात
1: पहन लो प्यार का गजरा बहुत सुंदर बनाया है पधारो माँ पूजा को पधारो माँ पूजा को।

0: सजाया है।
1: क्या बात है, वेरी नाइस। जय माता दी। मेरा मन तो गंगा मैया के यहाँ पहुंच गया वाराणसी में, क्योंकि कितनी सुंदर, मतलब हम वो गंगा मैया को माँ कहते पुकार के बुलाते हैं, और जो गंगा आरती का जो विलोभनीय दृश्य हमें अभी आपकी ये कविता में ये पद में साकार हुआ, वेरी नाइस, वेरी मतलब वेरी टचिंग। अभी शुरू करते हैं कि आपका जो साहित्य प्रवास है, आपने जैसे बोला कि माँ बहुत बुक्स घर में रहते थे तो आप पढ़ते गए मतलब जो शैक्षणिक जो भी हमारा स्कूल का पढ़ना रहता है वो अलग, और आपको हिंदी में ज्यादा रुचि है तो आपने बीए इन हिंदी भी वैसे किया है, तो हिंदी के प्रति लगाव या फिर आस्था, आपको कौन से लेखक पसंद है हिंदी के, उसके बारे में और क्यों पसंद है?
2: मेरे को मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ बहुत पसंद हैं
1: जी,
2: और रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानियाँ बहुत पसंद, क्योंकि ये ना हमारे आसपास जो दिखता है उन सबसे जुड़ी हुई है, सामाजिक समस्याएं, स्त्री की समस्याएं, और समाज में जितनी भी व्यभिचार या जितना उत्पीड़न होता है तो उन सबके ऊपर जो कहानियाँ लिखी है तो मुझे वो बहुत टचिंग भावपूर्ण होती है, और मेरे को ना कहीं गहरे तक ऐसे ही ना क्या हुआ कभी मैंने कहीं किसी से कुछ सुना, मेरी बड़ी दीदी है तो वो भी साहित्यिक में बहुत
1: अच्छा रुचि
2: रखती हुई है बहुत ज्यादा। हाँ
1: अच्छा,
2: तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ मेरे को उसमें मैं लिखने लगी, लिखते लिखते क्या हुआ जुहू में रहते थे हम लोग तो वहाँ कृष्ण मंदिर था
1: जी
2: वॉकिंग डिस्टेंस पे, तो मैं सडनली मैंने सोच लिया था कि मैं वहाँ जाके पहले दर्शन करके फिर ही नाश्ता किया करूंगी। वहाँ जाके जब मैं पिन ड्रॉप साइलेंस होकर शांति के साथ जब बैठती थी ना तो बस भगवान का चेहरा देखती थी, तो उस चेहरे को देखकर मेरे को अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तो मैं जब उनको देखती थी ना तो मेरे को रोना आता था।
1: अच्छा,
2: और रोते रोते धीरे धीरे धीरे धीरे वो भाव उत्पन्न होने लगा।
1: हाँ,
2: और पता लगा मैं तो वहाँ बैठे बैठे मोबाइल में ही उस समय जो आता था उस समय लिखती थी।
1: अच्छा,
2: फिर घर आकर जब उनको सुनाती थी तो सबको बहुत अच्छा लगता था, मुझे भी लगता था ये कैसे लिखा गया।
1: हाँ,
2: मतलब मुझे ऐसा लगता था जैसे किसी और ने लिखा है
1: जी।
2: फिर वो लिखने लगी, फिर धीरे धीरे मैं फिर उस स्पिरिचुअल ग्रुप से जुड़ी।
1: अच्छा,
2: फेसबुक पर अब उसमें जो था मैं अपनी ये रचनाएं डालने लगी, तो मोस्टली मैं तब कृष्णा के लिए ही लिखती थी।
1: अच्छा,
2: लिखते लिखते फिर धीरे धीरे कुछ और भी भाव होने लगा, जैसे मैं कभी गार्डन में गई तो दो तीन लेडीज जैसे बैठी हुई थी वहाँ, तो वो बहुत परेशान, उन्होंने अपनी कुछ स्टोरी बताई।
1: हाँ,
2: तो मतलब मैं भी सेंट्री हो जाती थी कुछ, मैं भी ना ऐसी हूँ कि जल्दी मेरे भाव को छू जाती है किसी भी बात में, तो उन्होंने जब वो सुनाती थी तो मैं मुझे लगता था कि मुझे इनके लिए कुछ लिखना चाहिए, तो मैं उसी के ऊपर अपने शब्दों में स्टोरी लिखती थी, और वो जो स्टोरी सबको सुनाती थी ना तो सबको अच्छी लगती थी।
1: हाँ,
2: बस मेरा इंटरेस्ट वो धीरे धीरे बढ़ने लगा, फिर मैं साहित्यिक ग्रुप से जुड़ी, उसमें अपना आंगना करके मेरा साहित्यिक ग्रुप है।
1: अच्छा,
2: उसमें हम लोग सीखने सिखाने का रखते हैं, जैसे कि दोहा है, मैंने बहुत सारी चीजें सीखी उसमें, फिर जैसे दोहा है, छंद है, मुक्तक है, कविता तो मैं छंद मुक्ति लिखती हूँ।
1: अच्छा,
2: बस इस तरह से मेरा धीरे धीरे लिखने का शौक बढ़ता चला गया
1: जी। आपसे ऐसी बातचीत हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप सुनते रहिएगा आचार्य 90 FM, और आज हमारे सेलिब्रिटी शो में हमारे साथ जुड़ी है नीलम गोयल जी, जो हिंदी की साहित्यिक है, हिंदी की स्नातक है, और आप सुनते रहिएगा आचार्य 90 FM ओनली।

0: ब्रेक के बाद आप सभी से जुड़ रहे हैं सेलिब्रिटी शो में। हमारे साथ आज की सेलिब्रिटी है नीलम गोयल मैडम, और जो हमें बहुत कुछ आज कथाएं सुनवाने वाली है, कविताएं सुनवाने वाली है। मैडम आप मतलब हम सब लेडीज हैं, तो हमारी हमें डेली परेशानियां होती है, घर का भी देखना पड़ता है, और जो नौकरी व्यवसाय कर रहे हैं वो भी वहां पे मतलब बच्चों का देखना, घर का देखना और ऑफिस का भी काम देखना, दोनों स्तर पर हम लोग काम करते हैं, लेकिन बेटियों को वो स्थान नहीं मिलता जो आज के समाज में मिलना चाहिए, उसकी जरूरत है। और उसके ऊपर जो आप मैंने आपकी सुनी है वो कविता मुझे बहुत पसंद है, तो मैं चाहती हूँ हमारे आचार्य 90 FM के दर्शकों को भी वो सुनवाए। तो जरूर आपने वो आप बेटी के दर्द दुख को समझती है और उसके बारे में आपने लिखा है, तो वो जरूर हमें सुनवाइए।
1: जी बिल्कुल, ये सच बात है कि हमारे समाज में आज भी बेटियां बहुत कुछ आगे कर रही हैं
0: जी,
1: लेकिन ना फिर भी कहीं ना कहीं उनको उनका दमन होता है
0: जी,
1: कहीं ना कहीं उनको रोका जाता है और वो अपनी इच्छाओं से हर कुछ नहीं कर पाती हैं
0: जी।
1: तो मैं यही कहना चाहूंगी कि बेटी केवल एक शब्द नहीं है,
0: हाँ।
1: ये एक एहसास है और एक ऐसा प्यारा रिश्ता है जो जन्म से पहले ही दिलों से जुड़ जाता है। आज मैं उसी अनमोल रिश्ते बेटी पर अपनी भावनाएं प्रस्तुत करती हूँ।
0: जी
1: बेटी, ईश्वर की सबसे सुंदर रचना, जिसका जिसकी हंसी से घर आंगन में बसंत उतर आता है।
0: क्या बात,
1: उसकी हंसी में ही संसार की रौनक बसती है और जिसकी आंखों में भविष्य के अनगिनत सपनों की किरणें झिलमिलाती हैं। वो केवल किसी घर की लाडली ही नहीं है केवल, बल्कि हर समाज की वो आत्मा है, हर संस्कृति की पहचान है। बेटी के रूप में ही संवेदना जन्म लेती है और ममता अपना अर्थ पाती है और भविष्य अपनी दिशा।
0: वाह क्या वा?
1: आज बेटी दिवस पर हमें ये स्मरण करना है कि बेटी का सम्मान केवल एक दिन का उत्सव नहीं है, बल्कि जीवन भर निभाया जाने वाला वो संस्कार है। हर बेटी को पढ़ने का, लिखने का, अपनी इच्छा से उड़ने का, स्वयं को पहचानने का अधिकार है
0: जी।
1: क्योंकि जब एक बेटी आगे बढ़ती है तो एक पूरा युग प्रकाशमान होता है
0: जी। बिल्कुल,
1: आज की बेटी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, विज्ञान में, साहित्य में, खेल में, राजनीति में, पाक कला में, मतलब कोई ऐसा स्थान नहीं है कि जहाँ वो पहुंची नहीं है
0: जी।
1: हर जगह उसने अपनी पहचान बनाई है, उसकी उड़ान आसमानों को छू रही है, परंतु विडंबना ये है कि कुछ स्थानों पर आज भी बेटी के साथ भेदभाव, अत्याचार और शोषण का सामना उसको करना ही पड़ता है
0: जी।
1: ये सब हमें झकझोरता है, मन को परेशान कर देता है और सोचने के लिए विवश करता है और हमें सजग भी करता है
0: जी।
1: कि कोई भी बेटी अब भय और अन्याय की छाया में ना रहे, बेटी का सम्मान, सुरक्षा, उसकी देखभाल, स्वावलंबन और हमारा नैतिक, सामाजिक, मानवीय दायित्व तो है कि बेटी आस्था भी है, प्रेरणा भी है, उससे ही धरती की मुस्कान जीवित है
0: जी।
1: इसलिए बेटी केवल उत्सव नहीं, एक चेतना है, एक संकल्प है। बेटी पर कुछ पंक्तियां लिखने का प्रयास किया है जो आपसे साझा करती हूँ। नन्ही सी हंसी में उजियारा बसे
0: जी,
1: हर सपने में उसका सितारा बसे, न रोको उड़ाने, न रोको उड़ाने ये फलक छू ले, न रोको उड़ाने ये फलक छू ले, हर बेटी में ही तो सारा जहां बसे।
0: वाह,
1: बेटी मुस्कान है, बेटी अरमान है, जीवन की हर राह में वरदान है। आओ प्रण करें आज हम सभी, हर बालिका का सम्मान हमारा मान है।
0: वाह यस वेरी नाइस। अभी ये कविता तो हम सुन रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आप कथाएं भी लिखती हैं, तो आपकी कथा कहाँ और कथा और कविता कहाँ कहाँ प्रस्तुत करती हैं?
1: कथाएं और कविता ये हमारा एक साहित्यिक ग्रुप है, उसमें हाँ, भेजती हूँ, कुछ किताबों में भी छपती हैं। और मैं बहुत पहले जब मैं शादी होकर ही आई थी
0: हाँ,
1: तो वहाँ हम लोग होली का
0: त्योहार
1: मनाते थे
0: जी।
1: होली के बाद हमारे यहाँ 8 दिन तक ये लेडीज को बुलाना और
0: अच्छा,
1: खिलाना पिलाना उत्सव मनाते थे, जिसको जो रुचि होती थी वो आपस में
0: हाँ,
1: शेयर करता था
0: हाँ।
1: तो इसी तरह से एक बार हमने बुलाया हुआ था सबको
0: हाँ,
1: और मैंने उन्हीं लेडीज के ऊपर एक कुछ छोटी सी कहानी
0: अच्छा
1: सुनाई और वो मेरी फिर अमर उजाला अखबार में
0: क्या बात
1: निकली
0: है? हाँ।
1: निकली तो फिर लोगों को पता लगा कि आप लिखती भी हो। क्या होता है ना, हम लिखते तो हैं
0: हाँ।
1: लेकिन हमारी जो हमें उत्साह जो मिलता है वो औरों से मिलता है
0: जी,
1: जो पढ़ते हैं
0: हाँ।
1: जब हमारा उत्साह वर्धन होता है ना तो हमारा और इच्छा करती है हाँ शायद हमने कुछ अच्छा लिखा
0: अच्छा
1: है,
0: लिखा है
1: कुछ और इससे भी अच्छा करके दे
0: हाँ।
1: तो बस इसी तरह से धीरे धीरे धीरे धीरे मेरा लिखने का शौक बना। फिर और मैं जिस परिवार में से दूसरे परिवार में गई थी तो वहाँ का माहौल बिल्कुल अपोजिट था। तो वहाँ क्या होता था मतलब बहुत सिंपल बहुत अच्छे लोग हैं हमारे
0: हाँ।
1: वो भी लेकिन जो रहन सहन और जो ख्यालात थे वो थोड़े अलग थे
0: जी।
1: मतलब इतना डिफरेंस था कि मेरे को वो लोग बिलायती बहू कहने लगे थे।
0: अच्छा।
1: पर एक समय ऐसा आया कि जब उन्होंने मेरे विचारों को सुनते थे
0: हाँ।
1: मेरी सेवा को देखते थे तो धीरे धीरे मेरी उन्होंने लिखी हुई चीजें भी पढ़ते थे तो उनको उन्होंने फिर मतलब इतना मान सम्मान दिया कि जो मेरे बड़े लोग थे ना
0: हाँ।
1: वो भी मेरे को ऐसे इनवाइट करते थे, मैं आपको वो किस्से में बता नहीं सकती कि वो सबके बीच में मेरे को किस तरह से खड़ा करके फिर मेरा बताते थे लोगों को।
0: अच्छा अच्छा।
1: तो इस तरह से मेरा उत्साह वर्धन बहुत हुआ
0: हाँ।
1: फिर मैंने साहित्यिक ग्रुप से जुड़ी तो उसमें लिखना शुरू किया। तो एक बार मैंने अपनी फ्रेंड के ऊपर संस्मरण लिखा, जब संस्मरण लिखा तो उन लोगों को बहुत अच्छा लगा और बोले ये तो मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है मैं पढ़ रही हूँ तो जैसे मैं सामने रेखा चित्र कर दिया हो ऐसा लग रहा है। तो उससे मैं बहुत प्रेरित हुई, उत्साह वर्धन हुआ। फिर उन्होंने एक बोले कि आपको कहानियां लिखनी है
0: जी।
1: मैंने कहा मैंने ऐसी कहानियां हाँ। नहीं लिखी है
0: हाँ।
1: तो बोलते हैं कि नहीं नहीं आप कोशिश कीजिए आप लिखोगी आप लिख सकते हो
0: जी।
1: फिर मैंने दो कहानियां लिखी जिसमें से एक मेरी पास हुई और उन्होंने इस कहे अनकहे
0: हाँ।
1: शब्दों के कैनवास में
0: अच्छा,
1: छपी
0: छपी हाँ।
1: इससे पहले क्या था ना छोटी छोटी बुक्स में छोटी छोटी उसमें निकल रही
0: हाँ,
1: थी
0: हाँ।
1: एक जैसे ये है आखर
0: लुकता हाँ।
1: इसमें ये वर्ष में तीन निकलती थी
0: अच्छा।
1: तो उसमें एक बार एक कविता निकली एक बार वो मेरी कहानी निकली
0: अच्छा।
1: बस उससे मैं प्रेरित हुई और फिर मैंने लिखना शुरू किया
0: जी। अभी आप सामाजिक कार्य से भी जुड़े हैं, उसके बारे में भी जानना चाहेंगे कि आप कैंसर पेशेंट से ज्यादा मतलब उनसे ज्यादा मिलते हैं तो वो सामाजिक कार्य की रुचि आपने कैसे?
1: वो क्या था ना मेरे अंदर ना ये शुरू से सेवा का भाव था।
0: अच्छा।
1: जब मैंने ग्रेजुएशन करके चुकी तो एक महीने की छुट्टी थी
0: जी
1: और शायद मेरी को देखने वाले भी कुछ लोग आने वाले थे घर पर। तो उस बीच मैंने घर में कहा कि अभी तो मुझे शादी नहीं करनी है, मेरे को जो है
0: पढ़ना
1: लॉ करना है।
0: अच्छा।
1: मुझे आगे लॉ करना है
0: हाँ।
1: तो सब लोग बोले कि हाँ हाँ हो गया लॉ सब हो गया
0: अच्छा।
1: बस अब क्या और क्या करना है? मैंने कहा मेरे को अच्छा स्कूल में टीचिंग करनी है।
0: अच्छा।
1: तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा विदाउट पे करनी है तो
0: हाँ।
1: पास में एक स्कूल था छोटा सा
0: हाँ।
1: और उसमें मैं जाने लगी। वन
0: अच्छा।
1: मंथ मैंने पढ़ाया
0: हाँ।
1: अब उसमें जो था एक बच्चा भी था तो वो धीरे धीरे मुझसे बहुत अटैच हो गया और बोला दीदी मैं आपसे और भी पढ़ना चाहता। मैंने कहा ठीक है तुम घर आ जाए करो।
0: अच्छा।
1: हाँ। वो घर आने लगा, मैंने उसको पढ़ाया
0: हाँ।
1: उसका नंबर्स बहुत अच्छे आए
0: हाँ।
1: कुछ नहीं वो हो गया, मेरी शादी भी हो गई। 25 साल बाद मेरे पास कॉल आती है उसकी।
0: अच्छा।
1: कि हेलो दीदी बोल रही है। मैंने कहा आप कौन बोल रहे हैं? मैं राजू बोल रहा हूँ। मैंने कौन राजू?
0: हाँ।
1: अरे दीदी आप भूल गई
0: हाँ।
1: मैं वही राजू हूँ जिसको आपने घर पे बैठ के पढ़ाती थी आप।
0: अच्छा।
1: आज मैं इस पोस्ट पर हूँ, आया है नौकरी कर रहा हूँ, बेंगलोर में हूँ।
0: क्या बात है,
1: मतलब मैं वो पढ़ी थी उस समय खुशी की वजह से
0: हाँ।
1: तो ये मेरे को ना शुरू से था
0: हाँ।
1: और इसके बाद फिर मेरी जब शादी हो गई तो एक पास में एक दूध जिनके यहाँ से आता था
0: हाँ।
1: जैन मंदिर के बराबर में उनकी दूध
0: हाँ।
1: का गाय वगैरह रखते थे
0: हाँ।
1: तो वो जब लेते थे उनसे
0: हाँ।
1: तो उसके एक भाई की ना डेथ हो गई थी, उसके बच्चे थे तो वो परेशान थे और मुझे लगता था शायद अभी इनके घर वाले इन बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। तो मैंने उनको बोला मेरे बच्चे स्कूल चले जाते हैं, मेरे दो बच्चे हो चुके थे तब तक
0: हाँ।
1: कि वो चले जाते हैं तुम इस बीच आ जाए करो, मैं काम निपटा के 11 बजे करी तुमको टाइम दूंगी।
0: अच्छा।
1: उसको इतना अच्छा पढ़ना आ गया
0: हाँ।
1: कि उसने 12th पास किया।
0: क्या बात है।
1: और मतलब वो अपनी लाइफ में शादीवादी हो गई
0: हाँ।
1: सेट हो गई
0: जी।
1: तो मुझे ये शुरू से कुछ आदत थी। अब हाँ जब इन्होंने VRS लिया बैंक से
0: हाँ।
1: स्टेट बैंक में मेरे हस्बैंड
0: हाँ, काम करते थे
1: हाँ। तो जब इन्होंने VRS लिया तो सब लोग बोले कि अरे इतने वो ले रहे हैं और आप परेशान हो जाओगी
0: हाँ।
1: घर में रह के क्या करोगी, ये सारे दिन चाय बनवाएंगे और कॉफी बनवाएंगे, सारे दिन तुम बिजी रहोगी परेशान हो जाओ। मैंने कब जो होगा मैंने उनको समझा लिया, अगर हाँ, वो इसमें खुश है वीआरएस लेने में तो मुझे कोई हर्ज नहीं है
0: जी।
1: तो उन्होंने जब लिया तो यही लगा कि अब हम क्या करें क्योंकि टाइम एक्सेस में रहता था, सुबह सुबह टिफिन बना के नहीं देना और बच्चे भी बड़े हो गए, अपनी नौकरी में चले गए थे बच्चे। तो ये जो राम मंदिर का ये जब हुआ तो प्रसाद देने कुछ लोग घर पर आए, जब घर पर आए तो मैं हमने उनकी आरती उतारी।
0: अच्छा,
1: आरती उतारी और घर पे बिठा के उनको पानी वानी देने के लिए कहा, तो वो बहुत खुश हुए, आरएसएस के लोग थे
0: जी।
1: जब वो उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि कुछ दिन बाद उनका कॉल आया कि ऐसे ऐसे आप लोग उससे जुड़िए। मैंने कहा ठीक है जुड़ेंगे, आप लोग पहले घर पर आओ, ये हमको पता था कि आरएसएस के लोगों को घर पे बुलाना चाहिए
0: जी।
1: तो वो लोग धीरे धीरे हमारे यहाँ आने लगे, कभी लंच पर कभी ब्रेकफास्ट पर
0: जी।
1: तो उन्होंने कहा, मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा मेरे को ना कुछ करने का मन करता है अभी, हाँ, ऐसा लगता है मैं अभी कुछ कर नहीं रही, बेकार हूँ। तो वो बोले ठीक है आप ऐसे ऐसे करके आइए, हनुमान टेकड़ी पर साइन कोलीबारा में वहाँ कैंसर पेशेंट्स का है, और आप आइए वहाँ आइए, आपको अच्छा लगेगा, फिर आपको जिम्मेदारी देंगे।
0: ठीक है,
1: वहाँ गए, वहाँ गए तो क्या हुआ, वहाँ पेशेंट्स थे, मैं सबसे मिलने जाती थी, फिर उन्होंने एक रूम का मेरे को चार्ज दे दिया।
0: अच्छा,
1: कि आप इन लोगों से कांटेक्ट में रहिए, देखिए इन पे क्या चीज है, इनको मेंटली सपोर्ट कीजिए। तो हम उनसे जाके कभी कभी उनको भजन सुनाती थी, कभी उनसे बात करती थी, क्योंकि क्या
0: बात करने से भी वो खुल जाते हैं, क्या है ना इमोशनली अच्छे रहते हैं।
1: क्या है ना, पेशेंट्स जो है मुझे लगता है कि वो
0: डिप्रेशन
1: से नहीं जाता, वो सोच कर चला जाता
0: है जी।
1: फिर हम लोग की एनकोलॉजी को लेकर क्लासेस हुई, ट्रेनिंग हुई हमारी, तीन तीन दिन की क्लास चलती थी कि उनको साथ हम लोग को कैसे बिहेव करना है, कैसे नहीं करना है, क्या उनके सामने नहीं कहना है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता। कुछ दिन तो क्या हुआ, जब हम घर आते थे ना तो मैं सो नहीं पाती थी,
0: उनका दुख दर्द देख
1: सो नहीं पाती थी। तो ये भी समझाते थे, उन लोगों ने समझाया देखो ऐसे सेवा नहीं हो सकती है, आपको यही छोड़कर जाना होगा, यही छोड़कर जाना होगा जो भी देखा है
0: जी।
1: उनके साथ आप अच्छा एटीट्यूड कीजिए, अच्छा व्यवहार कीजिए, लेकिन घर जाकर नहीं लेना है, पर आप पढ़ जाओगे क्या फायदा है।
0: बराबर।
1: फिर बस वो धीरे धीरे वहाँ पता लगा हमको स्लम एरिया में स्कूल्स खोल रखे थे उन लोगों ने, फ्री ये शाला फ्री चला रखी थी स्लम एरिया के बच्चों के लिए। तो वहाँ उन लोगों ने, मैं गई देखने, कभी मैं स्लम एरिया में नहीं गई थी,
0: राइट,
1: लेकिन मतलब मेरे को दिक्कत भी लगती थी, मुंह बंद करके जाती थी कई बार, और कई बार बहुत कीचड़ नीचे भी होती थी, तो शूज पहन के साड़ी पहनना बंद कर दिया था, टाइट कपड़े पहनना शुरू कर दिया था, हाँ, गिरे ना कहीं
0: जी।
1: और वो बिल्कुल ऐसी रेलिंग होती थी कि देखकर लगता था कैसे
0: रहते हैं
1: हम लोग, इतने बड़े बड़ों में रह के लगते हैं हमको ये परेशानी
0: जी,
1: वो लोग कैसे रह रहे हैं। तो धीरे धीरे करके मतलब मैं पर्सनली उन लोगों से इतनी अटैच हो गई, उन लोगों ने फिर मेरे को निरीक्षण बना दिया।
0: अच्छा,
1: 35 शालाओं का निरीक्षण था, तो जो हम लोगों को हम, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों जाते थे। बस इसी तरह से धीरे धीरे करके
0: वो समाज कार्य बढ़ता गया आपका।
1: किशोरी वर्ग शुरू किया फिर हम लोगों ने, जैसे किशोरी बच्चों के लिए 8 वर्ष से और 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए, जैसा कि आजकल माहौल चल रहा है तो उनको सेव करना, उनको गाइड करना है,
0: राइट,
1: तो वो भी
0: करते हैं।
1: तो बस सब काम होते थे घर के भी, और बहुत एक्टिव रहती थी, ऐसा नहीं था कि कोई काम छोड़ के जा रही हूँ, का भी सारा काम होता था।
0: बराबर।
1: और आके बस आराम से सोते थे, मतलब बहुत रिलैक्स होता था कि हमने, हमारे हाथ से कुछ तो हुआ।
0: तो अभी अंत में आपकी एक सुंदर सी कविता वापस सुनते हैं और ये जो शो का अंत करते हैं, ठीक है?
1: ठीक, जी, थैंक यू।
0: आप कौन सी कविता पढ़ना चाहोगे?
1: आप बताओ।
0: जिंदगी के बारे में, अभी हम जिंदगी के बारे में इतने,
1: जिंदगी
0: के बारे में सुनते हैं,
1: ये कर लेगी, छोटा सा है
0: जी,
1: चलेगा।
0: या
1: जिंदगी है तो सब कुछ है, कहते हैं ना
0: जी
1: जिंदगी। इसके लिए मैंने कुछ लाइंस लिखी हैं, बहुत छोटी सी, शायद आपको पसंद आए
0: जी। बिल्कुल।
1: जिंदगी तेरे लिए मैं प्यार लाई हूँ, जिंदगी तेरे लिए मैं प्यार लाई हूँ, ये घड़ी, ये धूप, ये दिन, ये रात, कल भी आई थी,
0: आज भी आई है,
1: कल भी आई थी और आज भी आई है, किसी को ये सिंहासन देगी और किसी के लिए बेबसी देगी। ये सूरज जो सिर पे चढ़ा है शाम को पाँव में उतर जाएगा। इसी तरह ये सांस का राही क्या पता किस पाँव पर रुक जाएगा।
0: क्या बात।
1: इसी तरह ये सांस का राही क्या पता किस तरह किस पाँव पर रुक जाएगा। गीत गाओ स्नेह का संसार लाई जिंदगी मैं तेरे लिए
0: प्यार लाई हूँ। क्या बात।
1: नई आशा नए सपने नए संकल्प मैं बुलंदी का सघन विस्तार लाई मैं बुलंदी का सघन विस्तार लाई हूँ। मुस्कराओ मुस्कराओ आज मैं उपहार लाई हूँ जिंदगी तेरे लिए
0: मैं प्यार लाई हूँ। क्या बात है। कितना पॉजिटिव अप्रोच है टुवर्ड्स लाइफ, मतलब जिंदगी के ऊपर अपने बहुत अच्छा अच्छे से लिखा है। और आज हमारे आचार्य 90FM से आप जुड़े हैं इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आप ऐसे ही लिखते रहिए, मिलते रहिए और हमें हमेशा कुछ ना कुछ देते रहिए। थैंक यू सो मच जी।

वहमो गुमान से दूर दूर यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 एफएम। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे शब्बीर स्वागत करता हूँ आपका कहानियों की गुल्लक में। आज की स्टोरी काफी अलग है। वो कहते हैं ना, जिसको राकेश आई है मार सके ना कोई, मतलब अगर जिसकी हेल्प करने पर ऊपर वाला खुद उतर आए तो क्या ही कहना। पर ऊपर वाला भी तब हेल्प करता है जब आप खुद अपने उस चीज के लिए कितनी मेहनत करते हो, कितने डेडिकेटेड रहते हो, या फिर कितनी अपनी जिद के प्रति या अपने ड्रीम के प्रति आपकी जिद होती है। तो चलिए

सुनते हैं आज की कहानी जिसका नाम है माइक के उस पार। नदिया के उस पार तो आपने सुना होगा लेकिन माइक के उस पार, माइक के उस पार क्या होगा? सो लेट्स सी। अगर आपसे कोई पूछे कि एक आरजे बनने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, अच्छी आवाज, कॉन्फिडेंस या कम्युनिकेशन स्किल्स, शायद आप कहेंगे हाँ ये तीनों की जरूरत है। लेकिन आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसके पास ना कॉन्फिडेंस था, न फ्लुएंट बोलने की आदत और ना ही लोग उसकी आवाज सुनना पसंद करते थे। उसका नाम था आरव। मुंबई के एक छोटे से घर में रहता था। पापा ऑटो चलाते थे और माँ घरों में सिलाई का काम करती थी। पैसा कम था लेकिन सपने बहुत बड़े थे। आरव बचपन से ही रेडियो सुनने का शौकीन था। रात को पढ़ाई के बहाने वो छोटा सा ट्रांजिस्टर चला देता और आरजे की आवाज सुनकर खुद भी वैसे ही बोलने की प्रैक्टिस करता। उसके लिए रेडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, वो उसकी दुनिया थी। लेकिन स्कूल की दुनिया बिल्कुल अलग थी। आरव जब भी क्लास में आंसर देने के लिए खड़ा होता उसकी जुबान अटक जाती। गुड मॉर्निंग मैम, और पूरी क्लास जोर जोर से हंसने लगती। क्या हुआ, रिकॉर्ड अटक गया? कोई रिस्टार्ट करो यार इसको। हर रोज नए नए जोक्स बनते। लंच ब्रेक में भी कोई उसके साथ नहीं बैठता। एक दिन एनुअल फंक्शन के ऑडिशंस चल रहे थे। टीचर ने पूछा कौन एंकरिंग करेगा। आरव ने डरते डरते हाथ उठा दिया। और क्या, पूरा क्लासरूम एक साथ हंस पड़ा। मैम ये एंकरिंग करेगा, इससे एक सेंटेंस तो पूरा बोला नहीं जाता। टीचर्स ने भी उसका नाम क्वाइटली लिस्ट से हटा दिया। उस दिन आरव घर आया तो सीधा अपने कमरे में चला गया। माँ ने पूछा क्या हुआ बेटा, उसने बस इतना कहा कुछ नहीं माँ, बस थोड़ा थक गया हूं। लेकिन उस रात उसने पहली बार खुद से पूछा क्या मैं सच में किसी काम का नहीं हूं। उसने रेडियो चालू किया, एक आरजे कह रहा था दोस्तों दुनिया आपको तब तक जज करती रहेगी जब तक आप अपनी कहानी खुद नहीं लिखते। ये लाइंस सीधे आरव के दिल में लग गई। उसने उसी रात एक डायरी निकाली और एक पन्ने पर लिखा एक दिन मेरी आवाज भी रेडियो पर गूंजेगी। अगले दिन उसने स्कूल के मजाक को अपनी ताकत बनाने का फैसला कर लिया। जब सब उसका मजाक उड़ाते वो घर आकर और ज्यादा प्रैक्टिस करता। मिरर के सामने खड़े होकर इमेजिनरी ऑडियंस से बात करता। लेकिन प्रॉब्लम वही थी, बोलते वक्त उसका कॉन्फिडेंस टूट जाता। एक दिन लाइब्रेरी में उसकी मुलाकात एक रिटायर्ड प्रोफेसर से हुई। प्रोफेसर ने उसकी डायरी देख ली। तुम आरजे बनना चाहते हो, प्रोफेसर ने पूछा। आरव ने हमें सर हिलाया। प्रोफेसर मुस्कुराए, बेटा तुम्हारी प्रॉब्लम आवाज नहीं, तुम्हारा दिमाग है। आरव हैरान हो गया। प्रोफेसर बोले जब तुम बोलते हो ना तुम्हारे दिमाग में पहले से ही लोगों की हंसी चल रही होती है, उस हंसी को बंद करना सीखो। उन्होंने आरव को एक सिंपल टेक्निक सिखाई और वो थी मेडिटेशन। अब क्या, आरव ने रिटायर्ड प्रोफेसर की बात को इतना सीरियसली ले लिया कि अब वो रोज सुबह 10 मिनट मेडिटेशन करने लगा। आंखें बंद कर सांसें अंदर, फिर होल्ड, फिर सांसें बाहर, फिर सांसें अंदर, फिर होल्ड, फिर सांसें बाहर, और सिर्फ एक सेंटेंस रिपीट करते रहा, मैं अपनी आवाज पर भरोसा करता हूं, मैं अपनी आवाज पर भरोसा करता हूं। शुरू के कुछ दिन आरव को कुछ समझ नहीं आया लेकिन
जैसे जैसे मेडिटेशन 10 मिनट से 15 मिनट, 15 मिनट से 20 मिनट होने लगा, अब आरव का दिमाग धीरे धीरे धीरे धीरे करके शांत होने लगा था। स्कूल में लोग अब भी हंसते थे, लेकिन पहली बार उसका दिल नहीं टूट रहा था। उसने सीख लिया था लोगों की आवाज से ज्यादा जरूरी है अपने अंदर की आवाज को सुनना। एक दिन प्रोफेसर ने आरव को फिर दूसरा चैलेंज दिया, और वो चैलेंज था रीडिंग का, स्लो रीडिंग टेक्निक का। प्रोफेसर ने कहा अब न्यूज़पेपर उठाओ, लेकिन इस बार फास्ट नहीं, हर लाइन को धीरे धीरे पढ़ना, हर कॉमा पर रुकना, हर फुल स्टॉप पर सांस लेना। ये थी स्लो रीडिंग टेक्निक। पहले दिन उसे एक पेज पढ़ने में 20 मिनट लग गए, दूसरे दिन वही सेम पेज पढ़ने में उसे 18 मिनट लग गए, तीसरे दिन 15 मिनट और चौथे दिन 10 मिनट। और धीरे धीरे उसकी जुबान की घबराहट कम होने लगी थी। अब वो सिर्फ वर्ड्स नहीं पढ़ रहा था, अब वो उन वर्ड्स को महसूस कर रहा था। एक शाम रेडियो सुनते वक्त आरजे ने लाइव कॉलर्स को चांस दिया। आरव ने पहली बार फोन मिलाया, कॉल कनेक्ट हुआ, लेकिन जैसे ही आरजे ने बोला हेलो हु स्पीकिंग, डर के मारे आरव ने फोन काट दिया। उसने खुद से कहा अभी नहीं, लेकिन एक दिन जरूर। उस रात डायरी के दूसरे पेज पर उसने लिखा हर हार में अगली जीत की प्रैक्टिस है, और उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही सालों बाद जिस आवाज पर स्कूल हंसता था उसी आवाज का इंतजार लाखों लोग अब रेडियो पर करने वाले थे। आरव बचपन से ही हकलाता था, बचपन से ही बहुत सारे लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, बुलीज हुई स्कूल्स में, दोस्तों में। उसके इसी हकलाने की वजह से उसके कोई दोस्त भी नहीं थे, लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। उसने कभी पीछे नहीं हटना चाहा, उसने बस यही सोचा कि उसे आरजे बनना है और वो आरजे बनकर रहेगा। तो दोस्तों, आरव जो है अपने मकसद के लिए तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा है। तो दोस्तों, आरव जो है वो अपने मकसद के लिए बहुत ज्यादा जिद्दी है, और वो अपने मकसद को पूरा कर लेगा। क्या आपके कुछ ऐसे मकसद है, क्या आपके कुछ ऐसे ड्रीम्स है जो आप पूरा करना चाहते हैं पर पूरे हो नहीं पा रहे? तो अगर ऐसे कुछ ड्रीम्स है तो उसके लिए एक सिंपल सी टेक्निक है, मेडिटेशन। मेडिटेशन करते रहिए, अपने दिमाग को साफ कीजिए, अपनी दूरदृष्टि को और ज्यादा केंद्रित कीजिए, और अपने सपने की ओर आगे बढ़िए। क्योंकि मैं जानता हूं जब चीजें क्लियर होती है तब कुछ भी चीज नामुमकिन नहीं होती है। तो आरव के साथ आगे क्या हुआ ये सुनेंगे हम एक ब्रेक के बाद। तब तक के लिए सुनते रहिए आचार्य 90 FM पर कहानियों के गुल्लक।

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे शब्बीर स्वागत करता हूँ आपका कहानियों की गुल्लक में। आरव का फोन आया और वहां से स्टेशन हेड ने कहा कि क्या आप ऑडिशन देना चाहेंगे। आरव का फोन हाथ से गिर गया, फिर आरव ने उसे झट से उठाया और कहा जी मैं देना चाहूंगा। कहते हैं सपने देखना आसान होता है लेकिन उन सपनों को रोज जीना बहुत मुश्किल। आरव के लिए आज वही दिन था। सुबह 6 बजे ही उसकी आंख खुल गई। आज रेडियो वेव FM का फाइनल ऑडिशन था। उसने रेडियो होकर स्टडी टेबल के पास रखी हुई डायरी उठाई। उस डायरी के पहले पेज पर वही लाइन लिखी थी, एक दिन मेरी आवाज रेडियो पर गूंजेगी। उसने उस लाइन को चूमा और धीरे से बोला, आज या तो सपना पूरा होगा या फिर मैं और मेहनत करूंगा। उसने बस 15 मिनट की मेडिटेशन की आज, बस 15 मिनट। आंखें बंद की, सांस अंदर, होल्ड, सांस बाहर, सांस अंदर, होल्ड, सांस बाहर। हर सांस के साथ उसका डर कम होता गया। फिर उसने अपनी फेवरेट एक्सरसाइज की, स्लो रीडिंग टेक्निक। आज भी उसने न्यूज़पेपर की सिर्फ एक खबर पढ़ी लेकिन हर शब्द को महसूस करके, हर कॉमे पर रुककर, हर फुल स्टॉप पर मुस्कुराकर। उसने खुद से कहा, मैं किसी से कम्पीट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ कल वाले आरव से बेहतर बनने जा रहा हूँ। रेडियो स्टेशन के बाहर लगभग 200 कैंडिडेट्स खड़े थे। किसी की हेवी वॉइस थी, कोई मिमिक्री आर्टिस्ट था, कोई थिएटर एक्टर। आरव फिर भी एक पल के लिए सोचने लगा, मैं शायद यहाँ फिट नहीं हूँ। लेकिन इसी वक्त उसकी नजर रिसेप्शन के शीशे में अपनी रिफ्लेक्शन पर पड़ी। उसने धीरे से मुस्कुराकर कहा, तू यहाँ डिजर्व करता है। उसका नाम अनाउंस हुआ, कैंडिडेट नंबर 47 आरव। स्टूडियो का दरवाजा खुला, अंदर एक प्रोफेशनल सेटअप था, एक बड़ा माइक्रोफोन, हेडफोन्स, ग्लास के उस पार प्रोग्रामिंग हेड और 2 सीनियर आरजे बैठे थे। प्रोग्रामिंग हेड ने कहा, आरव हम स्क्रिप्ट नहीं देंगे, हम बस इतना चाहते कि तुम दिल से बात करो। इमेजिन करो कि रात के 11 बजे है, कोई अकेला इंसान तुम्हारी आवाज सुन रहा है, तुम उससे क्या कहोगे? आरव ने हेडफोन्स पहने, माइक के पास आया, एक गहरी सांस ली और बोला, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरव। और अगर आज आपको लग रहा है कि दुनिया आपको समझ नहीं रही है तो यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। मैं भी कभी वही लड़का था जिसकी बात पूरी होने से पहले लोग हंस दिया करते थे, लेकिन मैंने एक बात सीखी, लोगों की आवाज से ज्यादा इम्पोर्टेंट है अपने दिल की आवाज। अगर आज आपका कोई मजाक उड़ा रहा है तो आप हो सकता है आने वाले कल में एक आरजे बन जाए, लोग आपकी तारीफ करें। इसीलिए कभी अपने सपनों से समझौता मत कीजिए, क्योंकि सपने उन्हीं के सच होते हैं जो रोज उनके लिए उठते हैं, जीते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं। स्टूडियो में पूरी खामोशी थी, किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला। ऑडिशन खत्म हुआ, प्रोग्रामिंग हेड से सिर्फ इतना कहा, थैंक यू। आरव बाहर आ गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये अच्छा हुआ या बुरा। 2 दिन तक कोई फोन नहीं आया। तीसरे दिन

जो कभी हार नहीं मानते। उसी वक्त एक कॉल आया, दूसरी तरफ एक छोटा स्कूल स्टूडेंट था। भैया सब लोग मेरी इंग्लिश का मजाक उड़ाते हैं। आरव कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसने अपना बचपन याद किया, फिर उसने प्यार से कहा, बेटा आज जो लोग हंस रहे हैं कल वही लोग तुम्हारी सक्सेस की स्टोरी सुनेंगे। बस एक प्रॉमिस करो, कभी रुकोगे नहीं, कभी झुकोगे नहीं, कभी ठहरोगे नहीं, बस अपने सपने को पूरा करने के लिए दौड़ोगे। उस बच्चे ने कहा प्रॉमिस, कॉल कट, और आरव की आंखों में आंसू आ गए। आज उसने सिर्फ आरजे की ड्यूटी नहीं निभाई, बल्कि उसने उस बच्चे का हौसला बुलंद किया जो शायद अपने सपनों से हार कर पीछे जा रहा था। महीने बीत गए, उसका शो सुपर हिट हो गया, लाखों लिसनर्स, हजारों मैसेजेस, अवार्ड्स, इंटरव्यूज, लेकिन आरव कभी नहीं बदला। एक दिन उसके स्कूल से फोन आया, हम एनुअल डे पर आपको चीफ गेस्ट बनाना चाहते हैं। ये वही स्कूल था जहां कभी उसकी आवाज का मजाक उड़ाया जाता था। स्टेज पर खड़े होते ही उसकी नजर लास्ट बेंच पर गई। उसे अपना पुराना वर्जन दिखाई दिया। स्पीच शुरू हुई। मैं बदला लेने नहीं आया, मैं शुक्रिया कहने आया हूं। अगर उस वक्त आप लोग मुझे चैलेंज ना देते तो शायद मैं इतनी मेहनत कभी नहीं करता। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं, कभी किसी बच्चे का मजाक मत उड़ाइए। हो सकता है वो बच्चा कल दुनिया की आवाज बन जाए। पूरा ऑडिटोरियम खड़े होकर तालियां बजाने लगा। उस दिन आरव ने स्टेज से उतरने से पहले एक बार आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, थैंक यू। उसकी डायरी का पहला पेज आज हकीकत बन चुका था। एक दिन मेरी आवाज भी रेडियो पर गूंजेगी, और सच में अब उसकी आवाज सिर्फ रेडियो पर नहीं, लाखों दिलों में गूंजती है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है दोस्तों, कभी भी लोगों की हंसी को अपनी पहचान मत बनने दीजिए। मेडिटेशन दिमाग को शांत करता है, स्लो रीडिंग टेक्निक बोलने का कॉन्फिडेंस बढ़ाती है, और सबसे बड़ी बात, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो हर दिन हर हार के बाद भी उसके लिए खड़े हो जाते। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं आज शब्बीर मिलूंगा आपसे अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए आचार्य 90 FM पर कहानियों की गुल्लक।

0: नमस्ते दर्शकों, आज हम सेलिब्रिटी शो में हमने आमंत्रित किया है नीलम गोयल जी को। नीलम जी नमस्ते।
1: नमस्ते,
0: आपका स्टूडियो में भी स्वागत है और हमारे आचार्य 90 FM पर स्वागत है और सेलिब्रिटी शो में भी आपका स्वागत है। नीलम जी गोयल एक स्नातक, आगरा यूनिवर्सिटी की स्नातक रही है और कुकिंग क्लासेस, लिखना पढ़ना, समाज सेवा, सोशल वर्क इन स्लम एरिया इनका कार्य रहा है। काउंसलिंग फॉर कैंसर पेशेंट, लोगों से मिलना और मुक्त छंद की कविताएं लिखती है, कृष्ण के भजन गाती है और आखर मुक्ता साहित्यिक पत्रिका में स्वरचित कविताओं का उनका गीत का छपना हुआ है। कहे अनकहे शब्दों का कैनवास इस कहानी संग्रह में स्वयं रचित कहानी मुट्ठी भर सपने का भी छपना हुआ है। साहित्यिक प्रतियोगिताओं में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित 21 सर्वश्रेष्ठ कहानियां पत्रिका को उन्होंने जीता है और पतंजलि योग पीठ से प्रमाणित योग शिक्षिका भी रह चुकी है। बहुत सारे ये सब आप वही पूछना चाहूंगी, इतना सारा आप व्यस्त रहती है, पूरा 24 घंटे भी आपको कम पढ़ते रहेंगे, तो ये सब आप मैनेज कैसे करती है वो शुरू में ही करना?
1: बस मेरे को ना कुछ है कि मुझे कुछ ना कुछ करते रहना है
0: जी।
1: और इन सब चीजों से मैं बचपन से थोड़ी प्रेरित रही हूँ, क्रिएटिव मैं शुरू से ही थी
0: जी।
1: और ये जो पढ़ने का शौक मुझे लगा वो मेरी मदर से लगा।
0: अच्छा,
1: क्योंकि वो उस समय भी ना ये कौन कौन सी पुस्तिकाएं होती थी, धर्मयोग,
0: हाँ,
1: और ये कादम्बिनी, इस तरह की मतलब हाई लेवल की बुक्स पढ़ती थी। वो 12th पास थी उस समय की,
0: हाँ,
1: लेकिन कोई जॉब नहीं किया था,
0: हाँ,
1: तो बस मुझे वो उनको पढ़ते देखती थी और धीरे धीरे धीरे धीरे मुझे मेरे को रीडिंग करने की जो मिल जाता था, धर्मयोग, कोई भी पत्रिका, अखबार, मतलब जो भी मिल गया, हाँ, वो मुझे उसको पढ़ना है।
0: वाह, वेरी नाइस। आपके साहित्य के बारे में हमें बहुत कुछ जानना है, लेकिन आप कविताएं, जैसे हमारी पहली मुलाकात में आप मैं जान गई थी, आप बहुत कथा सुंदर से प्रस्तुत करते हैं, कविताएं भी लिखती हैं, तो जाहिर सी बात है अभी आपने माँ का जिक्र किया तो हमारी सबकी शुरुआत तो माँ से ही होती है, तो माँ के ऊपर आपने जो कविता लिखी है वो हमें सुनाइए प्लीज।
1: सबका धन्यवाद, नमस्ते। माँ केवल एक शब्द ही नहीं है, माँ बल्कि असीम शक्ति, ममता और आस्था का स्वरूप है। जब जीवन में अंधेरा छा जाता है तो माँ का नाम ही एक दीपक बनकर हमारे जीवन में उजाला करता है और रास्ता दिखाता है। आज उसी जगत जननी शक्ति स्वरूपा माँ के चरणों में, श्री चरणों में अपनी भावनाओं का ये छोटा सा भजन अर्पित करने जा रही हूँ, श्रद्धा भक्ति के साथ आप सब जुड़िए
0: जी।
1: पधारो माँ पूजा को,

0: क्या बात है, वेरी नाइस। जय माता दी। मेरा मन तो गंगा मैया के यहाँ पहुंच गया वाराणसी में, क्योंकि कितनी सुंदर, मतलब हम वो गंगा मैया को माँ कहते, पुकार के बुलाते हैं, और जो गंगा आरती का जो विलोभनीय दृश्य हमें अभी आपकी ये कविता में, ये पद में साकार हुआ, वेरी नाइस, वेरी मतलब वेरी टचिंग। अभी शुरू करते हैं कि आपका जो साहित्य प्रवास है, आपने जैसे बोला कि माँ बहुत बुक्स घर में रहते थे, तो आप पढ़ते गए मतलब जो शैक्षणिक, जो भी हमारा स्कूल का पढ़ना रहता है वो अलग, और आपको हिंदी में ज्यादा रुचि है, तो आपने बीए इन हिंदी भी वैसे किया है, तो हिंदी के प्रति लगाव या फिर आस्था, आपको कौन से लेखक पसंद है हिंदी के, उसके बारे में और क्यों पसंद है?
1: मेरे को मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ बहुत पसंद हैं
0: जी,
1: और रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानियाँ बहुत पसंद, क्योंकि ये ना हमारे आसपास जो दिखता है उन सबसे जुड़ी हुई है, सामाजिक समस्याएं, स्त्री की समस्याएं, और समाज में जितनी भी व्यभिचार या जितना उत्पीड़न होता है, तो उन सबके ऊपर जो कहानियाँ लिखी है, तो मुझे वो बहुत टच भावपूर्ण होती है, और मेरे को ना कहीं गहरे तक, ऐसे ही ना क्या हुआ, कभी मैंने कहीं किसी से कुछ सुना, मेरी बड़ी दीदी है,
0: हाँ।
1: तो वो भी साहित्यिक में बहुत
0: अच्छा रुचि
1: रखती हुई है, बहुत ज्यादा, हाँ
0: अच्छा।
1: तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, मेरे को उसमें मैं लिखने लगी, लिखते लिखते क्या हुआ, जुहू में रहते थे हम लोग, तो वहाँ कृष्ण मंदिर था
0: जी,
1: वॉकिंग डिस्टेंस पे,
0: हाँ।
1: तो मैं सडनली मैंने सोच लिया था कि मैं वहाँ जाके पहले दर्शन करके फिर ही नाश्ता किया करूंगी,
0: हाँ।
1: वहाँ जाके जब मैं पिन ड्रॉप साइलेंस होकर शांति के साथ जब बैठती थी ना,
0: हाँ।
1: तो बस भगवान का चेहरा देखती थी, तो उस चेहरे को देखकर मेरे को अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तो मैं जब उनको देखती थी ना, तो मेरे को रोना आता था,
0: अच्छा।
1: और रोते रोते धीरे धीरे धीरे धीरे वो भाव उत्पन्न होने लगा,
0: हाँ।
1: और पता लगा मैं तो वहाँ बैठे बैठे मोबाइल में ही उस समय जो आता था उस समय लिखती थी,
0: अच्छा।
1: फिर घर आकर जब उनको सुनाती थी तो सबको बहुत अच्छा लगता था, मुझे भी लगता था ये कैसे लिखा गया,
0: हाँ।
1: मतलब मुझे ऐसा लगता था जैसे किसी और ने लिखा है
0: जी।
1: फिर वो लिखने लगी, फिर धीरे धीरे मैं फिर उस स्पिरिचुअल ग्रुप से जुड़ी,
0: अच्छा।
1: फेसबुक पर अब उसमें जो था मैं अपनी ये रचनाएं डालने लगी, तो मोस्टली मैं तब कृष्णा के लिए ही लिखती थी,
0: अच्छा।
1: लिखते लिखते फिर धीरे धीरे कुछ और भी भाव होने लगा, जैसे मैं कभी गार्डन में गई,
0: हाँ।
1: तो दो तीन लेडीज जैसे बैठी हुई थी वहां,
0: हाँ।
1: तो वो बहुत परेशान, उन्होंने अपनी कुछ स्टोरी बताई,
0: हाँ।
1: तो मतलब मैं भी सेंट्री हो जाती थी कुछ, मैं भी ना ऐसी हूँ कि जल्दी मेरे भाव को छू जाती है किसी भी बात में, तो उन्होंने जब वो सुनाती थी तो मैं मुझे लगता था कि मुझे इनके लिए कुछ लिखना चाहिए, तो मैं उसी के ऊपर अपने शब्दों में स्टोरी लिखती थी, और वो जो स्टोरी सबको सुनाती थी ना, तो सबको अच्छी लगती थी,
0: हाँ।
1: बस मेरा इंटरेस्ट वो धीरे धीरे बढ़ने लगा, फिर मैं साहित्यिक ग्रुप से जुड़ी, उसमें अपना आंगना करके मेरा साहित्यिक ग्रुप है,
0: अच्छा।
1: उसमें हम लोग सीखने सिखाने का रखते हैं, जैसे कि दोहा है, मैंने बहुत सारी चीजें सीखी उसमें, फिर जैसे दोहा है, छंद है, मुक्तक है, कविता तो मैं छंद मुक्ति लिखती हूँ,
0: अच्छा।
1: बस इस तरह से मेरा धीरे धीरे लिखने का शौक बढ़ता चला गया
0: जी। आपसे ऐसी बातचीत हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप सुनते रहिएगा आचार्य 90 FM, और आज हमारे सेलिब्रिटी शो में हमारे साथ जुड़ी है नीलम गोयल जी, जो हिंदी की साहित्यिक है, हिंदी की स्नातक है, और आप सुनते रहिएगा आचार्य 90 FM ओनली।

0: ब्रेक के बाद आप सभी से जुड़ रहे हैं सेलिब्रिटी शो में। हमारे साथ आज की सेलिब्रिटी है नीलम गोयल मैडम, और जो हमें बहुत कुछ आज कथाएं सुनवाने वाली है, कविताएं सुनवाने वाली है। मैडम आप मतलब हम सब लेडीज हैं, तो हमारी हमें डेली परेशानियां होती है, घर का भी देखना पड़ता है, और जो नौकरी व्यवसाय कर रहे हैं वो भी वहां पे मतलब बच्चों का देखना, घर का देखना और ऑफिस का भी काम देखना, दोनों स्तर पर हम लोग काम करते हैं, लेकिन बेटियों को वो स्थान नहीं मिलता जो आज के समाज में मिलना चाहिए, उसकी जरूरत है। और उसके ऊपर जो आप मैंने आपकी सुनी है वो कविता मुझे बहुत पसंद है, तो मैं चाहती हूँ हमारे आचार्य 90 FM के दर्शकों को भी वो सुनवाए। तो जरूर आपने वो आप बेटी के दर्द दुख को समझती है और उसके बारे में आपने लिखा है, तो वो जरूर हमें सुनवाइए।
1: जी बिल्कुल, ये सच बात है कि हमारे समाज में आज भी बेटियां बहुत कुछ आगे कर रही हैं
0: जी,
1: लेकिन ना फिर भी कहीं ना कहीं उनको उनका दमन होता है
0: जी,
1: कहीं ना कहीं उनको रोका जाता है और वो अपनी इच्छाओं से हर कुछ नहीं कर पाती हैं
0: जी।
1: तो मैं यही कहना चाहूंगी कि बेटी केवल एक शब्द नहीं है, ये एक एहसास है और एक ऐसा प्यारा रिश्ता है जो जन्म से पहले ही दिलों से जुड़ जाता है। आज मैं उसी अनमोल रिश्ते बेटी पर अपनी भावनाएं प्रस्तुत करती हूँ।
0: जी
1: बेटी, ईश्वर की सबसे सुंदर रचना, जिसका जिसकी हंसी से घर आंगन में बसंत उतर आता है।
0: क्या बात,
1: उसकी हंसी में ही संसार की रौनक बसती है और जिसकी आंखों में भविष्य के अनगिनत सपनों की किरणें झिलमिलाती हैं। वो केवल किसी घर की लाडली ही नहीं है केवल, बल्कि हर समाज की वो आत्मा है, हर संस्कृति की पहचान है। बेटी के रूप में ही संवेदना जन्म लेती है और ममता अपना अर्थ पाती है और भविष्य अपनी दिशा।
0: वाह क्या,
1: आज बेटी दिवस पर हमें ये स्मरण करना है कि बेटी का सम्मान केवल एक दिन का उत्सव नहीं है, बल्कि जीवन भर निभाया जाने वाला वो संस्कार है। हर बेटी को पढ़ने का, लिखने का, अपनी इच्छा से उड़ने का, स्वयं को पहचानने का अधिकार है
0: जी।
1: क्योंकि जब एक बेटी आगे बढ़ती है तो एक पूरा युग प्रकाशमान होता है
0: जी। बिल्कुल,
1: आज की बेटी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, विज्ञान में, साहित्य में, खेल में, राजनीति में, पाक कला में, मतलब कोई ऐसा स्थान नहीं है कि जहाँ वो पहुंची नहीं है
0: जी।
1: हर जगह उसने अपनी पहचान बनाई है, उसकी उड़ान आसमानों को छू रही है, परंतु विडंबना ये है कि कुछ स्थानों पर आज भी बेटी के साथ भेदभाव, अत्याचार और शोषण का सामना उसको करना ही पड़ता है
0: जी।
1: ये सब हमें झकझोरता है, मन को परेशान कर देता है और सोचने के लिए विवश करता है और हमें सजग भी करता है
0: जी।
1: कि कोई भी बेटी अब भय और अन्याय की छाया में ना रहे, बेटी का सम्मान, सुरक्षा, उसकी देखभाल, स्वावलंबन और हमारा नैतिक, सामाजिक, मानवीय दायित्व तो है कि बेटी आस्था भी है, प्रेरणा भी है, उससे ही धरती की मुस्कान जीवित है
0: जी।
1: इसलिए बेटी केवल उत्सव नहीं, एक चेतना है, एक संकल्प है। बेटी पर कुछ पंक्तियां लिखने का प्रयास किया है जो आपसे साझा करती हूँ। नन्ही सी हंसी में उजियारा बसे
0: जी,
1: हर सपने में उसका सितारा बसे, न रोको उड़ाने, न रोको उड़ाने ये फलक छूले, न रोको उड़ाने ये फलक छूले, हर बेटी में ही तो सारा जहां बसे।
0: वाह,
1: बेटी मुस्कान है, बेटी अरमान है, जीवन की हर राह में वरदान है। आओ प्रण करें आज हम सभी, हर बालिका का सम्मान हमारा मान है।
0: वाह यस वेरी नाइस। अभी ये कविता है तो हम सुन रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आप कथाएं भी लिखती हैं, तो आपकी कथा कहाँ और कथा और कविता कहाँ कहाँ प्रस्तुत करती हैं?
1: कथाएं और कविता ये हमारा एक साहित्यिक ग्रुप है, उसमें भेजती हूँ, कुछ किताबों में भी छपती हैं। और मैं बहुत पहले जब मैं शादी होकर ही आई थी तो वहाँ हम लोग होली का
0: त्योहार
1: मनाते थे
0: जी।
1: होली के बाद हमारे 8 दिन तक ये लेडीज को बुलाना और खिलाना उत्सव मनाते थे, जिसको जो रुचि होती थी वो आपस में शेयर करता था। तो इसी तरह से एक बार हमने बुलाया हुआ था सबको और मैंने उन्हीं लेडीज के ऊपर एक कुछ छोटी सी कहानी
0: अच्छा
1: सुनाई और वो मेरी फिर अमर उजाला अखबार में
0: क्या बात
1: निकली
0: है? हाँ।
1: निकली तो फिर लोगों को पता लगा कि आप लिखती भी हो, क्या होता है ना हम लिखते तो हैं
0: हाँ।
1: लेकिन हमारी जो हमें उत्साह जो मिलता है वो औरों से मिलता है
0: जी,
1: जो पढ़ते हैं
0: हाँ।
1: जब हमारा उत्साह वर्धन होता है ना तो हमारा और इच्छा करती है हाँ शायद हमने कुछ अच्छा लिखा
0: अच्छा
1: है,
0: लिखा है
1: कुछ और इससे भी अच्छा करके दे
0: हाँ।
1: तो बस इसी तरह से धीरे धीरे धीरे धीरे मेरा लिखने का शौक बना। फिर और मैं जिस परिवार में से दूसरे परिवार में गई थी तो वहाँ का माहौल बिल्कुल अपोजिट था। तो वहाँ क्या होता था मतलब बहुत सिंपल बहुत अच्छे लोग हैं हमारे
0: हाँ।
1: वो भी लेकिन जो रहन सहन और जो ख्याल थे वो थोड़े अलग थे
0: जी।
1: मतलब इतना डिफरेंस था कि मेरे को वो लोग बिलायती बहू कहने लगे थे
0: अच्छा।
1: पर एक समय ऐसा आया कि जब उन्होंने मेरे विचारों को सुनते थे
0: हाँ।
1: मेरी सेवा को देखते थे तो धीरे धीरे मेरी उन्होंने लिखी हुई चीजें भी पढ़ते थे तो उनको उन्होंने फिर मतलब इतना मान सम्मान दिया कि जो मेरे बड़े लोग थे ना
0: हाँ।
1: वो भी मेरे को ऐसे इनवाइट करते थे मैं आपको वो किस्से में बता नहीं सकती कि वो सबके बीच में मेरे को किस तरह से खड़ा करके फिर मेरा बताते थे लोगों को
0: अच्छा अच्छा।
1: तो इस तरह से मेरा उत्साह वर्धन बहुत हुआ
0: हाँ।
1: फिर मैंने साहित्यिक ग्रुप से जुड़ी तो उसमें लिखना शुरू किया
0: जी।
1: तो एक बार मैंने अपनी फ्रेंड के ऊपर संस्मरण लिखा, जब संस्मरण लिखा तो उन लोगों को बहुत अच्छा लगा और बोले ये तो मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है मैं पढ़ रही हूँ तो जैसे मैं सामने रेखा चित्र कर दिया हो ऐसा लग रहा है। तो उससे मैं बहुत प्रेरित हुई, उत्साह वर्धन हुआ। फिर उन्होंने एक बोले कि आपको कहानियां लिखनी है
0: जी।
1: मैंने कहा मैंने ऐसी कहानियां नहीं लिखी है
0: हाँ।
1: तो बोलते हैं कि नहीं नहीं आप कोशिश कीजिए आप लिखोगी आप लिख सकते हो
0: जी।
1: फिर मैंने दो कहानियां लिखी जिसमें से एक मेरी पास हुई और उन्होंने इस कहे अनकहे
0: हाँ।
1: शब्दों के कैनवास में
0: अच्छा,
1: छपी
0: छपी हाँ।
1: इससे पहले क्या था ना छोटी छोटी बुक्स में छोटी छोटी उसमें निकल रही
0: हाँ,
1: थी
0: हाँ।
1: एक जैसे ये है आखर
0: लिखता हाँ।
1: इसमें ये वर्ष में तीन निकलती थी
0: अच्छा।
1: तो उसमें एक बार एक कविता निकली एक बार वो मेरी कहानी निकली
0: अच्छा।
1: बस उससे मैं प्रेरित हुई और फिर मैंने लिखना शुरू किया
0: जी। अभी आप सामाजिक कार्य से भी जुड़े हैं उसके बारे में भी जानना चाहेंगे कि आप कैंसर पेशेंट से ज्यादा मतलब उनसे ज्यादा मिलते हैं तो वो सामाजिक कार्य की रुचि आपने कैसे?
1: वो क्या था ना मेरे अंदर ना ये शुरू से सेवा का भाव था
0: अच्छा।
1: जब मैंने ग्रेजुएशन करके चुकी तो एक महीने की छुट्टी थी
0: जी
1: और शायद मेरी को देखने वाले भी कुछ लोग आने वाले थे घर पर। तो उस बीच मैंने घर में कहा कि अभी तो मुझे शादी नहीं करनी है मेरे को जो है
0: पढ़ना
1: लॉ करना है
0: अच्छा।
1: मुझे आगे लॉ करना है
0: हाँ।
1: तो सब लोग बोले कि हाँ हाँ हो गया लॉ सब हो गया
0: अच्छा।
1: बस अब क्या और क्या करना है? मैंने कहा मेरे को अच्छा स्कूल में टीचिंग करनी है
0: अच्छा।
1: तो मैंने कहा ठीक है मैंने कहा विदाउट पे करनी है तो
0: हाँ।
1: पास में एक स्कूल था छोटा सा
0: हाँ।
1: और उसमें मैं जाने लगी वन
0: अच्छा।
1: मंथ मैंने पढ़ाया
0: हाँ।
1: अब उसमें जो था एक बच्चा भी था तो वो धीरे धीरे मुझसे बहुत अटैच हो गया और बोला दीदी मैं आपसे और भी पढ़ना चाहता। मैंने कहा ठीक है तुम घर आ जाए करो
0: अच्छा।
1: वो घर आने लगा मैंने उसको पढ़ाया
0: हाँ।
1: उसका नंबर्स बहुत अच्छे आए कुछ नहीं वो हो गया मेरी शादी भी हो गई 25 साल बाद मेरे पास कॉल आती है उसकी
0: अच्छा
1: कि हेलो दीदी बोल रही है। मैंने कहा आप कौन बोल रहे हैं? मैं राजू बोल रहा हूँ। मैंने कौन राजू? अरे दीदी आप भूल गई मैं वही राजू हूँ जिसको आपने घर में बैठ के पढ़ाती थी आप
0: अच्छा।
1: आज मैं इस पोस्ट पर हूँ आया है नौकरी कर रहा हूँ बेंगलोर में मैं हूँ।
0: क्या बात है
1: मतलब मैं रो पड़ी थी उस समय खुशी की वजह से
0: हाँ।
1: तो ये मेरे को ना शुरू से था
0: हाँ।
1: और इसके बाद फिर मेरी जब शादी हो गई तो एक पास में एक दूध जिनके यहाँ से आता था
0: हाँ।
1: जैन मंदिर के बराबर में उनकी दूध
0: हाँ।
1: का गाय वगैरह रखते थे
0: हाँ।
1: तो वो जब लेते थे उनसे
0: हाँ।
1: तो उसके एक भाई की ना डेथ हो गई थी उसके बच्चे थे तो वो परेशान थे और मुझे लगता था शायद अभी इनके घर वाले इन बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। तो मैंने उनको बोला मेरे बच्चे स्कूल चले जाते हैं मेरे दो बच्चे हो चुके थे तब तक
0: हाँ।
1: कि वो चले जाते हैं तुम इस बीच आ जाए करो मैं काम निपटा के 11 बजे करीब तुमको टाइम दूंगी
0: अच्छा।
1: उसको इतना अच्छा पढ़ना आ गया
0: हाँ।
1: कि उसने 12th पास किया
0: क्या बात है
1: और मतलब वो अपनी लाइफ में शादीवादी हो गई
0: हाँ।
1: सेट हो गई
0: जी।
1: तो मुझे ये शुरू से कुछ आदत थी। अब हाँ जब इन्होंने VRS लिया बैंक से
0: हाँ।
1: स्टेट बैंक में मेरे हस्बैंड
0: हाँ, काम करते थे
1: हाँ। तो जब इन्होंने VRS लिया तो सब लोग बोले कि अरे इतने वो ले रहे हैं और आप परेशान हो जाओगी
0: हाँ।
1: घर में रह के क्या करोगी ये सारे दिन चाय बनवाएंगे और कॉफी बनवाएंगे सारे दिन तुम बिजी रहोगी परेशान हो जाओ। मैंने कहा जो होगा मैंने उनको समझा लिया, अगर हाँ, वो इसमें खुश है वीआरएस लेने में तो मुझे कोई हर्ज नहीं है
0: जी।
1: तो उन्होंने जब लिया तो यही लगा कि अब हम क्या करें क्योंकि टाइम एक्सेस में रहता था, सुबह सुबह टिफिन बना के नहीं देना और बच्चे भी बड़े हो गए, अपनी नौकरी में चले गए थे बच्चे। तो ये जो राम मंदिर का ये जब हुआ तो प्रसाद देने कुछ लोग घर पर आए, जब घर पर आए तो मैं हमने उनकी आरती उतारी।
0: अच्छा,
1: आरती उतारी और घर पे बिठा के उनको पानी वानी देने के लिए कहा, तो वो बहुत खुश हुए, आरएसएस के लोग थे
0: जी।
1: जब वो उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि कुछ दिन बाद उनका कॉल आया कि ऐसे ऐसे आप लोग उससे जुड़िए। मैंने कहा ठीक है जुड़ेंगे, आप लोग पहले घर पर आओ, ये हमको पता था कि आरएसएस के लोगों को घर पे बुलाना चाहिए
0: जी।
1: तो वो लोग धीरे धीरे हमारे यहाँ आने लगे, कभी लंच पर कभी ब्रेकफास्ट पर
0: जी।
1: तो उन्होंने कहा, मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा मेरे को ना कुछ करने का मन करता है अभी, हाँ, ऐसा लगता है मैं अभी कुछ कर नहीं रही, बेकार हूँ। तो वो बोले ठीक है आप ऐसे ऐसे करके आइए, हाँ, हनुमान टेकड़ी पर साइन कोलीवाड़ा में वहाँ कैंसर पेशेंट्स का है, और आप आइए वहाँ आइए, आपको अच्छा लगेगा, फिर आपको जिम्मेदारी देंगे।
0: ठीक है,
1: वहाँ गए, वहाँ गए तो क्या हुआ, वहाँ पेशेंट्स थे, मैं सबसे मिलने जाती थी, फिर उन्होंने एक रूम का मेरे को चार्ज दे दिया।
0: अच्छा,
1: कि आप इन लोगों से कांटेक्ट में रहिए, देखिए इन पे क्या चीज है, इनको मेंटली सपोर्ट कीजिए। तो हम उनसे जाके कभी कभी उनको भजन सुनाती थी, कभी उनसे बात करती थी, क्योंकि क्या
0: बात करने से भी वो खुल जाते हैं, क्योंकि क्या है ना इमोशनली अच्छे रहते हैं।
1: क्या है ना, पेशेंट्स जो है मुझे लगता है कि वो
0: डिप्रेशन में
1: से नहीं जाता, वो सोच कर चला जाता
0: है जी।
1: फिर हम लोग की एनकोलॉजी को लेकर क्लासेस हुई, ट्रेनिंग हुई हमारी, तीन तीन दिन की क्लास चलती थी कि उनको साथ हम लोग को कैसे बिहेव करना है, कैसे नहीं करना है, क्या उनके सामने नहीं कहना है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता। कुछ दिन तो क्या हुआ, जब हम घर आते थे ना तो मैं सो नहीं पाती थी,
0: उनका दुख दर्द देख के
1: नहीं पाती थी। तो ये भी समझाते थे, उन लोगों ने समझाया देखो ऐसे सेवा नहीं हो सकती है, आपको यही छोड़कर जाना होगा, यही छोड़कर जाना होगा जो भी देखा है
0: जी।
1: उनके साथ आप अच्छा एटीट्यूड कीजिए, अच्छा व्यवहार कीजिए, लेकिन घर जाकर नहीं लेना है, फिर आप पड़ जाओगे, क्या फायदा है।
0: बराबर।
1: फिर बस वो धीरे धीरे वहाँ पता लगा हमको, स्लम एरिया में स्कूल्स खोल रखे थे उन लोगों ने, फ्री ये शाला फ्री चला रखी थी स्लम एरिया के बच्चों के लिए। तो वहाँ उन लोगों ने, मैं गई देखने, कभी मैं स्लम एरिया में नहीं गई थी,
0: राइट,
1: लेकिन मतलब मेरे को दिक्कत भी लगती थी, मुंह बंद करके जाती थी कई बार, और कई बार बस कीचड़ नीचे भी होती थी, तो शूज पहन के साड़ी पहनना बंद कर दिया था, टाइट कपड़े पहनना शुरू कर दिया था, हाँ, गिरे ना कहीं
0: जी।
1: और वो बिल्कुल ऐसी रेलिंग होती थी कि देखकर लगता था कैसे
0: रहते हैं
1: हम लोग, इतने बड़े बड़ों में रह के लगते हैं हमको ये परेशानी, हमको ये परेशानी, वो लोग कैसे रह रहे हैं। तो धीरे धीरे करके मतलब मैं पर्सनली उन लोगों से इतनी अटैच हो गई, उन लोगों ने फिर मेरे को निरीक्षण बना दिया।
0: अच्छा,
1: 35 शालाओं का निरीक्षण था, तो जो हम लोगों को हम, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों जाते थे। बस इसी तरह से धीरे धीरे करके
0: वो समाज कार्य बढ़ता गया आपका।
1: किशोरी वर्ग शुरू किया फिर हम लोगों ने, जिसे किशोरी बच्चों के लिए 8 वर्ष से और 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए, जैसा कि आजकल माहौल चल रहा है तो उनको सेव करना, उनको गाइड करना है,
0: राइट,
1: तो वो भी
0: करते हैं।
1: तो बस सब काम होते थे घर के भी, और बहुत एक्टिव रहती थी, ऐसा नहीं था कि कोई काम छोड़ के जा रही हूँ, काफी सारा काम होता था।
0: बराबर।
1: और आके बस आराम,
0: और आप ज्यादा
1: सोते थे,
0: हाँ,
1: मतलब बहुत रिलैक्स होता था कि हमने, हमारे हाथ से कुछ तो हुआ।
0: तो अभी अंत में आपकी एक सुंदर सी कविता वापस सुनते हैं और ये जो शो का अंत करते हैं, ठीक है?
1: ठीक, थैंक यू।
0: आप कौन सी कविता पढ़ना चाहोगे?
1: आप बताओ।
0: जिंदगी के बारे में, अभी हम जिंदगी के बारे में इतने,
1: जिंदगी
0: के बारे में सुनते हैं,
1: ये कर लेती, छोटा सा है
0: जी,
1: चलेगा
0: या
1: जिंदगी है तो सब कुछ है, कहते हैं ना
0: जी
1: जिंदगी। इसके लिए मैंने कुछ लाइंस लिखी हैं, बहुत छोटी सी, शायद आपको पसंद आए
0: जी। बिल्कुल।
1: जिंदगी तेरे लिए मैं प्यार लाई हूँ, जिंदगी तेरे लिए मैं प्यार लाई हूँ, ये घड़ी, ये धूप, ये दिन, ये रात, कल भी आई थी,
0: आज भी आई है,
1: कल भी आई थी और आज भी आई है, किसी को ये सिंहासन देगी और किसी के लिए बेबसी देगी। ये सूरज जो सिर पे चढ़ा है शाम को पाँव में उतर जाएगा। इसी तरह ये सांस का राही क्या पता किस पाँव पर रुक जाएगा।
0: क्या बात है।
1: इसी तरह ये सांस का राही क्या पता किस तरह किस पाँव पर रुक जाएगा। गीत गाओ स्नेह का संसार लाई हूँ, जिंदगी मैं तेरे लिए
0: प्यार लाई हूँ। क्या बात।
1: नई आशा नए सपने नए संकल्प मैं बुलंदी का सघन विस्तार लाई हूँ। मैं बुलंदी का सघन विस्तार लाई हूँ, मुस्कराओ मुस्कराओ आज मैं उपहार लाई हूँ, जिंदगी तेरे लिए
0: मैं प्यार लाई हूँ। क्या बात है। कितना पॉजिटिव अप्रोच है टुवर्ड्स लाइफ, मतलब जिंदगी के ऊपर अपने बहुत अच्छा अच्छे से लिखा है। और आज हमारे आचार्य 90FM से आप जुड़े हैं, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप ऐसे ही लिखते रहिए, मिलते रहिए और हमें हमेशा कुछ ना कुछ देते रहिए। थैंक यू सो मच जी।

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आज शब्बीर स्वागत करता हूँ आपका कहानियों की गुल्लक में। आज की कहानी हमारी ट्रेकिंग वाली। हम में से कई सारे लोग ट्रेक पर जाते हैं, नए नए एक्सपीरियंस लेकर आते हैं बहुत सारे एडवेंचर्स के साथ। तो यही कहानी है एक नए एडवेंचर की, एक नए एक्सपीरियंस की। तो चलिए सुनते हैं 7 अनजान मुसाफिर। जिंदगी के कुछ सफर ऐसे होते हैं जो आप प्लान करते हो बिल्कुल वैसे नहीं होते, और कुछ सफर बिल्कुल प्लान की तरह होते हैं। सितंबर का महीना था, मुंबई अपनी यूजुअल स्पीड में भाग रही थी। लोकल ट्रेन्स पैक्ड, कॉर्पोरेट ऑफिसेज में डेडलाइंस, रोड्स पर ट्रैफिक, और इन सब के बीच 7 लोग थे जो अपनी बोरिंग लाइफ से कुछ वक्त के लिए भागना चाहते थे। उन्होंने एक ट्रेक ग्रुप में रजिस्ट्रेशन किया था। ट्रेक का नाम था सीक्रेट वैली, लोकेशन सीक्रेट, रूट सीक्रेट, और ऑर्गेनाइजर ने सिर्फ एक लाइन लिखी थी, एडवेंचर गारंटीड। सैटरडे सुबह 5 बजे मुंबई सेंट्रल के बाहर सब पहली बार मिले। सब एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर थे। पहले पहुंचा 28 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ऑफिस लैपटॉप और कोडिंग से भरी जिंदगी। उसके बाद रिया आई, शोल्डर पर कैमरा, फेस पर कॉन्फिडेंस। फोटोग्राफी उसका पैशन था। धीरे धीरे बाकी मेंबर्स भी आ गए, आरुष, मीरा, देव, सना और हाँ यश भी। सबने एक दूसरे को ऑकवर्ड स्माइल दी। तो हम ही हैं सीक्रेट वैली वाले, देव ने पूछा। सब हंस पड़े, आइस ब्रेक हो गई। और कुछ ही देर में ट्रैवलर वैन उन्हें लेकर मुंबई से दूर निकल पड़ी। 3 घंटे तक गाड़ी पहाड़ों और घने जंगलों से बीच गुजरती रही। गाने चल रहे थे, जोक्स चल रहे थे, और स्ट्रेंजेस धीरे धीरे दोस्त बन रहे थे। कबीर और रिया की बातें सबसे ज्यादा हो रही थी, फोटोग्राफी, ट्रैवलिंग, लाइफ, ड्रीम्स। पता नहीं चला कि कब 3 घंटे गुजर गए। गाड़ी फाइनली एक छोटे से गांव में रुक गई। विलेज इतना रिमोट था कि मोबाइल नेटवर्क लगभग गायब हो गया था। वहां एक बूढ़ा आदमी उनका इंतजार कर रहा था, सफेद दाढ़ी, पतला शरीर और अजीब सी सीरियस आंखें। मैं बापुरा हूं, गाइड, उसने सबको देखा, फिर धीरे से बोला, जो बोलो वही करना। देव हंस दिया, लगता है डेंजरस ट्रैक है, बापुराव ने जवाब दिया। जंगल में शॉर्टकट मत लेना, समझे? उस वक्त किसी ने उसकी बात को सीरियस नहीं लिया, लेकिन शाम तक सबको समझ आने वाला था कि वो बार बार शॉर्टकट का नाम क्यों ले रहा था। ट्रेक शुरू हुई। नेचर ब्रेथ टेकिंग थी। हर तरफ ग्रीनरी, क्लाउड्स, वाटरफॉल्स, बर्ड साउंड्स, सब एंजॉय कर रहे थे। रिया हर 10 मिनट में फोटो क्लिक कर रही थी। तभी उसकी नजर एक चीज पर पड़ी। गाइस गाइस गाइस गाइस गाइस, सब रुक गए। जमीन पर एक पुराना DSLR कैमरा पड़ा था, पूरा डस्टी, जैसे सालों से यहां हो। कबीर ने उठाया, ये यहां क्या कर रहा है? देव क्यूरियोसिटी में था, मेमोरी कार्ड चेक करने लगा। कैमरा डेट था लेकिन कार्ड बच गया था। देव ने पूछा, इसे कनेक्ट करके देखते हैं। फिर उस कार्ड को कनेक्ट किया, फोटोज ओपन हुई और सब चुप हो गए। फोटोज में एक ट्रेकिंग ग्रुप था, 7 लोग, एग्जैक्टली इसी जंगल में, इसी रूट पर, इसी वैली में। सब स्माइल कर रहे थे, एडवेंचर एंजॉय कर रहे थे, लेकिन लास्ट फोटो में सबके रोंगटे खड़े हो गए। लास्ट फोटो में सिर्फ एक आदमी था, बाकी 6 लोग गायब थे। डेट लिखी थी सितंबर 2019। मीरा ने धीरे से पूछा, ये लोग कौन है? किसी के पास जवाब नहीं था। लंच के दौरान वीक नेटवर्क मिल गया। सना ने गूगल सर्च की
और जो रिजल्ट सामने आया उसने सबको शॉक कर दिया। 2019 में इसी एरिया में एक ट्रेकिंग ग्रुप मिसिंग हुआ था। 7 लोग गए थे इस ट्रैक पर, सिर्फ एक वापस आया, बाकी कभी नहीं मिले। न्यूज आर्टिकल में लोकेशन भी सेम थी। सब एक दूसरे को देखने लगे। देव बोला, कोइंसिडेंस है, लेकिन उसकी आवाज में कॉन्फिडेंस नहीं था। बापूराव दूर खड़ा सब सुन रहा था। उसके चेहरे पर अजीब टेंशन थी। कबीर उसके पास गया, अंकल आपको कुछ पता है क्या वो ग्रुप के बारे में? बापूराव कुछ सेकेंड्स तक चुप रहा, फिर बोला, पुरानी बातें हैं, भूल जाओ और आगे चलो। लेकिन उसकी आंखों में जो डर था वो किसी से छुपा नहीं। शाम होने में भी कुछ घंटे बाकी थे और उन्हें नहीं पता था कि असली मुसीबत अब शुरू होने वाली है, क्योंकि आगे रास्ते दो हिस्सों में बंटने वाले थे, एक सेफ ट्रायल और एक शॉर्टकट। वही शॉर्टकट जिसने सालों पहले 6 लोगों को अपने अंदर समा लिया था। तो दोस्तों, जैसे कि हम सुन रहे थे एक ट्रेकिंग की कहानी, इस ट्रेकिंग की कहानी में कैसे 7 अनजान लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से परेशान बस इसी एक चीज के लिए आए थे कि वो एक नया एक्सपीरियंस देख पाएंगे, एक नया एक्सपीरियंस महसूस कर पाएंगे, एक नई ट्रेकिंग पर जाएंगे, एक नई एनर्जी लाएंगे। लेकिन वहां पर जाने के बाद उनको तो ऐसा कुछ महसूस हुआ जैसे कि उन्हें लगने लगा कि कोई मुसीबत में तो नहीं फंस गया अब। तो देखते हैं कहानी का अगला हिस्सा एक ब्रेक के बाद। तब तक सुनते रहिए आचार्य 90 FM और अपने मनपसंद गानों को।

स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। हम सुन रहे थे कहानियों के गुल्लक आचार्य 90 FM पर। जैसे कि आपने देखा कि कैसे ट्रेक अभी आगे जाके और मुश्किल होने वाली थी, तो सुनते हैं कहानी का अगला हिस्सा। दोपहर के लगभग 2 बजे थे। हवा में ठंडी नमी थी। जंगल और गहना होता जा रहा था। रास्ते धीरे धीरे मुश्किल होने लगे थे। कुछ देर बाद सब एक जंक्शन पर पहुंचे। रास्ते दो हिस्सों में डिवाइड हो गए थे, एक वाइट ट्रायल और एक बहुत ही नैरो जंगल पाथ। बापूराव तुरंत बोला, सब लेफ्ट वाले रास्ते से जाएंगे। लेकिन आरुष ने राइट साइड वाले पाथ को देखा, ये शॉर्टकट लग रहा है। बापूराव ने तुरंत मना किया, नहीं। यश हंस पड़ा, गाइड अंकल फिर से शॉर्टकट से डरा रहे हैं क्या? देव भी बोल पड़ा, मैप के हिसाब से तो ये रास्ता भी वैली में ही जा रहा है। बापूराव के चेहरा सीरियस हो गया, मैं 30 साल से यहाँ का गाइड हूँ, कह दिया नहीं तो मतलब नहीं। लेकिन आरुष को यकीन था कि वो सही है। अंकल अननेसेसरी लॉन्ग रूट क्यों? टाइम वेस्ट होगा। ग्रुप में डिस्कशन शुरू हो गई। कबीर और सना गाइड की साइड थे, लेकिन आरुष, देव और यश शॉर्टकट के फेवर में। रिया न्यूट्रल थी और मीरा कंफ्यूज्ड। आखिर प्रेशर में आकर बापूराव मान गया, लेकिन उसने एक बात कही, एक ऐसी बात जो बाद में सबको याद आने वाली थी। उसने धीरे से कहा, जंगल हर बार

माफ नहीं करता। शॉर्टकट ऑफिशियली सिर्फ 40 मिनट का था, लेकिन एक घंटा बीत गया, फिर डेढ़ घंटा, फिर दो घंटे, रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। सबको अजीब लगने लगा। कबीर ने जीपीएस चेक किया, स्क्रीन फ्रीज हो गई, कंपास ऐप भी वियर्ड डायरेक्शन दिखा रहा था। सना ने अपना फोन निकाला, उसमें भी सेम प्रॉब्लम। देव ने मजाक करने की कोशिश की, लगता है जंगल एवेंजर्स लेवल का मैग्नेटिक फील्ड रखता है। किसी ने कहा, नहीं हंसना, अब बस हो गया। अब टेंशन बढ़ रही थी। बापूराव बार बार आसपास देख रहा था, जैसे वो कुछ पहचानने की कोशिश कर रहा हो। अचानक वो रुक गया, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। क्या हुआ, कबीर ने पूछा। बापूराव ने धीरे से कहा, हम गलत जगह पे आ गए हैं। सब चुप। मतलब मैं भी नहीं जानता हम कहाँ हैं। एक सेकंड के लिए पूरे जंगल में सिर्फ हवा की आवाज सुनाई दी। गाइड जो 30 साल से यहां ट्रेक करा रहा था, वो खुद खो गया था। शाम होने लगी थी, क्लाउड्स नीचे उतरने लगे थे, विजिबिलिटी कम होने लगी थी। अब वापस जाना इम्पॉसिबल था। ग्रुप ने एक छोटी सी फ्लैट जगह देखकर कैंप लगाया, टेंट सेट्स हुए, स्मॉल बॉनफायर जलाया। सब नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सबके अंदर फियर था, एक डर था। डिनर के वक्त भी यूजुअल जोक्स गायब थे। रिया ने धीरे से पूछा, बापूराव सच सच बताओ, 2019 में क्या हुआ था। बापूराव कुछ सेकंड्स के लिए चुप हुआ। बॉनफायर की लाइट उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं उस ग्रुप का गाइड नहीं था। सब फ्रीज हो गए। मतलब मैं उसी ग्रुप का गाइड था, उन्होंने भी शॉर्टकट ही लिया था। देव की आवाज निकल गई, फिर? बापूराव ने नीचे देखा, 6 लोग कभी नहीं मिले। बॉनफायर के पास साइलेंस छा गया। उस रात लगभग 1 बजे सब अपने टेंट्स में सो रहे थे, तभी क्रंच क्रंच क्रंच किसी के छलने की आवाज आई। कबीर की आंख खुल गई, उसने टेंट से बाहर झांका, कोई नहीं। फिर आवाज आई, इस बार दूसरी साइड से, क्रंच क्रंच क्रंच, जैसे कोई कैंप के पास घूम रहा हो। कबीर ने टॉर्च उठाई और बाहर निकला, उसके पीछे देव भी आ गया। देखा तूने, कबीर ने सिर हिलाया। दोनों ने टॉर्च घुमाई, कुछ नहीं, सिर्फ पेड़ और डार्कनेस। तभी देव का चेहरा सफेद पड़ गया। कबीर क्या हुआ? उधर देख, लगभग 50 मीटर दूर पेड़ के पीछे कोई खड़ा था, एक आदमी। बस उसकी परछाई दिख रही थी, मोशनलेस, जैसे वो उन्हें देख रहा हो। कबीर ने टॉर्च पर फोकस की और उसी सेकंड वो आदमी गायब हो गया। बस गायब, जैसे कभी था ही नहीं। फिर सुबह हुई। सुबह सबने डिसाइड किया कि बिना रुके जंगल से बाहर निकलना है। टेंशन अपने पीक पर थी। लगभग 2 घंटे बाद उन्हें एक क्लिफ मिला, डेंजरस, बहुत डेंजरस। नीचे हजारों की फिटकी खाई, रास्ता उस क्लिफ के एज से जा रहा था। सब बहुत केयरफुली चल रहे थे। सबसे आगे यश था, उसका कॉन्फिडेंस अब भी कम नहीं हुआ था। गाइस रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। जैसे ही उसने ये बोला, उसके पैर के नीचे पत्थर टूट गया, क्रैक। सब कुछ 1 सेकंड में हुआ। यश सीधा नीचे चला गया, उसका शरीर हवा में लटक गया। नीचे सिर्फ मौत थी, हजारों फीट की खाई। उसका हाथ एक ट्री रूट में अटक गया, बस वही उसे जिंदा रखे हुए था। यश
जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ मुझे बचाओ। उसकी आवाज कांप रही थी। नीचे देखते ही उसका चेहरा सफेद हो गया। अगर ग्रिप छूट जाती तो बॉडी भी नहीं मिलती। रिया रो पड़ी। मीरा पैनिक में आ गई। सना चिल्लाई, कोई रोप निकालो। कबीर और आरुष तुरंत एक्शन में आए। उन्होंने इमरजेंसी रोप निकाली, लेकिन प्रॉब्लम थी, रूट कभी भी टूट सकती थी। यश की ग्रिप स्लिप हो रही थी, उसके हाथ से खून निकलने लगा था। मैं गिर जाऊंगा, मुझे बचा लो। उसकी आंखों में वो डर था जो सिर्फ मौत को सामने देख रहा था। कबीर क्लिफ की एज तक गया, सबने उसे पकड़ा। उसने रोप यश की तरफ फेंकी। पहली बार मिस, दूसरी बार मिस, तीसरी बार वो रोप यश ने पकड़ ली। लेकिन तभी जिस रूट को पकड़कर वो लटका था वो क्रैक करने लगी। कबीर, रूट टूट गई और यश नीचे गिरने लगा। लेकिन उसी सेकंड रोप टाइट हुई। कबीर और आरुष पूरी ताकत लगाकर रोप खींच रहे थे। उनके हाथ जल रहे थे, मसल शेक कर रहे थे। लगभग 15 मिनट के स्ट्रगल के बाद फाइनली यश को ऊपर खींच लिया गया। जैसे वो सेफ ग्राउंड पर आया, वो फूट फूट कर रो पड़ा। कोई कुछ नहीं बोला, सब समझ गए थे। आज उन्होंने मौत को अपनी आंखों के सामने देखा था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये सिर्फ शुरुआत थी। सना को कुछ और नजर आया था, कुछ ऐसा जिसने 2019 वाली मिस्ट्री को और भी ज्यादा डेंजरस बना दिया। और उस डिस्कवरी के बाद जंगल के हर राज खुलना शुरू हो गए थे। यश अभी भी शॉक में था, उसके हाथ कांप रहे थे। कबीर ने उसे पानी दिया। तू ठीक है ना? यश ने सिर्फ हाँ में सिर हिलाया, लेकिन सना की नजर अभी भी क्लिफ के नीचे थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी थी। कबीर एक मिनट इधर आओ। कबीर एज पर आया, नीचे देखा और उसका गला सूख गया। लगभग 200 फीट नीचे पेड़ों और पत्थरों के बीच कुछ सफेद सा पड़ा था। पहले तो लगा पत्थर होगा, लेकिन जब रिया ने कैमरे का जूम यूज किया सबकी सांसें रुक गई। वो एक स्केलेटन था, इंसानी हड्डियों का ढांचा, और उसके पास एक फैडेड ट्रेकिंग बैकपैक। बैग पर पूरी धूल जमे हुई थी, लेकिन एक नाम अब भी पढ़ने लायक था। वीकेंड वंडरर्स, वही नाम जो 2019 वाले मिसिंग ट्रैक के ग्रुप का था। एक सेकंड के लिए सब चुप हो गए। देव ने धीरे से कहा, मतलब उनमें से कोई यहां गिरा था? बाकुराव ने आंखें बंद कर ली, जैसे उसकी पुरानी यादें वापस आ गई। तो दोस्तों, जैसे कि हम सुन रहे हैं कि एक वीकेंड वंडरर्स करके ग्रुप था जो इनके पहले उसी ट्रैकिंग पर आया था, और उसमें से सिर्फ एक ही पर्सन मिला था, 6 लोग गायब थे। लेकिन उसमें से दूसरे पर्सन का अब मानवीय शरीर ढांचा मिला है। ये देखकर इन 7 लोगों को अब बहुत डर आया है। कहानी का अगला हिस्सा हम सुनेंगे एक ब्रेक के बाद। तब तक के लिए सुनते रहिए आचार्य 90 FM कहानियों के उल्लेख।

स्वागत है आपका आचार्य 90 एफएम में। ब्रेक के बाद शाम होने से पहले ग्रुप एक छोटी सी जगह पर रुक गया। सब आंसर्स चाहते थे। कबीर ने सीधे पूछा, बापूराव आप सच बताओ। बापूराव ने कुछ देर तक बोनफायर की आग को देखा और फिर बोला, 2019 में भी एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ था। सब ध्यान से सुनने लगे। सात लोग थे, यंग थे, एक्साइटेड थे, एडवेंचर के लिए पागल थे, बिल्कुल तुम लोगों के जैसे। उनकी आवाज भर गई। मैं गाइड था, मैं उन्हें शॉर्टकट लेने से रोकता रहा, पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। जंगल में हवा चल रही थी और बापूराव अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ उतार रहा था। हम रास्ता भटक गए थे। दो दिन जंगल में घूमते रहे। एक एक करके लोग गायब होने लगे। मीरा ने पूछा, मतलब? बापूराव ने धीरे से कहा, पता नहीं, बस लोग गायब हो रहे थे, जैसे जंगल उन्हें निगल लिया हो। सबके शरीर ठंड पड़ गए थे। उस रात मौसम अचानक से खराब होने लगा। बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी और तेज हवा चलने लगी। बापूराव चिल्लाया, हमें शेल्टर ढूंढना होगा। ग्रुप ने टॉर्च निकाली। लगभग आधे घंटे बाद उनको एक केव मिली। बहुत पुरानी केव, अंधेरी और अजीब सी ठंडी। सब अंदर चले गए। बारिश बाहर टूट कर गिर रही थी। देव ने फ्लैश लाइट घुमाई और फिर वो फ्रीज हो गया। गाइस, सब उसकी तरफ देखा। केव के कोने में तीन पुराने बैकपैक्स पड़े थे, धूल से भरे हुए, और उसके पास एक रस्टेड टॉर्च और एक डायरी। सबके दिल की धड़कन बढ़ गई। रिया ने डायरी उठाई। कवर पे नाम लिखा था अमन वर्मा, वही मिसिंग ग्रुप का मेंबर। रिया ने डायरी खोली। पेज गीले और पुराने थे, लेकिन कुछ लिखा हुआ भी था जिसे पढ़ा जा सकता था। उसने जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। डे वन, हम शॉर्टकट में आ गए हैं। गाइड टेंशन में है, पर सब ठीक लग रहा है। डे टू, GPS काम नहीं कर रहा, हम लॉस्ट हो गए, सब नर्वस है। डे थ्री, कल रात किसी ने फुटस्टेप सुनी, हमने सोचा जानवर होगा, लेकिन फुटप्रिंट्स इंसान के थे। सब एक दूसरे को देखने लगे। सेम चीज उनके साथ भी हो रही थी। रिया ने अगला पेज खोला। आज रोहित गायब हो गया है। सुबह उसका टेंट खाली मिला। हमने हर जगह ढूंढा, कुछ नहीं मिला। सना का गला सूख गया। मेरा डायरी पकड़ने वाले हाथ को देख रही थी, उसमें हल्का सा कांप था। रिया ने अगला पेज खोला। हम सबको लगता है कि कोई हमें देख रहा है। रात को पेड़ों के बीच एक आदमी दिखता है, जब पास जाते हैं तो गायब हो जाता है। देव ने तुरंत कबीर की तरफ देखा। पेड़ के पीछे वाला आदमी? कबीर ने धीरे से हमें सर हिलाया। डायरी के लास्ट पेज सबसे अजीब था। उस पर लिखा था, अगर किसी को ये डायरी मिले, शॉर्टकट मत लेना, और अगर पेड़ों के बीच वो आदमी दिखे तो उसके पीछे मत जाना, वो तुम्हें बाहर नहीं जाने देगा और अंदर ले जाएगा। उसके बाद सेंटेंस अधूरा था, पेज पर खून जैसा लगा था, और वो डायरी वहीं खत्म हो गई। उसी वक्त केव के बाहर से आवाज आई, क्रंच क्रंच क्रंच, जैसे कोई गीली मिट्टी पर चल रहा हो। सब फ्रीज हो गए। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन ये आवाज अलग थी, बहुत पास, बहुत ही पास। क्रंच क्रंच क्रंच, जैसे कोई केव के एंट्रेंस के बाहर खड़ा हो और उनका इंतजार कर रहा हो। रिया ने फ्लैशलाइट एंट्रेंस की तरफ घुमाई और जो उसने देखा, उसे उसके हाथ से टॉर्च लगभग गिर गई। एंट्रेंस के बाहर बारिश में एक आदमी खड़ा था, बिल्कुल मोशनलेस। उसका चेहरा डार्कनेस में छुपा हुआ था और वो सीधा केव के अंदर देख रहा था उसकी तरफ। और फिर बिजली चमकी। एक सेकेंड के लिए उसका चेहरा दिख गया और बापूराव की चीख निकल गई, क्या नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। क्योंकि जिस चेहरे को उसने देखा वो 2019 में गायब हुए ट्रेकर में से एक था। एक ऐसा आदमी जिसे मरे हुए 7 साल हो चुके थे। केव के अंदर मौत जैसी खामोशी थी। सबकी नजरें एंट्रेंस पर टिकी हुई थी। बारिश जोर जोर से हो रही थी, हवा चीख रही थी, और एंट्रेंस के बाहर वही आदमी खड़ा था, बिल्कुल बिना हिले, बिल्कुल बिना कुछ बोले, जैसे वो उन्हें देख रहा हो।
बापूराव के हाथ कांप रहे थे, उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। कबीर, वो रोहित है, 2019 वाला रोहित। मीरा का गला सूख गया। मतलब वो मर चुका है। उसी वक्त बिजली फिर चमकी, सब एंट्रेंस की तरफ देखने लगे, लेकिन वहां कोई नहीं था, बस बारिश और अंधेरा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सुबह होने का इंतजार करना इम्पॉसिबल था। सबने डिसाइड किया कि बारिश कम होते ही निकलना होगा, लेकिन नेचर के अपने कुछ और प्लान्स थे। लगभग रात के 3 बजे जमीन हिलने लगी, पहले हल्का वाइब्रेशन, फिर जोर से क्रैक, केव के बाहर से पत्थर गिरने की आवाज आई, लैंडस्लाइड, सना चिल्लाई। सब अपने सामान उठाकर भागने लगे। केव के बाहर आते ही उन्होंने देखा पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूट रहा था, पत्थर पेड़ों को कुचल रहे थे, मिट्टी का समंदर नीचे आ रहा था। सब जान बचाकर दौड़े और उस भागदौड़ में ग्रुप अलग हो गए। टीम 1 कबीर, रिया, सना। टीम 2 आरुष, देव, मीरा, यश और बाबूराव। सब जब बारिश रुकी, दोनों टीमें एक दूसरे से पूरी तरह अलग हो चुकी थी। कबीर की टीम घंटों तक भटकती रही, तभी उन्हें एक पुरानी वॉच टावर जैसी स्ट्रक्चर दिखी, शायद ब्रिटिश टाइम की थी, हाफ ब्रोकन। अंदर कुछ पुराने रिकॉर्ड्स पड़े थे। रिया ने डॉक्यूमेंट्स खोलना शुरू किए और फिर एक न्यूज़पेपर क्लिपिंग मिली, डेट सितंबर 2019, हेडलाइंस, मिसिंग ट्रेकिंग ग्रुप, मिस्ट्री डिपिंट्स। नीचे एक फोटो थी, 7 ट्रेकर्स और उनके बीच रोहित, वही आदमी। लेकिन आर्टिकल में एक शॉकिंग बात लिखी थी, रोहित कभी ऑफिशियली डेट डिक्लेयर नहीं हुआ था, उसकी बॉडी कभी मिली ही नहीं थी। तभी रिया को टावर के वॉल पर कुछ लिखा हुआ नजर आया, ओल्ड चारकोल राइटिंग, शायद किसी ने सालों पहले लिखा था। उस पर लिखा था, जंगल से बाहर का रास्ता वो दिखाता है, लेकिन सिर्फ उनको जो एक साथ रहते हैं। कबीर ने धीरे से कहा, या तो रोहित हमें बचाने की कोशिश कर रहा है या फिर हमें ट्रैप कर रहा है। उधर आरुष की टीम और भी ज्यादा बुरी सिचुएशन में थी, खाना खत्म हो चुका था, पानी भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था और यश मेंटली ब्रोकन था। शाम तक उन्हें फिर वही आदमी दिखा, पेड़ों के पीछे, वही कपड़े, वही चेहरा, वही साइलेंस। इस बार यश उसके पीछे भागने लगा। रुको, देव चिल्लाया, लेकिन यश नहीं रुका। अचानक वो आदमी जंगल के अंदर गायब हो गया और यश भी। सुबह उसके पीछे दौड़े, 5 मिनट बाद यश मिला, एक क्लिफ के बिल्कुल एज पर, बस एक कदम और सीधे मौत। यश रो रहा था, मुझे लगा वो मुझे बुला रहा है, जैसे कोई हेल्प मांग रहा हो। सबको डायरी की लास्ट लाइन याद आ गई, उसके पीछे मत जाना। 2 दिन हो चुके थे, सब थक चुके थे, होप ऑलमोस्ट खत्म हो रही थी। तभी दोनों टीम्स को एक ही जगह एक ही चीज मिली, पत्थरों का बना हुआ एक एरो, डायरेक्शन दिखाता हुआ। कबीर की टीम ने भी देखा, आरुष की टीम ने भी देखा और दोनों एरोस के सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे थे। सबने डिसाइड किया कि अब वो एरो को फॉलो करके ही जाएंगे। लगभग 4 घंटे चलने के बाद दोनों टीम्स फाइनली एक दूसरे से मिल गई। सब इमोशनल हो गए, किसी ने किसी को हग किया, किसी ने किसी के आंखों में आंसू देखे। अब सिर्फ ऑब्जेक्टिव था जंगल से निकलना। एरो फॉलो करते गए। शाम के वक्त उन्हें कुछ दिखाई दिया, दूर, बहुत दूर, एक रोड, एक्चुअल रोड, सिविलाइजेशन, लाइफ, सेफ्टी, सब बाहर आने लगे और 10 मिनट बाद वो सब जंगल से बाहर आ चुके थे। सब सेफ थे, रेस्क्यू टीम मिल गई, हॉस्पिटल चेकअप हुआ, मीडिया ने क्वेश्चंस पूछे, लेकिन किसी ने पूरी कहानी नहीं बताई। कौन मानता,

कि जंगल में उन्हें एक ऐसा आदमी देखा जो शायद सालों पहले गायब हो चुका था। 3 दिन बाद मुंबई में लाइफ नॉर्मल होने लगी। कबीर ऑफिस में था तभी उसके लैपटॉप पर एक ईमेल आई, अननोन सेंडर, सब्जेक्ट था थैंक यू। कबीर ने मेल खोला, अंदर एक फोटो थी, ग्रुप फोटो, जंगल वाली। सब 7 लोग खड़े थे स्माइल करते हुए, लेकिन कबीर का दिल रुक गया। फोटो में 8 लोग थे, 7 ट्रेकर्स और उनके पीछे रोहित, वही रोहित 2019 वाला ट्रेकर। फोटो के नीचे एक लाइन लिखी थी, इस बार सब घर पहुंच गए। कबीर का हाथ कांप गया, उसने सेंडर्स की डिटेल चेक की, ईमेल आईडी एग्जिस्ट नहीं करती थी, जैसे कभी बनी ही नहीं। उसने फोटो जूम की और उस वक्त उसने कुछ देखा, कुछ ऐसा जो उसकी रीढ़ की हड्डी ठंड कर गई। रोहित कैमरे की तरफ नहीं देख रहा था, वो सीधा कबीर की तरफ देख रहा था और उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल थी, जैसे उसका काम पूरा हो गया हो। कुछ महीने बाद बापूराव फिर से उस जंगल में गया अकेले। उसने उस जगह पर फूल रखे जहां 2019 वाले ट्रेकर्स लॉस्ट हुए थे। वापस मुड़ते वक्त उसने दूर पेड़ों के बीच एक आदमी देखा, वही ट्रेकिंग जैकेट, वही चेहरा, वही स्माइल। बापूराव की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, अब तू भी जा सकता है बेटा। हवा चलने लगी, पेड़ हिलने लगे और जब उसने दोबारा देखा वहां कोई नहीं था, सिर्फ जंगल था, एक रास्ता जो मैप्स पर आज भी नहीं मिलता। हर जंगल में बहुत भूत नहीं होते, हर जंगल में भूत नहीं होते। कभी कभी कुछ रास्ते सिर्फ अपना अधूरा सफर पूरा करने का इंतजार करते हैं। तो जैसे कि आप सभी ने सुना कि किस तरीके से एक पूरा ग्रुप गायब हो चुका था, सिर्फ एक बंदा लौटा था और ये 7 लोग उसी ट्रैक पर जा गए थे और 7ों के 7ों वापस आ गए। कभी कभी कुछ एनर्जीज हमें हमारी मुसीबत से बाहर भी निकालती है और कभी कुछ नेगेटिव एनर्जीज हमें मुसीबत में भी डाल देती है। तो ऐसे वक्त हमेशा एडवेंचर के बारे में ना सोचे, अपने दिल के बारे में सोचे, अपनी जिंदगी के बारे में सोचे, क्योंकि कभी कभी एक गलत फैसला आपकी जिंदगी खत्म कर सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगली बार मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक सुनते रहिए आचार्य 90 FM, कहानियों के गुल्लक। मस्त मस्त गाने सुनिए, मस्त मस्त रहिए। तब तक के लिए बाय।

आचार्य 90 FM के ऑडियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। स्वाद का जायका इस शो पर मैं आरजे भारतीय सीमा आप सबका स्वागत करती हूँ। मंडली कसे आहत सगळे, ऑल गुड ना? हमारे प्यारे ऑडियंस की तारीफ में पेश है कुछ लाइनें। अर्ज किया है, स्वाद के जायके की वादियों में हम आपका स्वागत करते हैं। इस महफिल में आपको न्योता देते हैं। आपकी मौजूदगी का हमें था बेसब्री से इंतजार। इस खुशी को हम दिल की गहराई से सजाते हैं। हमने आपसे वादा किया था कि मैंगो मूड वाला फूड हम फिर से बनाएंगे और इस आम वाले सीजन को खास बनाने हम फिर से हाजिर हैं। कच्चा आम मींस कैरी से बनी रेसिपीज तो हमने बना ली, उसके बाद पके हुए आम से भी कई सारी मीठी और तीखी रेसिपीज हमने आपकी खिदमत में पेश की। आज हम एक मास्टर स्ट्रोक मारने जा रहे हैं। झटपट बनने वाली मैंगो रेसिपीज तो हमने सीख ली, अब सिस्टमैटिक तरीके वाली मैंगो रेसिपी को हम बनाते हैं। 10th सेंचुरी में सेंट्रल एशिया से होते हुए एक व्यंजन भारत आया, फिर भारतीय मसालों और सब्जियों के साथ इसने अपना रूप बदला। इस रेसिपी का नाम था वेज पुलाव। हरे मटर के दाने और साबुत मींस अखे गरम मसालों को इस्तेमाल करके बनता है मटर पुलाव। गाजर, आलू, गोभी, बीन्स और शिमला मिर्च जैसी कई सब्जियों को मिलाकर बनता है वेज पुलाव। सब्जियों के साथ साथ अगर इसमें पनीर के टुकड़े भी डाले तो तैयार होता है पनीर पुलाव। और सूखा मेवा जैसे काजू, बादाम, किशमिश के साथ पनीर और फलों के टुकड़े शाही अंदाज में पकाकर तैयार होता है नवरत्न पुलाव। वैसे क्या आप जानते हैं कि पुलाव और बिरयानी में क्या फर्क है? तो जनाब सुनिए, पुलाव बनाते समय चावल और सब्जियों को एक साथ पकाया जाता है, बिरयानी बनाते समय चावल और करी को अलग अलग पकाया जाता है, फिर उनकी परत मींस लेयर लगाकर दम दिया जाता है। यह है पुलाव और बिरयानी का इम्पोर्टेंट फर्क। अब हम आज की पहली रेसिपी की ओर बढ़ते हैं। हमारी आज की फर्स्ट रेसिपी का नाम है मैंगो पुलाव। मैंगो के सीजन को बाय बाय करने से पहले हम इसे बना ही लेते हैं। मैंगो पुलाव ये एक मीठी रेसिपी है जिसमें अल्फोंसो मैंगोस को कुछ गरम मसालों के साथ बासमती चावल को यूज करके बनाया जाता है। अब हम इसकी रेसिपी को सुनते हैं। मैंगो पुलाव बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: बासमती चावल 1 कटोरी, अल्फोंसो मैंगो पल्प 1 कटोरी, बारीक कटे हुए आम के टुकड़े 1 कटोरी, शक्कर 4-5 चम्मच, नींबू का रस 1 चम्मच, केसर के धागे 15 से 20, इलायची पाउडर 2 चुटकी, देसी घी लगभग 1/2 कटोरी। फिर हमें चाहिए लौंग 4 या 5, काजू बादाम के टुकड़े और किशमिश 4 चम्मच, दालचीनी 2 टुकड़े। दालचीनी के टुकड़ों के बजाय आप उसका पाउडर लें तो पुलाव में थोड़ा सा तीखापन आएगा। फिर हमें चाहिए सोफ्ट पिस्ता के स्लाइस 1 चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार, यहाँ पर मैं 1 चम्मच नमक ले रही हूँ। और हमें चाहिए ढेर सारा प्यार, क्योंकि आपके मन की भावनाएं इस रेसिपी में उतरने वाली हैं। इस रेसिपी को सुनने से पहले हम बासमती चावल को अच्छे से धो लेते हैं। चावल को धोकर लगभग 1/2 घंटे तक हम इसे पानी में सोक करते हैं। ऐसा करने से चावल के दाने पानी सोक कर फूल जाते हैं, जिससे वो पकते समय टूटेंगे नहीं। चावल के दानों की लंबाई भी बढ़ती है और उन्हें पकाते समय वो बिल्कुल खिले खिले और सॉफ्ट बन जाते हैं। लगभग 1 इंच ऊपर तक ताजे पानी में हमें बासमती चावल को सोक करना है। चलिए अब हम मैंगो पुलाव बनाने की रेसिपी को सुनते हैं। सबसे पहले मोटे बेस वाले एक बर्तन में देसी घी को गर्म कीजिए। अब हमें इसमें तड़का लगाना है। घी गर्म होने के बाद उसमें लौंग डालिए, फिर दालचीनी के टुकड़े या पाउडर को भी डालिए। जैसे ही ये पक जाए मींस अप्रोक्सीमेटली 10-12 सेकेंड्स के बाद इसमें 2 कटोरी पानी डालिए। थोड़े समय बाद उस पानी में उबाल आएगा, फिर उस उबलते पानी में थोड़ा सा नमक डालिए। नमक डालने के बाद उसमें शक्कर भी डालिए।
साथ ही कटे हुए आम के टुकड़े भी उसमें डालिए। इस स्वाद को एनहांस करने हम डालेंगे ताजे नींबू का रस। अब इस मिश्रण में ऐड कीजिए सोक्ड बासमती चावल। फिर क्या करना है? अरे भाई, फिर धीमी आंच पर इन चावलों को पकने दीजिए। ये चावल जब पक रहे होंगे तब इसकी खुशबू आपको खुश कर देगी। लगभग 15-20 मिनटों के बाद ये चावल पूरी तरह से पक जाएंगे। उसके बाद वो पके हुए चावल एक प्लेट में निकालिए। अब हमें इन चावलों को ठंडा करना है। जब तक ये चावल ठंडे हो रहे हैं तब तक हमें गाना सुनते हैं। आप कहीं भी मत जाइए, मैं यूं गई और यूं आई।

ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब हमारे बासमती चावल हो गए हैं ठंडे और हम बढ़ रहे हैं अगली स्टेप की तरफ। तो भाई आगे क्या करना है? आगे हमें ये करना है कि एक कढ़ाई में पाव कटोरी घी लेना है, फिर गैस को ऑन करके हमें घी को गर्म करना है। अब इस गरम घी में हम डालेंगे काजू, बादाम और किशमिश। इन ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से फ्राई करके साइड में रख दीजिए। आप गैस को बंद मत कीजिए। उस बचे हुए घी में फ्रेश मैंगो पल्प डालिए। धीमी आंच पर ये मैंगो पल्प 2-3 मिनटों तक अच्छे से पकाइए। ध्यान रहे ये जले नहीं। फिर उस पके हुए आमरस में डालिए पकाकर ठंडे किए हुए चावल। इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। फिर इसमें डालिए थोड़ी सी शक्कर और साथ ही आम के कुछ टुकड़े। इसे भी आप अच्छे से मिक्स कीजिए। आखिर में केसर, इलायची पाउडर और फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स को भी इसमें ऐड कीजिए। बाद में इस कढ़ाई पर एक ढक्कन रख दीजिए। 1-2 मिनट के लिए मींस एक भाप आने तक इसे पकने दीजिए। अब हमें इसे डेकोरेट करना है। एक सर्विंग प्लेट में तैयार मैंगो पुलाव को निकालिए। उस गर्मा गर्म पुलाव की खुशबू को अपने मन में भी भर लीजिए। फिर सोक्ड और स्लाइस्ड पिस्ता के टुकड़ों से तैयार मैंगो पुलाव को डेकोरेट कीजिए। इस मैंगो पुलाव के साथ क्या खा सकते हैं? तो भाई इसके साथ आप खा सकते हैं आम का तीखा अचार या गोरी गोरी और क्रिस्पी कुरडई। और इसकी रंगत बढ़ाने के लिए आप एक ग्लास मट्ठा मींस मसाला छाछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर हम ले रहे हैं एक क्विक ब्रेक। ब्रेक के उस पार आपसे और भी बातें होंगी। तब तक आप एक गाना सुनिए।

ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। हमारा मैंगो पुलाव हो गया है तैयार और इसे टेस्ट करने अगर आप हो रहे हैं बेकरार तो फिर इसे तुरंत बनाइए। अब ये मैंगो पुलाव बन जाए तब इसे अपनों के साथ मिल बांट कर खाएं। एक और खास बात, मैंगो पुलाव को सोफिस्टिकेटेड तरीका काटा चम्मच से मत खाइए, इसे अपने हाथों से ही बिंदास खाइए। अपनी उंगलियों से मैंगो पुलाव का टेम्परेचर और टेक्सचर फील कीजिए, फिर एक नजाकत से उसका निवाला उठाइए। खाने से पहले मैंगो पुलाव का अरोमा मींस जायका फील कीजिए, बाद में एकदम तसल्ली के साथ आराम से उसे एंजॉय कीजिए। इतना लजीज खाना खाने के बाद उस खाना बनाने वाले का शुक्रिया भी अदा कीजिए। इस मैंगो पुलाव की खिदमत में पेश है एक कविता। कविता का नाम है जश्ने आम। फिलहाल चल रहा है एक मौसम, नाम है जिसका आम। स्वाद का जायका इस शो पर जश्न मनाएंगे खास। कभी बनाया मैंगो पराठा तो कभी मैंगो सालसा, इस आम ने हमारे किचन में सेलिब्रेट किया जलसा। आम तेरे कितने रूप, मैं वारी जाऊं तुझ पे, इतनी शानदार रेसिपीज बनाकर मैं तो इतराई खुद पे। नाम तो है इसका मैंगो या आम, स्वाद है एकदम अनोखा, तभी तो दिल में जगह इसकी खास। इस आम की रेसिपी ने मेरे दिल को इतना लुभाया, साइड में रख दी डाइटिंग और जी भर के आम खाया। मेरे भारत देश से जुड़ी ये आम बातें, दोस्ती होती पक्की खाना खाते खाते। आम का पुलाव बनाकर मनाया जश्न।

आम आचार्य 90 FM के ऑडियंस हमारे लिए एकदम खास। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब हम बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट रेसिपी की ओर। आम के अलावा एक और चीज है जिसे गर्मियों के सीजन में जी भर के खाया जाता है। बॉटनिकली ये एक फ्रूट है लेकिन ये मिलता है सब्जी वाले के पास। सैंडविच, कचुम्बर और सलाद बनाते समय इसे यूज करते हैं। इसमें 95% से ज्यादा मात्रा में पानी होता है। अपने हाइड्रेटिंग गुणों और कुरकुरेपन के लिए ये फेमस है। इसमें मौजूद विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से स्किन में चमक आती है, इसलिए अपनी ब्यूटी रेजिम में इसे जरूर शामिल कीजिए। जी हाँ, सही गेस किया आपने। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ खीरा मींस ककड़ी की। तो भाई आज हम बनाने वाले हैं खीरे की स्मूदी मींस क्यूकम्बर स्मूदी। जब ककड़ी को किसी खास अंदाज में स्टाइलिश तरीके से पेश करना हो तब आप खीरे की स्मूदी मींस क्यूकम्बर स्मूदी को जरूर बनाइए। ये एक एक्सट्रीमली रिफ्रेशिंग और हेल्दी टाइप का ड्रिंक है। इसे आप लगभग 5 मिनट में झटपट बना सकते हैं। तो चलिए अब हम क्यूकम्बर स्मूदी मतलब खीरा स्मूदी को बनाने की क्विक रेसिपी को सुनते हैं। क्यूकम्बर स्मूदी बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: बड़ा सा एक खीरा मतलब काकड़ी, ताजा दही 1.5 कप, ताजा पुदीना 8 से 10 पत्ते, नींबू का रस 1 छोटा चम्मच, चीनी मींस शक्कर 2 चम्मच, काला नमक स्वाद के अनुसार, यहाँ पर मैं चुटकी भर काला नमक ले रही हूँ। अब हम क्यूकम्बर स्मूदी बनाने की रेसिपी को सुनते हैं। सबसे पहले क्यूकम्बर मींस ककड़ी को अच्छे से धो लीजिए, फिर पीलर से उसका छिलका हटाइए। छिलका हटाने के बाद उसके छोटे टुकड़े आप बनाइए। अब सुनिए एक इम्पोर्टेंट बात, उस ककड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा आप पहले खाइए। अगर उसका टेस्ट कड़वा है तो वो ककड़ी आप फेंक दें, उसे बिल्कुल यूज नहीं करना है। कड़वी ककड़ी को बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। अगर ककड़ी कड़वी नहीं है तो फिर हम उसे इस्तेमाल करेंगे। फिर उस ककड़ी को बारीक टुकड़ों में काट। अब हमें मिक्सर में स्मूदी को बनाना है। इसके लिए मिक्सर के बड़े जार में खीरा मींस ककड़ी के टुकड़े और पुदीने के पत्ते डालिए। इसे 1 मिनट के लिए मिक्सर में घुमाइए। ऐसा करने से इसका फाइन पेस्ट बनेगा। अब इसमें दही, शक्कर और नींबू का रस भी डालिए, साथ ही चुटकी भर काला नमक भी ऐड कीजिए। अब मिक्सर के जार का ढक्कन लगाकर इसे पीस लीजिए। लगभग 1 या 2 मिनटों में ये मिश्रण एकदम स्मूथ हो जाएगा। अब इसे पेश करने का टाइम हो गया है। सबसे पहले एक छोटी प्लेट में थोड़ा सा काला नमक और थोड़ी शक्कर लगभग आधा या 1 चम्मच नमक और शक्कर मिक्स करके रखिए। फिर कांच का एक लंबा ग्लास लीजिए, उस कांच के ग्लास के किनारों को थोड़ा सा पानी लगाइए। फिर उस ग्लास को उल्टा करके नमक और शक्कर की प्लेट पर रखिए। ऐसा करने से क्या होगा भाई? ऐसा करने से होगा ये कि जब आप क्यूकम्बर स्मूदी को सर्व करेंगे तब उसके किनारों पर क्रिस्टल्स जैसी चमक दिखेगी और क्यूकम्बर स्मूदी का प्रेजेंटेशन एकदम प्रोफेशनल लुक वाला दिखेगा। है ना इंटरेस्टिंग बात? फिर उस ग्लास में एकदम आराम से क्यूकम्बर स्मूदी को डालिए, उसके ऊपर पुदीना के 2 पत्ते भी रखिए। उसके बाद अपने मोबाइल कैमरा में क्यूकम्बर स्मूदी की छवि को कीजिए बंद, क्योंकि उसे टेस्ट करने के लिए लम्हे बचे हैं चंद। मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। इस क्यूकम्बर स्मूदी की तारीफ में पेश है एक कविता। कविता का नाम है मखमली स्मूदी। गर्मी को भगाने के लिए बनाई क्यूकम्बर स्मूदी। इसका टेक्सचर ऐसा लगता जैसे खट्टा मीठा मखमली। ककड़ी में जब मिला ताजा ताजा दही तब जाकर बना स्मूदी का टेक्सचर सही।
इसे पौष्टिक बनाने डालो काला नमक, काला नमक खाकर सेहत जाएगी चमक। इसमें जब डालोगे नींबू की कुछ बूंदे, तब एंजॉय करोगी स्मूदी, अपने नैनों को मूंदे। क्यूकम्बर की ये स्मूदी है हिंदुस्तानी और वेस्टर्न फ्यूजन, झटपट बनाओ इसे और दूर करो कंफ्यूजन। जी भर कर खाओ आप देसी खाना, उसके साथ सुनिए आप हमारा अगला गाना।

वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। हमारी खाद्य संस्कृति में तरह तरह के व्यंजन हैं। हमें तो बस बहाने ढूंढने हैं उनसे दोबारा मिलने के। अब आप क्यूकम्बर स्मूदी की ही बात ले लो। हमारी भारतीय खाद्य संस्कृति में थाली के लेफ्ट साइड मतलब बाई ओर नमक, चटनी, कचुम्बर और पापड़ जैसे व्यंजन थोड़ी थोड़ी मात्रा में परोसे जाते हैं, जिससे हमारे भोजन का स्वाद और ज्यादा निखरता है। सीजन के मुताबिक चटनी और कचुम्बर के टाइप्स को चेंज करना हमारी सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है। पर्टिकुलर सीजन में जो भी फल और सब्जियां उपलब्ध होती हैं, उस हिसाब से हमारा भोजन तैयार होना ही चाहिए। फिलहाल गर्मी वाला जो सीजन चल रहा है उसमें हमने इंटरेस्टिंग रेसिपीज बना ली है। अगर आपके पास भी ऐसी ही सीजन स्पेशल इंटरेस्टिंग रेसिपीज हैं, तो हमें जरूर लिखिए। हमारे देश की खाद्य संस्कृति को निभाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। अब हम सुनते हैं एक क्विक रीकैप। आज शुरुआत में हमने बनाया मैंगो पुलाव। भिगोए हुए बासमती चावल, हापुस आम और कुछ चुनिंदा मसालों को यूज करके हमने मैंगो पुलाव इस यमी रेसिपी को एकदम शिद्दत से बनाया है कि नहीं। मैंगो सीजन को हर तरह से सेलिब्रेट करने की हमारी छोटी सी कोशिश एकदम कामयाब रही। उसके बाद हमने एक नॉन फायर रेसिपी बनाई। क्यूकम्बर स्मूदी नाम की इस मखमली रेसिपी ने गर्मी को थोड़ा कम करने की सफल कोशिश की। क्रिस्टल डेकोरेशन वाली और दही के साथ खीरा मींस ककड़ी का कॉम्बिनेशन तो गर्मी को मात देने एकदम सुपर कूल कॉम्बिनेशन साबित हुआ। अजी जनाब, बिना तले भी हम बहुत सी चटपटी और इंटरेस्टिंग रेसिपीज बना ही सकते हैं। खाने को डीप फ्राई करने की बजाय थोड़ा सा तेल लगाकर हम नॉनस्टिक पैन पर अपनी रेसिपीज को ट्राई कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें, फॉर एग्जांपल पकोड़े जो बारिश के मौसम में सिग्नेचर डिश है, उसे कैसे बनाएं? तो जनाब जरा सुनिए। आप अप्पम पात्र को जानते हैं? हाँ, वही जिसमें अप्पम बनाते हैं, जिसमें इडली पात्र के जैसे कई सारे खांचे होते हैं। हाँ, मैं उसी की बात कर रही हूँ। उसके हर एक खांचे में लगभग आधा चम्मच तेल फैलाकर हम पकोड़े भी तलेंगे और बटाटा वड़ा भी तलेंगे। कब? कब मतलब झमाझम बारिश को शुरू तो होने दीजिए, मौसम को करवट तो लेने दीजिए, सुहाना सा सावन बरसने तो दीजिए। फिर हम हाले दिल को बयान भी करेंगे और साथ ही लजीज खाने का जश्न भी मनाएंगे। लेकिन उसके पहले आप कीजिए एक काम। आचार्य 90 FM इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें आपकी खिदमत करने का एक मौका दीजिए। वैसे बारिश के सुहाने मौसम में वो कौन सी चीज है जिसे खाना आपको बेहद पसंद है? आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो और मैं हूँ आपकी दोस्त आजी भारतीय सीमा। अर्ज किया है, मेरी जमीन पर कितने ही आसमान रहे, आचार्य 90 FM के ऑडियंस का हमेशा ही साथ रहे। फिर लेकर आऊंगी मैं कुछ रेसिपीज सुहानी, हर रेसिपी के साथ एक छोटी सी कहानी। मिलना है हमें हर सोमवार और शुक्रवार, जायके के सफर में दिल हुआ बेकरार, सजती है थाली और खाने में मसाले, आऊंगी मैं वापस अपना वादा निभाने। हमारी भारतीय संस्कृति में जायके का भंडार। ऑडियंस जी, जल्द ही मिलेंगे हम और लाएंगे स्वाद के जायके का दरबार। आरजे भारतीय सीमा की ओर से आप सबको सी यू सून वाला मेरा बाय बाय।

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आज शब्बीर लेके आया हूँ कहानियों की गुल्लक। आज हम सुनने वाले एक ऐसी कहानी जिसमें तीन अलग अलग किरदार है और ये कहानी है प्री इंडिपेंडेंस एरा की, यानी आज़ादी के पहले की, जिसे कि हम सभी लोग जानते हैं। दोस्तों, आज़ादी हमें आसानी से नहीं मिली है। हमने आज़ादी के लिए कितना बलिदान दिया है, हमारे पूर्वजों ने कितने शहीद हुए हैं, कितनों ने जेल काटी है, कितनों ने ना जाने कितनी वेदनाएं सही हैं। तो उन्हीं कहानियों में से, उन्हीं गाथाओं में से एक कहानी मैं आज आपके सामने लेके आया हूं। तीन रंग एक खून, एक आजादी की दास्तान। पूरा हिंदुस्तान अंग्रेजों के जुल्म के नीचे दबा हुआ था। गलियों में खौफ था, खेतों में भूख थी और जवानों के दिल में एक ही आग जल रही थी, आजादी। हर शहर में पुलिस की सीटियां गूंजती थी और हर चौक पर गोरा सिपाही खड़ा होता था। किसी के हाथ में लाठी थी, किसी के कांधे पर बंदूक। लेकिन उस अंधेरे के दौर में भी कुछ लोग दिया बनके जल रहे थे और उन्हीं दियों में तीन नाम सबसे अलग चमकते थे, आनंद, अशफाक और अमित। तीन दोस्त, तीन अलग कहानियां, तीन अलग मजहब और घर आने, लेकिन एक ही सपना, हिंदुस्तान आजाद होना चाहिए। और इसी सपने के लिए उन्होंने अपनी जवानी, अपनी मोहब्बत, अपना घर और आखिर में अपनी जान तक त्याग दी। ये कहानी है दोस्तों की, मोहब्बत की, बलिदान की और उस मिट्टी की जिसके लिए लोग हंसते हंसते शहीद हो गए। बनारस की सुबह हमेशा से अलग होती थी। गंगा घाट पे मंदिरों की घंटियां बजती थी, कहीं अजान की आवाज थी, कहीं से वंदे मातरम धीरे धीरे हवा में ठहरता था। 1942 का साल था। सुबह के 5 बजे

आनंद घाट की सीढ़ियों पर बैठा था। हाथ में एक पुरानी डायरी थी और आंखों में सपने। सफेद कुर्ता, पतला सा शरीर और चेहरे पर अजीब सा सुकून। तभी पीछे से आवाज आई, अरे कवि बाबू, देश आजाद करोगे या घाट पे शायरियां ही लिखते रहोगे? आनंद मुस्कुरा दिया, अशफाक तू सुबह सुबह बकवास की फैक्ट्री खोल देता है। अशफाक हंस पड़ा। अशफाक अली, तेज आंखें, गहरी आवाज, मजबूत कंधे और दिल बच्चे जैसा। उसके कंधे पर एक झोला था जिसमें कुछ कागज और छुपा हुआ क्रांतिकारी पैम्पलेट था। दोनों बात ही कर रहे थे कि पीछे से एक आवाज और आई, तुम दोनों फिर लेट हो। यह अमित था, लंबा कद, माता हमेशा टेंशन से भरा हुआ क्योंकि घर की जिम्मेदारियां उसके कांधों पर जो थी। अमित के पिता बीमार ही रहते थे, घर में माँ और दो छोटे भाई थे, इसलिए अमित बचपन से ही वक्त से पहले बड़ा हो गया था। अशफाक ने उसका कांधा पकड़ा, अरे नेताजी आज का प्लान बताओ। अमित ने धीरे से कहा, कल रात पुलिस ने दो लड़कों को पकड़ लिया है। अंग्रेजों को शक है कि यहाँ क्रांतिकारी पैम्पलेट बांटे जा रहे हैं। आनंद का चेहरा सीरियस हो गया। नाम रघु और करीम, तीनों चुप हो गए क्योंकि बनारस में अब सिर्फ दोस्ती या मोहब्बत नहीं चल रही थी, अब हर दिन मौत पास खड़ी रहती थी। हेमा, उसका नाम सुनते ही आनंद की सांसें बढ़ जाती थी। हेमा बनारस की एक स्कूल मास्टर की बेटी थी, बहुत पढ़ी लिखी, बहुत समझदार। उसकी आंखों में अजीब सी हिम्मत थी। वो लड़कियों को पढ़ाती थी और चुपचाप क्रांतिकारियों के लिए संदेश भी पहुंचाती थी। आनंद पहली बार उसे लाइब्रेरी में मिला था। वो हरिश्चंद्र की किताब ढूंढ रही थी। आनंद ने किताब बढ़ाते हुए कहा था, ये लो। हेमा ने किताब ली और पूछा, आपने पढ़ी है? आनंद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, 3 बार। हेमा ने पूछा, अच्छी लगी? किताब से ज्यादा उससे पढ़ने वाली अच्छी लगती है, आनंद ने जवाब दिया। और उस दिन हेमा पहली बार शर्माई थी और तब से आनंद हर रोज लाइब्रेरी में जाने लगा। एक शाम हेमा घाट पर आनंद से मिली, हमें मिलना कम कर देना चाहिए, हेमा ने कहा। आनंद का दिल धक से रह गया। क्यों? पुलिस नजर रख रही है, डर लगता है। हेमा ने उसकी आंखों में देखा, अपने लिए नहीं डर लगता पर तुम्हारे लिए जरूर लगता है, आनंद धीरे से बोला। अगर आजादी के रास्ते में मोहब्बत आ गई तो? हेमा मुस्कुराई, तो मोहब्बत भी कुर्बान कर देंगे और क्या। उस रात आनंद ने डायरी में लिखा, कुछ लोग जिंदगी में प्यार बन के आते हैं और कुछ लोग वतन बन जाते हैं। अशफाक जब 9 साल का था तब उसके अब्बा की मौत हो चुकी थी। तब से उसकी दुनिया सिर्फ उसकी अम्मी थी। उसकी अम्मी सिलाई करती थी, दिन भर कपड़े सिलती, तब जाके घर चलता। अशफाक रात को अक्सर उठकर देखता उसकी अम्मी धीमी रोशनी में आंखों पर कपड़ा रखकर सुई में धागा डाल रही होती। एक दिन अशफाक ने कहा, अम्मी मैं पढ़ाई छोड़ देता हूं। उसकी अम्मी गुस्से में बोली, एक थप्पड़ दूंगी, तुम पढ़ोगे, बहुत पढ़ोगे, लेकिन पैसे। अशफाक ने कहा, तुम्हारे अब्बा का सपना था मेरा बेटा अफसर बने, अशफाक की अम्मी ने जवाब दिया। अशफाक चुप हो गया, लेकिन वक्त बदलता गया और अफसर बनने का सपना क्रांतिकारी बनने में बदल गया। एक रात अशफाक देर से घर आया, कपड़ों पर खून था। उसकी अम्मी घबरा गई, ये अल्लाह क्या हुआ? अशफाक ने झूठ बोला, कुछ नहीं अम्मी, गिर गया था, लेकिन माँ सब समझ जाती है। उसने धीरे से पूछा, अंग्रेजों से लड़ रहे हो ना? अशफाक चुप रहा। उसकी अम्मी की आंखें भर गई। एक बार तुम्हारे अब्बा को खोया है अशफाक, तुम्हें नहीं खोना चाहती। अशफाक ने मां का हाथ पकड़ा, अम्मी अगर हम नहीं लड़ेंगे तो ये जुल्म कब खत्म होगा, हम कैसे चैन से जी पाएंगे, हम कैसे खुले आसमान में सांसें ले पाएंगे।
हम कैसे अपनी जरूरतों का सामान आसानी से ले पाएंगे, हम कैसे आसानी से घूम सकेंगे, कहीं आ जा सकेंगे। अशफाक जब ये कह रहा था तो उसकी अम्मी रो पड़ी और रोते रोते कहा, तुम बिल्कुल अपने अब्बा जैसे हो। अमित की दुनिया अलग थी, उसके घर में हर वक्त परेशानी रहती थी। माँ राशन का हिसाब करती, छोटे भाई फीस के लिए रोते, पिता खांसी में खून थूकते। एक दिन माँ ने कहा, बेटा कोई नौकरी देख ले। अमित चुप रहा। उसके पास एक तरफ घर था और दूसरी तरफ देश। उस रात आनंद ने पूछा, तू टेंशन में लग रहा है। अमित ने बस एक बात कही, हर आदमी को आजादी चाहिए, लेकिन घर वाले रोटी भी मांगते हैं। अशफाक ने उसका कांधा पकड़ा, तू अकेला नहीं है अमित। अमित की आंखें भर गई, क्योंकि दोस्ती कभी कभी घर से भी ज्यादा सहारा बन जाती है।

सो स्वागत है दोस्तों आपका ब्रेक के बाद। हम सुन रहे थे तीन दोस्तों की कहानी, अमित, आनंद और अशफाक। कैसे तीनों के घर पे अलग अलग जिम्मेदारियां थी। आनंद अपनी मोहब्बत में गुम था, लेकिन साथ ही साथ उसके दिल में, उसके जहन में, उसके दिमाग में देश चल रहा था। वही दूसरी ओर अशफाक है जिसके फादर नहीं है, और उसके लिए अगर सब कुछ जो है तो वो उसकी माँ है। तीसरी तरफ अमित है जिसके घर पे उसके पिताजी अक्सर बीमार रहते हैं, भाइयों के लिए स्कूल देखना है और घर में ज़रूरतों का सामान भी ज़्यादा तरीके से नहीं होता। तो तीन दोस्त तीन अलग अलग कहानियाँ जी रहे थे, तीन अलग अलग जिंदगी जी रहे थे, पर इन तीन दोस्तों में एक चीज़ कॉमन थी, वो एक सपना, वो एक आज़ादी का सपना। तो चलिए सुनते हैं आज़ादी के लिए अब इन तीन दोस्तों ने क्या किया। अगस्त 1942, महात्मा गांधी ने आवाज उठाई, अंग्रेजों भारत छोड़ो। पूरा देश जल उठा। रेलवे स्टेशन पर नारे लगने लगे, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। बनारस भी उबल रहा था। तीनों दोस्त अब खुले आंदोलन में शामिल हो गए, पैम्फलेट बांटने लगे, गुप्त मीटिंग्स करने लगे। पुलिस की मूवमेंट देखना हर दिन खतरा बढ़ रहा था। एक रात अमित ने कहा, कल ट्रेजरी ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट है। अशफाक हंस पड़ा, मतलब कल लाठी भी पड़ेगी। आनंद बोला, पड़ेगी तो साथ में पड़ेगी। तीनों हंस दिए, उन्हें क्या पता था ये हंसी धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रही है। अगले दिन बनारस की सड़कें भर चुकी थी, हजारों लोग, महिलाएं, बच्चे, स्टूडेंट्स, सबके हाथ में तिरंगा। आनंद जोर जोर से चिल्ला रहा था, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तभी गोरा ऑफिसर आया और उनपे चिल्लाया, लेकिन भीड़ नहीं हटी। और अगले ही पल लाठी चार्ज, चीखे गूंज उठी, लोग चिल्लाने लगे, लोग भागने लगे। एक सिपाही ने एक बूढ़े आदमी को मारा, अशफाक का खून खोल उठा। उसने सिपाही को धक्का दे दिया। अमित ने आनंद को खींचकर साइड किया, लेकिन तभी एक लाठी आनंद के सिर पर लगी, खून बहने लगा। हेमा दूर से सब देख रही थी। वो भागकर आनंद तक पहुंची। आनंद, आनंद बेहोश हो चुका था। उस रात हेमा ने आनंद के सर पर पट्टी बांधते हुए पूछा, तुम पागल हो? आनंद धीरे से हंस पड़ा, हां, मर जाते तो? हेमा ने सवाल किया। आनंद ने उसका हाथ पकड़ा, तो याद रखना किसी ने तुमसे बहुत मोहब्बत की थी। और ये सुनते ही हेमा रो पड़ी। हर आंदोलन में एक गद्दार होता था, बनारस में भी था। किसी ने पुलिस को क्रांतिकारियों के नाम बता दिए, एक एक करके लोग उठाए जाने लगे। एक रात अमित भागते हुए आया, पुलिस को हमारे अड्डे का पता चल गया है, तीनों तुरंत वहां से निकलो। लेकिन तभी गोलियों की आवाज गूंजी, पुलिस पहुंच चुकी थी। सब भागने लगे, अशफाक पीछे रह गया। एक सिपाही ने उस पर बंदूक तानी, तभी आनंद उसके सामने आ गया, भागो अशफाक, गोली चली। आनंद बच गया, लेकिन उसके कंधे को छू गई गोली। तीनों मुश्किल से बच निकले। उस रात पहली बार तीनों को महसूस हुआ, मौत अब बहुत पास आ चुकी है। हेमा के पिता को आनंद और उसके क्रांतिकारी होने का पता चल गया था। उन्होंने गुस्से में कहा, तुम उस लड़के से नहीं मिलोगी। हेमा ने पूछा, क्यों? क्योंकि वो जिंदा नहीं बचेगा हेमा। लेकिन हेमा ने उस वक्त जवाब दिया, जो देश के लिए जीता है उससे प्यार करना गुनाह नहीं है पिताजी। उसके पिता ने हेमा को थप्पड़ जड़ दिया, लेकिन हेमा चुप नहीं रही। वो उस रात आनंद से दोबारा मिली और उसने कहा, आनंद, शायद घर वाले मेरी शादी कहीं और कर दें। आनंद कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर मैं लौटकर ना आया तो?
हेमा की सांसें रुक गई। ऐसी बात मत करो आनंद, आनंद ने धीरे से कहा। क्रांति में लोग कहानियां नहीं, लाशें बनकर लौटते हैं। हेमा ने उसकी होठों पर उंगली रख दी। तुम लौटोगे, लेकिन दोनों जानते थे शायद ये झूठ है। एक रेड में अमित पकड़ा गया, पुलिस उसके घसीटकर जेल ले गई। उसके घर में मातम सा छा गया। मां पुलिस स्टेशन के बाहर रोती रही, मेरा बेटा निर्दोष है, मेरा बेटा निर्दोष है। लेकिन अंग्रेजों को इंसानियत से मतलब नहीं था। जेल में अमित को पीटा गया, नाम बताओ, किसके कहने पर काम करते हो। लेकिन अमित चुप रहा। एक गोरा ऑफिसर ने उसके मुंह पर पानी फेंका, तुम लोग कभी नहीं जीतोगे। अमित खून थूकते हुए हंस पड़ा, फिर इतना डरते क्यों हो हमसे। ऑफिसर ने उसे और मारा। बाहर आनंद और अशफाक अमित को छुड़ाने का प्लान बना रहे थे, लेकिन अमित ने जेल के अंदर ही फैसला कर लिया था, वो टूटेगा नहीं चाहे जान क्यों ना चली जाए। बनारस में क्रांतिकारी एक्टिविटीज अब और ज्यादा तेज हो गई थी। आनंद अंडरग्राउंड काम कर रहा था और अशफाक बॉम्ब बनाने वाले ग्रुप के कॉन्टेक्ट में आ गया था। अमित जेल से छूटकर और ज्यादा खतरनाक बन चुका था। अब तीनों दोस्त सिर्फ दोस्त नहीं रहे थे, वो अंग्रेजों के लिए नाइटमेयर बन चुके थे। एक दिन अशफाक ने हंसकर कहा,

ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है दोस्तों आचार्य 90 FM में। आप सुन रहे थे कहानियों की गुल्लक और इसमें कहानी चल रही थी हमारी तीन दोस्तों की। जैसे कि पहले हिस्से में आपने सुना कि कैसे तीन दोस्त तीन अलग कहानियां तीन अलग जिंदगियां जी रहे थे, लेकिन तीनों का मकसद एक ही था, आजादी। और अब धीरे धीरे वो आजादी इस तरह बढ़ चुकी थी कि आनंद, अमित और अशफाक को सिवाय आजादी के दूसरा कुछ नजर नहीं आ रहा था। और वो तीनों अपने अपने तरीके से प्लान बनाने लगे थे, प्लान जिससे देश को आजादी मिल सके, युवाओं के दिल में आजादी के लिए जोश जग उठे। तो चलिए देखते हैं आगे की कहानी किस मोड़ पर जाएगी। बनारस में ब्रिटिश ट्रेन आने वाली थी। क्रांतिकारियों ने प्लान बनाया, ट्रेन को उड़ाना है। ये मिशन बहुत डेंजरस था और इस मिशन के लिए तीन नाम चुने गए थे, आनंद, अशफाक और अमित। रात को तीनों घाट पर मिले। चांद आधा था, हवा में अजीब सा सन्नाटा था। आनंद ने धीरे से पूछा, डर लग रहा है? अशफाक बोला, मरने से नहीं। अमित ने पूछा, तो? अशफाक ने आसमान देखा, बस अम्मी अकेली रह जाएगी। सब चुप हो गए। फिर आनंद बोला, हिमा। अमित ने उसका कांधा दबाया और फिर तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक ही बात थी, अगर हम गिरे तो हिंदुस्तान उठना चाहिए। रात के 2 बजे ट्रेन पटरियों पर दौड़ रही थी। तीनों ने एक्सप्लोसिव लगा दिए, लेकिन किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था, गोलियां चलने लगी, भागो, लेकिन अब देर हो चुकी थी। अशफाक ने ट्रिगर एक्टिवेट किया, एक्सप्लोशन हुआ, ट्रेन के डब्बे हवा में उड़ गए। ब्रिटिश एम्यूनिशन जल उठा, लेकिन उसी वक्त एक गोली अशफाक के सीने में लगी। अशफाक, आनंद उसकी तरफ भागा। अशफाक जमीन पर गिर चुका था। उसने मुश्किल से कहा, अम्मी से कहना बेटा डरा नहीं। उसकी सांसें रुक गई। आनंद चीख पड़ा। तभी अमित को भी गोली लगी। वो घुटनों पर गिर गया। आनंद भाग। आनंद कह रहा था नहीं। अमित हंसा, देश पहले, आनंद आनंद भाग। और उसका सर एक तरफ झुक गया। आनंद की आंखों के सामने दोनों दोस्त मर चुके थे। पुलिस पास आ रही थी। आनंद ने तिरंगा उठाया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। गोलियों की बारिश हुई और आनंद भी मिट्टी पर गिर गया। उसके हाथ में तिरंगा था, आंखों में हेमा थी और होठों पर आजादी। 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आजाद हो गया। हर गली में जश्न था, तिरंगा लहरा था, तिरंगा लहरा रहा था। लेकिन बनारस के एक कोने में तीन माएं रो रही थी। अशफाक की अम्मी ने उसकी तस्वीर छाती से लगा कर रखी थी।
अमित के छोटे भाई फौज में भर्ती हो गए थे और हेमा हेमा ने तो कभी शादी ही नहीं की। वो हर साल 15 अगस्त को घाट पर जाती, 3 दिए जलाती और धीरे से कहती, तुम तीनों जीत गए। हवा धीरे से चलती जैसे कहीं दूर से 3 आवाजें आ रही हो, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो दोस्तों, इसी के साथ होता है इस कहानी का अंत। हम सुन रहे थे 3 रंग 1 खून एक आजादी की दास्तां, जिसमें हमने सुना, हमने जाना कि कैसे 3 दोस्तों के लिए सिर्फ आजादी ही सब कुछ था, उसके अलावा कुछ नहीं। हमारे बड़े बुजुर्ग सही कहते हैं कि आजादी के लिए जो उस समय लोग थे वो बहुत पागल थे, जो अपनी जान देने के लिए, जो अपने वतन पे मर मिटने के लिए तैयार रहता है वो एक पागल ही होता है। वतन से प्यार करने वाले की प्यार की सीमा, प्यार की हद इस कदर सारी हदें पार कर देती है कि फिर उस व्यक्ति के लिए कोई हद नहीं रहती। और इसी हद को पार कर चुके थे 3 दोस्त, अमन, अशफाक और अमित। और तीनों ने बिना हिचकिचाए, बिना कोई संकोच किए, बिना किसी डर के हंसकर शहीद हो गए, हंसकर मौत को स्वीकारा। ना ब्रिटिशों के आगे झुके, ना उनकी गोलियों के आगे झुके, जमीन पर गिर गए, छातियों पर गोलियां खाते रहे, पर दिल में एक ही सपना जिंदा रखे, आजादी। और आखिरकार 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, हम सुन रहे थे ये कहानी, एंड आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। प्री इंडिपेंडेंस एरा में ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो न जाने किसी शहर में, किसी गली में, किसी गांव में, हर एक जगह से न जाने सैकड़ों हजारों कहानियां उस समय बनी होगी। कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसी कहानियां, कुछ ऐसे पहलू हमेशा लाते रहे और आपके दिल को छूते रहे। तब तक के लिए सुनते रहिए आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे शब्बीर विदा लेता हूँ आपसे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।

आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: कृष्णकांत जी, बहू नहीं बेटी लेकर जा रहा हूं।
1: हरिश्चंद्र जी, जिस दिन सारे बेटों के बाप आप जैसे हो जाएंगे, उस दिन बेटियां किसी बाप के लिए बोझ नहीं कहलाएगी।

0: हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे शब्बीर स्वागत करता हूँ आपका कहानियों की गुल्लक में। आज की कहानी काफी स्पेशल है। मैंने अब तक आपको बहुत सारी कहानियां सुनाई, कुछ प्यार पे थी, कुछ लाइक सोशल मैसेजेस या बहुत अलग अलग तरह की कहानी, पहली ट्रेन जर्नी, पहली प्लेन जर्नी वगैरह वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन आज की जो कहानी है वो काफी स्पेशल है। एक ऐसी कहानी जो शायद हम देखते रोज है पर कभी उसके लिए कुछ कर नहीं पाते हैं, और जो कुछ लोग करते हैं उनको शायद हम कभी हेल्प भी नहीं कर पाते। तो आज की कहानी है एनिमल रेस्क्यू की। मुंबई की एक बिजी सी सड़क, सुबह के करीब 8 बज रहे थे। रोड पर कार्स, बसेस, बाइक्स और ऑटो रिक्शास की लाइन लगी हुई थी। हर कोई अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए जल्दी में था। किसी को ऑफिस पहुंचना था, किसी को स्कूल जाना था, किसी को अपनी शॉप खोलनी थी और किसी को ट्रैफिक से निकलना था। लेकिन उस भीड़ भाड़ के पीछे एक छोटा सा पपी सड़क के कोने पर पड़ा हुआ था। उसकी एक टांग इंजर्ड थी, बॉडी पर चोट के निशान थे और आंखों में सिर्फ एक सवाल था, क्या कोई मेरी हेल्प करेगा, क्या कोई मेरी मदद करेगा। लोग उसके पास से गुजर रहे थे, किसी ने देखा, किसी ने सिंपति दिखाई, किसी ने कहा बेचारा, लेकिन कोई रुका नहीं। तभी एक लड़का बाइक से आ रहा था, उसका नाम था आरव। आरव की एज 27 साल की थी। वो एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का लड़का था, ऑफिस जाता था, घर संभालता था और अपनी जिंदगी में बिजी रहता था। एनिमल से उसे प्यार था, लेकिन वो कभी एनिमल रेस्क्यू करने वाला नहीं था। उसने बाइक स्लो की, पपी को देखा, फिर बाइक आगे बढ़ा दी, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद उसने ब्रेक दबाया, बाइक साइड में खड़ी की, हेलमेट उतारा और पीछे मुड़कर पपी को देखा। पपी अब भी वहीं था। आरव धीरे से उसके पास गया। ओ, क्या हुआ तुझे? पपी ने हल्की सी आवाज निकाली। आरव का दिल भर आया। उसने आसपास देखा, यार कोई इसको हॉस्पिटल क्यों नहीं ले जा रहा। उतने में एक चाय वाला बोला, भैया सुबह से पड़ा हुआ है, शायद गाड़ी ने हिट किया है। आरव ने पूछा, किसी ने एनिमल रेस्क्यू को कॉल किया? चाय वाला हंस पड़ा, कौन करेगा भाई, सबको अपना काम है। ये लाइन आरव के दिमाग में अटक गई, सबको अपना काम है। उसने पपी को केयरफुली उठाया, पपी दर्द से कर रहा था। बस बस बस, डर मत, डर मत, मैं हूं, आरव ने उस पपी को सहलाते हुए कहा। आरव अब उसे अपने बाइक पर लेके गया एक नियरेस्ट एनिमल हॉस्पिटल में। डॉक्टर ने पपी को चेक किया, पपी का लेग फ्रैक्चर है, बॉडी में इन्फेक्शन भी है। आरव ने पूछा, डॉक्टर ये बस तो जाएगा ना? डॉक्टर ने कहा, चांस है लेकिन ट्रीटमेंट में टाइम लगेगा। आरव ने बिना सोचे कहा, ट्रीटमेंट कीजिए। डॉक्टर ने पूछा, ओनर कौन है? आरव कुछ सेकेंड्स के लिए शांत रहा, फिर मुस्कुराया, ओनर तो नहीं पता लेकिन अभी के लिए मैं ही इसका ओनर हूं। पपी का नाम आरव ने रखा मोटू, क्योंकि वो छोटा सा था लेकिन उसका पेट बहुत बड़ा था पपी का। मोटू का ट्रीटमेंट शुरू हुआ। आरव रोज ऑफिस से पहले क्लिनिक जाता था, उसे खाना देता था, उसके हेड पर हाथ फेर कर कहता, तू ठीक हो जा, फिर हम दोनों वॉक पे जाएंगे। कुछ दिन बाद मोटू की कंडीशन इंप्रूव होने लगी थी, लेकिन आरव के लिए कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन जब वो क्लिनिक से बाहर निकला, उसने देखा कि एक इंजर्ड कैट रोड के पास पड़ी थी। आरव फिर रुक गया, उसने उसे रेस्क्यू किया, फिर एक बर्ड, फिर एक इंजर्ड काऊ,
1: फिर एक अबॉन्डेड किटन। हर रेस्क्यू के साथ उसे एक बात समझ में आने लगी थी, प्रॉब्लम एनिमल्स की नहीं थी, प्रॉब्लम अवेयरनेस और रिस्पांस सिस्टम की कमी की थी। आरव ने सोशल मीडिया पर एक स्मॉल पेज बनाया और उस पेज का नाम था एक जान। उसने फर्स्ट पोस्ट अपलोड की, अगर आप रोड पर इंजर्ड एनिमल देखे इग्नोर मत कीजिए, अगर आप खुद रेस्क्यू नहीं कर सकते तो कम से कम किसी रेस्क्यूअर या वेटरनरी क्लिनिक को इन्फॉर्म कीजिए। इनिशियली उस पोस्ट को देखकर पढ़कर सिर्फ 17 फॉलोअर्स आए, अगले दिन वो फॉलोअर्स बढ़कर 50 हो गए और फिर अगले दिन बढ़कर वो 200 हो गए। एक दिन आरव का एक वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में आरव एक इंजर्ड डॉग को रेस्क्यू कर रहा था। कैप्शन था, आपके लिए वो सिर्फ एक स्ट्रीट डॉग हो सकता है, उसके लिए आप ही उसकी लास्ट होप हो सकते हैं। वीडियो को थाउजेंड्स ऑफ पीपल ने शेयर किया और आरव को अब मैसेजेस आने लगे, सर मेरे एरिया में भी इंजर्ड डॉग है, सर एक कैट ड्रेन में फंस गई है, सर एक बर्ड की विंग इंजर्ड है, सर कोई स्नेक सोसाइटी के कंपाउंड में आ गया है। आरव अकेले सबके पास नहीं जा सकता था। तब उसने सोचा, मुझे सिर्फ एनिमल्स रेस्क्यू नहीं करने, मुझे एनिमल को रेस्क्यू करने वाले लोग बनाने हैं। फिर क्या, आरव ने की एक शुरुआत। आरव ने संडे को एक स्मॉल मीटिंग रखी, उसमें सिर्फ 6 लोग आए, एक कॉलेज स्टूडेंट रिया, एक डिलीवरी बॉय समीर, एक रिटायर्ड टीचर जोशी सर, एक वेटरनरी स्टूडेंट मेहुल और एक शॉपकीपर इमरान, और छठा आदमी था आरव। आरव ने सबको देखा, हम कोई एनजीओ नहीं है, रिया ने पूछा तो फिर, आरव ने बोला हम एक नेटवर्क है, एनिमल रेस्क्यू नेटवर्क। प्लान सिंपल था, अगर किसी एरिया में एनिमल इंजर्ड मिले, लोकेशन शेयर होगी, फोटो वीडियो भेजा जाएगा, नियरेस्ट वॉलंटियर को अलर्ट किया जाएगा, एनिमल को सेफ लोकेशन पर शिफ्ट किया जाएगा, वेटरनरी ट्रीटमेंट अरेंज होगा, रिकवरी के बाद एडॉप्शन या रिहैबिलिटेशन की प्लानिंग होगी। सबने अग्री किया और नाम रखा एक जान रेस्क्यू नेटवर्क। शुरुआत में प्रॉब्लम्स बहुत आई, कभी एम्बुलेंस नहीं मिलती थी, कभी वेट अवेलेबल नहीं होता था, कभी लोग वॉलंटियर को रोक देते थे, कभी सोसाइटी के लोग कहते अरे ये तो स्ट्रीट डॉग है यहां से ले जाओ, कभी पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ता था, कभी रात के 2 बजे रेस्क्यू करना पड़ता था, लेकिन टीम रुकी नहीं थी। दोस्तों, एक कहानी जो एक इंजर्ड पपी मोटू से शुरू हुई, उसने कहीं ना कहीं आरव के दिल में एक ऐसी जगह बना ली थी एनिमल्स के लिए, जिसे आरव शायद भुला नहीं पा रहा था, और उसी को दिमाग में रखते हुए आरव ने एक नई टीम शुरू की। वो टीम जो आरव के साथ खड़ी थी, वो 6 लोग जो अलग अलग जगह पे जाके एनिमल को रेस्क्यू करने लगे थे, लेकिन वीडियो वायरल हो गई, सब कुछ हो गया, लोग जुड़ नहीं रहे थे। अब लोग आगे जुड़ेंगे कैसे और नेटवर्क बढ़ेगा कैसे, या फिर कहानी में कुछ एक और नया मोड़ आएगा, हम ये सब जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए सुनते रहिए आचार्य 90 FM पर कहानियों की गुल्लक। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त, मिलता हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
2: सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो।

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आर्जे शब्बीर स्वागत करता हूँ आपका कहानियों की गुल्लक में। किसी भी चीज को बड़ा बनने के लिए उस चीज में कुछ एकदम ऐसा बड़ा होना पड़ता है ताकि वो चीजें सब तक पहुंच जाए, और वही मोमेंट अब आने वाला था आरव की जिंदगी में। एक रात 1:30 बजे आरव का फोन बजा। हेलो, दूसरी तरफ से एक लड़की रो रही थी, सर प्लीज हेल्प, सर प्लीज हेल्प। आरव ने बोला, क्या हुआ? मेरे बिल्डिंग के सामने एक डॉग है, उसको किसी ने बहुत बुरी तरह से हिट किया है। आरव ने कहा, काम डाउन, लोकेशन बताओ अपने। टीम के पास पहुंचने के लिए सिर्फ 20 मिनट थे। आरव, समीर और मेहुल तुरंत निकले। जब वो लोकेशन पर पहुंचे, डॉग रोड के मिडल में पड़ा था, उसके आस पास पूरा खून ही खून, पूरा ब्लड था। ट्रैफिक उसके पास से निकल रहा था। मेहुल ने चेक किया, ब्रीदिंग वीक है आरव। आरव ने कहा, इसको हॉस्पिटल ले जाना होगा। लेकिन प्रॉब्लम थी, नियर बाय क्लिनिक सारे बंद थे। 24 आवर वेटनरी हॉस्पिटल 18 किलोमीटर दूर था। ट्रैफिक भी हेवी था। समीर ने कहा, मैं गाड़ी अरेंज करता हूं। एक ऑटो ड्राइवर ने मना कर दिया, डॉग को ऑटो में नहीं ले जा सकता। दूसरे ने भी मना कर दिया। तीसरे ने कहा, हॉस्पिटल काफी दूर है। तब एक कैब ड्राइवर वहां रुका, उसने पूछा, क्या हुआ भैया? आरव ने कहा, ये डॉग इंजर्ड हो गया है, इसे हॉस्पिटल ले जाना है। ड्राइवर ने कुछ सेकंड्स के लिए उस डॉग को देखा, फिर बोला, बैठाओ भैया, हम ले जाएंगे। आरव हैरान हो गया, आपको प्रॉब्लम नहीं है? ड्राइवर बोला, प्रॉब्लम तो है भाई, लेकिन जान बचाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब जान बचाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है। डॉग को कैब में रखा गया और वो हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़े। 20 मिनट बाद इमरजेंसी ट्रीटमेंट शुरू हुआ। डॉक्टर ने कहा, केस इज वेरी क्रिटिकल। आरव बाहर खड़ा था, उसके हाथ पर उस डॉग का खून लगा हुआ था। रिया का फोन आया, सर। हाँ, डॉग? आरव ने कहा, अभी फाइट कर रहा है। रिया ने पूछा, बचेगा? आरव ने हॉस्पिटल के ग्लास डोर की तरफ देखा, पता नहीं यार, बचेगा या नहीं। फिर उसने धीरे से कहा, लेकिन जब तक वो फाइट कर रहा है, हम भी फाइट करेंगे। लगातार 1.5-2 घंटे के बाद इमरजेंसी ट्रीटमेंट के बाद फाइनली डॉक्टर ने बाहर आकर कहा, डॉग बच गया। और फिर उस डॉग का नाम रखा गया शेरू। शेरू को रिकवर होने में 2 महीने लगे। उसके बाद एक फैमिली ने उसे एडॉप्ट कर लिया। लेकिन शेरू की स्टोरी का सबसे बड़ा इम्पैक्ट तब हुआ जब उस कैब ड्राइवर ने आरव को फोन किया और कहा, सर एक बात बोलूं? हाँ बोलो। उस रात मैं सोच रहा था कि मैं क्यों रुकूं। आरव चुप था। फिर ड्राइवर ने बोला, मैं इसलिए रुका क्योंकि मुझे लगा, अगर वो मेरी जगह होता तो क्या मुझे कोई भी ऐसे सड़क पर छोड़कर जाता? आरव की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि एनिमल रेस्क्यू का मतलब सिर्फ एनिमल्स को बचाना नहीं था, एनिमल्स को रेस्क्यू, इंसानों के अंदर ह्यूमैनिटी को भी जिंदा कर रहा था। उनका असली मकसद था कि सिर्फ जानवरों को बचाना नहीं है, पर जानवरों के प्रति इंसानों में सहानुभूति भी आनी चाहिए। कुछ महीने बाद एक जान रेस्क्यू नेटवर्क में 500 वॉलंटियर्स हो गए, और फिर वो 1 महीने बाद हो गए 1,000, और फिर हो गए वो 3,000। स्कूल स्टूडेंट्स अवेयरनेस ड्राइव करने लगे, कॉलेज में एनिमल फर्स्ट एड वर्कशॉप्स होने लगी, हाउसिंग सोसाइटीज ने फीडिंग जोन्स बनाए,
लोकल शॉप्स ने वाटर बॉल्स रखना शुरू किया, कुछ ऑटो ड्राइवर्स ने इंजर्ड एनिमल्स के लिए फ्री ट्रांसपोर्टेशन ऑफर कर दिया, वॉलेंट्री डॉक्टर्स ने इमरजेंसी केसेस के लिए डिस्काउंटेड ट्रीटमेंट स्टार्ट की, और सबसे इंपॉर्टेंट, लोग एनिमल्स को प्रॉब्लम के रूप में नहीं लिविंग बींग्स के रूप में देखने लगे थे। एक दिन आरव को एक स्कूल से इनविटेशन मिला। सर, हम चाहते हैं आप स्टूडेंट से एनिमल रेस्क्यू के बारे में बात करें। आरव स्टेज पर गया, उसने बच्चों से पूछा, यहां बैठे कितने लोग हैं जो एनिमल से डरते हैं? कुछ हाथ उठे। और कितने लोग हैं जो एनिमल्स को पसंद करते हैं? ऑलमोस्ट सारे हाथ उठे। आरव मुस्कुराया, जब एनिमल से प्यार करना अच्छी बात है तो एनिमल को बचाना अच्छी बात नहीं है क्या? लेकिन एनिमल से प्यार करना ही इनफ नहीं है, एक चाइल्ड ने पूछा, तो क्या करना चाहिए सर? आरव ने कहा, हमें थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, एनिमल को अननेसेसरी डिस्टर्ब मत करो, इंजर्ड एनिमल मिले तो सेफ डिस्टेंस मेंटेन करो, ट्रेन रेस्क्यूअर या वेट को कांटेक्ट करो, रोड पर एनिमल्स को हिट करने के बाद भाग मत जाओ, वाटर और शेड अवेलेबल हो तो प्रोवाइड करो, एडॉप्ट करो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ कर करो, पेट को ऐसे ही छोड़ मत दो। बच्चा बोला, सर अगर हम एक एनिमल को बचाएंगे तो क्या दुनिया बदल जाएगी? आरव ने कुछ सेकंड्स के लिए पॉज लिया, फिर बोला, शायद पूरी दुनिया तो नहीं, लेकिन उस एक एनिमल की जिंदगी जरूर बदल जाएगी। एक साल बाद फिर बारिश का मौसम आया, मॉनसून। मुंबई में बहुत ज्यादा बारिश होने लगी थी, बहुत ज्यादा हैवी रेन, रोड्स पूरे वाटर लॉक्ड हो गए थे, नदी के पास के एरिया फ्लडेड होने लगे थे। आरव के रेस्क्यू नेटवर्क को मैसेज मिला, 3 पपीज ड्रेनेज कैनल में फंस गए हैं, लोकेशन डेंजरस थी, वाटर लेवल कंटिन्यूअसली बढ़ रहा था। आरव ने टीम को अलर्ट किया, सब सेफ्टी गियर के साथ आओ। टीम लोकेशन पर पहुंची, पपीज की आवाज आ रही थी, लेकिन वो दिख नहीं रहे थे। मेहुल ने कहा, वाटर लेवल और बढ़ रहा है। आरव ने रोप बांधी, मैं नीचे जाता हूं। समीर ने तुरंत कहा, नहीं भाई नहीं, मैं जाता हूं। आरव बोला, रिस्क है। समीर हंस पड़ा, रेस्क्यू नेटवर्क में रिस्क नहीं होगा तो नाम चेंज करना पड़ेगा भाई। सब हंस दिए, लेकिन सिचुएशन सीरियस थी। समीर केयरफुली नीचे गया, पहला पपी निकाला, फिर दूसरा पपी निकाला, लेकिन तीसरा पपी मिल नहीं रहा था। समीर, कुछ दिखा? आरव ने टॉर्च ली, सडनली एक छोटी सी आवाज आई, यहां यहां यहां, पपी एक पाइप के अंदर फंसा पड़ा हुआ है और पानी उसके अराउंड रैपिडली फ्लो कर रहा है। समीर ने हाथ अंदर डाला, पपी डर के मारे पीछे चला गया। आरव बोला, स्लोली स्लोली, उसको फोर्स मत करो। समीर ने अपना हैंड आगे किया, कम ऑन बड़ी, कम ऑन, बाहर आ जा, कम ऑन। पपी धीरे धीरे धीरे धीरे उसके हाथ के पास आया। समीर ने उसे पकड़ा और बाहर खींच लिया। जैसे ही पपी बाहर आया, टीम ने चेयर किया, तीनों पपीज सेफ थे। लेकिन उस रात एक और चीज रेस्क्यू हुई, और वो थी नेबरहुड की सोच।
तो दोस्तों, 6 लोगों की टीम अब बढ़कर 3,000 लोगों की टीम हो चुकी थी, और जहां जहां एनिमल को रेस्क्यू करने की कोई भी नोटिफिकेशन आता तो टीम हमेशा अवेलेबल होती, और उसी टीम ने आज 3 पपीज को भी रेस्क्यू किया। लेकिन सबसे बड़ा चेंज जो था वो था समाज में एनिमल्स के प्रति, जानवरों के प्रति जागरूकता निर्माण करना। तो वो जागरूकता कैसे आएगी, सुनते एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए सुनते रहिए आचार्य 90 FM।

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे 26 स्वागत करता हूँ आपका कहानियों की गुल्लक में। अब वो तीन पपीज तो बच गए, बहुत बड़ा वाटर लॉगिंग था, लेवल्स भी बहुत ज़्यादा था पानी का, लेकिन फिर भी आरव और उसकी टीम ने उन तीन पपीज को बचा लिया। उसके बाद अगले ही दिन वही एरिया के रेसिडेंट ने मीटिंग बुलाई। एक अंकल बोले, हमारे एरिया में बहुत स्ट्रेडी एनिमल्स हैं। एक लेडी बोली, हम उनके लिए शेल्टर कॉर्नर बना सकते हैं। एक शॉपकीपर बोला, मैं डेली पानी रखूंगा। एक टीनेजर बोला, मैं फीडिंग शेड्यूल बनाऊंगा। और एक एल्डरली वुमन बोली, मैं अपने टेरेस पर इंजर्ड बर्ड्स के लिए स्मॉल रिकवरी स्पेस बना सकती हूँ। आरव बस सबको देखता रहा, उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि जिस चेंज का सपना उसने एक साल पहले देखा था, अब वो धीरे धीरे रियलिटी बन रहा था। एक दिन आरव अपने रेस्क्यू सेंटर में बैठा था, तब एक फैमिली अंदर आई। उसके साथ एक बड़ा हेल्दी डॉग था। आरव ने उसे देखा, पहले तो पहचाना नहीं, फिर डॉग उसके पास आया, उसने आरव के हाथ को स्मेल किया और सडनली उसकी टेल वैग करने लगा। आरव को कुछ स्पेशल फील हुआ, एक अलग एहसास, एक ऐसा एहसास जिसकी शायद कल्पना बहुत कम लोग कर सकते हैं, या जिसका जिसको महसूस शायद जिंदगी में एक या दो बार ही किया जाता है। एक वैसा एहसास आरव को हुआ और वो एहसास आरव को इमोशनली कर गया और आरव के आंख में आंसू आ गए। मोटू, हाँ ये वही मोटू था। वो 2 साल बाद एक जान रेस्क्यू नेटवर्क एक लार्ज कम्युनिटी इनिशिएटिव बन चुका था, लेकिन आरव ने कभी इसे अपनी सक्सेस नहीं मानी। एक अवार्ड सेरेमनी में उसने स्टेज पर जब बुलाया गया तो उसने कहा कि मैंने सोसाइटी को कुछ नहीं दिया। ऑडियंस साइलेंट हो गई। आरव बोला, सोसाइटी ने मुझे दिया, सोसाइटी ने मुझे एक इंजर्ड पपी दिया, मुझे एम्पैथी दी, एक कैब ड्राइवर ने मुझे ह्यूमैनिटी दिखाई, वॉलंटियर्स ने मुझे नेटवर्क सिखाया, डॉक्टर ने कंपैशन सिखाया, चिल्ड्रंस ने होप दी, एनिमल्स ने मुझे एक सिंपल लेसन सिखाया, जान छोटी हो या बड़ी हो, जान जान होती है। आरव की ये सारी बातें सुनकर वहां बैठी हुई ऑडियंस जोर जोर से तालियां बजाने लगी। उसके आगे आरव ने कहा, हम अक्सर सोसाइटी को बेटर बनाने के लिए बड़े सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। हम सोचते हैं कि कुछ बड़ा करना पड़ेगा, लेकिन चेंज कभी कभी बहुत छोटी जगह से स्टार्ट होता है, एक बाउल पानी से, एक रेस्क्यू कॉल से, एक इंजर्ड एनिमल को रोड से सेफ साइड करने में, एक एडॉप्शन से, एक अवेयरनेस पोज से, या सिर्फ रुककर किसी हेल्पलेस जान को देखने से। बदलाव कहीं से भी आ सकता है, रेस्क्यू कहीं से भी शुरू हो सकता है। आरव की ये सारी बातें सुनकर पूरा जो हॉल था जहां पे वो सारे लोग बैठे हुए थे वो एक साथ खड़े हो गए और सब आरव को स्टैंडिंग ओवेशन देकर जोर जोर से तालियां बजाने लगे। सब ने आरव के वर्क को रिकॉग्नाइज किया, सब ने उसकी मेहनत को सलाम किया, उसके जज्बे को सलाम किया। और अंत में कुछ महीने बाद आरव एक बिजी रोड से जा रहा था, उसने देखा एक छोटा सा पपी रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। ट्रैफिक फास्ट था, आरव ने बाइक स्लो की, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं रुका, उसके पीछे
एक ऑटो ड्राइवर रुक गया, फिर एक कार, फिर एक डिलीवरी बॉय। तीनों लोग उतरे, उन्होंने ट्रैफिक स्लो किया, पपी को सेफली रोड के उस पार किया। पपी कुछ सेकंड्स तक उन्हें देखता रहा, फिर टेल हिलाकर भाग गया। आरव मुस्कुराया, उसने किसी को कॉल नहीं किया, किसी को इंस्ट्रक्शन नहीं दिया, किसी को रेस्क्यू करने नहीं बोला, क्योंकि अब लोग खुद समझने लगे थे रेस्क्यू एक आदमी का काम नहीं रहा था, वो पूरी सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुका था। आरव ने बाइक स्टार्ट की और जाते जाते उसने रियर व्यू मिरर में देखा, तीन टीनेजर्स एक दूसरे को स्माइल कर रहे थे। किसी को किसी का नाम नहीं पता था, लेकिन उन्हें ये पता था कि उन्होंने एक जान बचाई थी, और शायद उस छोटी सी जान के साथ उन्होंने अपने अंदर की इंसानियत को भी बचाया था। क्योंकि एक एनिमल को रेस्क्यू करना सिर्फ उसकी जिंदगी बचाना नहीं होता, कभी कभी वो रेस्क्यू हमारी सोसाइटी को भी थोड़ा और इंसान बना देता है। और शायद इसीलिए हर जान की कीमत है, और हर मदद मैटर करती है, और हर छोटी सी काइंडनेस एक बड़ा बदलाव की शुरुआत जरूर कर सकती है। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलेंगे अगले हफ्ते फिर से एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए आचार्य 90 FM पर कहानियों की गुल्लक। कहानियाँ जिंदगी में बदलाव जरूर लाती हैं।

0: तेरा कुछ जाहिर कुछ नेहा।
1: हाजरीन में मेरा साथ दी, अंतरों से घूम के जब मैं मुखड़े पे आऊं तो मेरे साथ गाइए।
2: खैरियत है साहब, पहले आपके नाम आपकी सेहत पर एक गम हो जाए।
1: जी मैं शराब नहीं छूता।
3: कौन काफिर छूने को कहता है, बगैर हाथ लगाए चढ़ा जाओ एक ही सांस में।
4: तो लाइए देव साहब, हम ही आपके होंठों पे लगा देते हैं।
5: पी भी लीजिए देव साहब, बड़ी देर से छलक रहा है, वरना दुख होगा इसे।